0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: அதுதான் மானம்.
1: நல்வாழ்த்து நான் சொல்லுவேன்.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तोफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामु अलैकुम। स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स। दिस इज लवी डवी शो And together, we'll kiss the airwaves of Toronto this morning.
2: CMR FM 101.3 पे ये है लवी डवी शो और ये है मंडे की खूबसूरत सी सुबह मेरे यानी शिवानी के साथ और इनके यानी आमिर के साथ। और हम और आमिर आपको साथ में एक सफ़र पर ले चलेंगे। वो मंडे का सफ़र है जिसमें मंडे ब्लूज़ का कोई नामो निशान नहीं है। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा अपनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ आपने बहुत खूबसूरत से लम्हे बिताए होंगे। आमिर कहते हैं समटाइम्स वी जस्ट नीड समवन टू बी देयर। Sometimes we just need someone to be there, not to fix anything or do anything special, but simply to remind us that we are cared and we are supported.
5: वाह, क्या कहने है ना? ये बात सच है, लेकिन कभी कभी कोई होता है, मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके साथ वक्त बिताने के लिए नहीं होता।
2: वक्त बिताने के लिए वक्त नहीं होता,
5: वक्त नहीं होता। हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, इतने गिर जाते हैं इन मसरूफियात में कि खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा हो, रोशन से रोशन आँखें हों, या गुलाबी होंठों का जिक्र हो, सुनहरी या गुंगरियाली जुल्फ़ें हों, या फिर कोई मुजस्मा हुस्न का, दिलकशी का हमारे सामने खड़ा हो, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि ठहर के उसको देख ही लें।
2: बहुत खूबसूरत बात कही आपने। लेकिन जब दिल में कोई होता है तो वक्त हम ना भी बिता पाए आमिर, लेकिन ये तसल्ली ज़रूर होती है कि कोई दिल में है और अगर आपके पास नहीं भी है तो वो आपके बारे में लगातार सोच रहा है, आपकी खैरियत, आपकी आपकी वेल बींग और आपकी मोहब्बत उसके जहन में रह रह कर जो है वो घर भी कर रही है और डेरा भी जमाए हुए हैं। इस वक्त तो मौसम भी 12 डिग्री सेल्सियस डबल डिजिट में टेम्परेचर है। मंडे की सुबह अगर ऐसी सनशाइन मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि सारा हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरने वाला है।
5: बिल्कुल सही
2: बात। और हमारे और आपके साथ लिसनर्स का वक्त भी बड़ा अच्छा गुजरे 11 बजे तक की ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी।
5: मौसम की बात कर रही है तो यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना।
2: क्या बात है।
5: ऐसे होता है ना कि जैसे टोरंटो का मौसम है या यूरोप के किसी भी मुल्क का मौसम ले लीजिए, पल भर में गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है। हमारे आसपास आगे पीछे दाएं बाएं बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं, वो पल भर में बदल जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है माली तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, अखलाकी तौर पर, हर हवाले से इस मुल्क में अपने आप को, बंदे को बहुत मजबूत रखना पड़ेगा। आप मंडे ब्लूज की बात कर रही थी और मैं मंडे ब्रूज की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंसान अक्सर वीकेंड पे कहीं चलते हुए, कहीं दौड़ते हुए, किसी को चहलकदमी कराते हुए खुद भी ऐसे ही कहीं स्लिप हो जाता है।
2: आमिर का कल ख्याल कहीं और था, जहाँ वो थे वहाँ पे उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे, लिहाजा उनका पैर फिसला। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि उनके पैर में थोड़ा दर्द है।
5: देखिए, ज़मीन से कहीं पैर फिसल जाए तो इंसान संभल जाता है, लेकिन मोहब्बत में कहीं फिसल जाए पैर तो सारी जिंदगी की अजियत बन जाती है।
2: लिसनर्स, आप और मैं समझ सकते हैं, बस हमें समझते रहिए, आमिर के साथ रहिए 11 बजे तक।
5: स्टे ट्यून्ड, आपका हमारा साथ रहेगा आज 11 बजे तक, सुनते रहिएगा। और शिवानी के पास हमेशा की तरह आज कुछ कहने के लिए है आपके पास। जी
2: जी, मैं हम नंबर बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को।
5: जरूर बता दीजिए, नंबर एक ही है शिवानी, हर किसी को याद है ये नंबर, है कि नहीं 416-303-3639। आप मुझे ये बताइए कि आप डिजिटल मीडिया में कब दाखला लेने वाली?
2: मैं आज 11:03
5: प्रोग्राम के, बड़ी प्रिसाइज हैं आप, मतलब बड़ी कैलकुलेटेड डिसीजंस लेती हैं।
2: मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलती हूँ, मेरे ख्याल से 11:03 पर 416-303-3639 नंबर आप मिलाएंगे तो उठा लिए जाएंगे फोन आप।
5: स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रही हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, कभी कभी सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन लेकिन मेरा ख्याल है मैं सुन रहा
0: क्या आप सुन रही
1: हूँ।
0: हैं?
1: जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़े इनहमाक से आपको सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और सुनता चला
0: और आपकी और मेरी तरह हमारे तमाम लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, और उन लाखों लोगों की तरह आप भी शामिल होइए जो हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल जी,
0: हमें कॉल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, हंसना हंसाना चाहते हैं, रोना रुलाना चाहते हैं, वो भी जरूरी है जिंदगी में।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम रोएंगे नहीं तो हंसने की अहमियत कैसे पता चलेगी?
1: सही कह रही हैं आप।
0: जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो रोता है, दुनिया हंसती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसका मतलब बच्चे का रोना भी एक खुशी का सबब है।
1: तो बचपन में जब बच्चे आपके साथ शरारतें करते थे तो किस बात पर ज्यादा रोना आता था? अपनी बेबसी पर?
0: नहीं,
1: या
0: वो जब कोई अपने आप को मुझसे अच्छा बता देता था ना लुक्स में, वो मुझसे ज्यादा गोरा एक लड़का था, वो गोरा बहुत था, मैं कहता कि तुम गोरे नहीं अच्छे लगते, तुम वो काला वाला रंग लगा के आ करो, लड़के गोरे नहीं अच्छे लगते, तुम इतने गोरे क्यों, तुम तुम्हारी कट्टी मुझसे है ना।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में जब भी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी आपकी, तो मर्दों से ज्यादा, यानी लड़कों से, बच्चों से, जो बच्चे मेल बच्चे थे उनसे ज्यादा लड़ाई,
0: हाँ उनसे ज्यादा होती थी। और लेकिन अगर वो लड़का मेरी फ्रेंड का भाई होता था तो मेरी दोस्ती हो जाती थी।
1: ओह अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि फिर वो मैं उससे दूसरों को पिटवा सकती थी ना। और मेरी मतलब एक मेरी
1: सारे इंतजाम रखे हुए आपने,
0: थीम बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड दोस्ती थी लड़कों से।
1: तो वो लड़के बच्चे छोटे कभी आपकी तारीफ भी करते थे, कभी आपकी आंखों की तारीफ, कभी आपके चेहरे की तारीफ, कभी आपके मखमली हाथों की तारीफ, कभी मखरूती उंगलियों की, कभी तारीफ होती थी ऐसे?
0: हाँ, ये कहती तूने आज अच्छी फ्रॉक पहनी है, तो मैं उसे कहता तू आज से मेरा दोस्त।
1: तो उसी तसलसल को आपने अभी तक कायम रखा है? हाँ, आपके जो हाथ हैं, इनकी जो उंगलियां हैं, उर्दू शायरी में, उर्दू लिटरेचर में इनको एक ख़ास अहमियत हासिल है। इन्हें मखरूती उंगलियां कहते हैं। मखरूती उंगलियां वो होती हैं जिन्हें नाशपाती के स्टाइल की उंगलियां कहते हैं, ऊपर से थोड़ी बारीक और नीचे से थोड़ी सी मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, यानी थोड़ी सी मोटी
0: जी।
1: तो ऐसी मखरूती उंगलियां, इनको तशबीह दी जाती है खूबसूरत उंगलियों को उसके साथ। तो आपकी मखरूती उंगलियां हैं।
0: मैं इससे बहुत ज्यादा चांटे मारती थी अपने दोस्त लड़कों। तो ये बिल्कुल
1: मैं तो समझा कि बात बन गई, ये तो बिगड़ गई बहुत ज्यादा।
0: तो अगर आप आमिर की जो तजुर्बा है इनका इस पर्टिकुलर फील्ड में, उससे कहीं ज्यादा तजुर्बा इनका एडवर्टाइजिंग में है,
1: yes,
0: और ब्रॉडकास्टिंग में है, तो इनकी अगर आप, और उतना ही ज्यादा तजुर्बा डिजिटल मीडिया के कोर्स में है, और आपकी जिंदगी बन सकती है सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट देके। आपको जिंदगी भर किसी को रेंट पे नहीं लेना, किसी को हायर नहीं करना, अपने बॉस खुद बनिए, अपना बिजनेस खुद प्रमोट कीजिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात जरूर करेंगे। 416-303-3639 इज द नंबर टू कॉल। और आमिर, जिंदगी में जितना खुशी की अहमियत है उतनी दुख की भी अहमियत है, जितना मिलन का सुख है उतना जुदाई का गम भी है, और जब जुदाई का गम खत्म होता है और मिलन की घड़ी आती है तब हमें वैल्यू पता चलती है उस जुदाई की, है ना। और रेशमा जी ने बड़ा खूबसूरत सा गाना गाया है हीरो मूवी में, लंबी जुदाई, और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में जब वो जाती थी उनसे यही गाने की फरमाइश की जाती थी। जुदाई के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: एक खुशी मिली तो हजार दुख मुझसे रूठ गए, एक खुशी मिली तो हजार दुख मुझसे रूठ गए, खुदा करे कि मैं फिर से उदास हो जाऊं।
0: क्या बात है।
1: खुशियां बड़ी आरजी होती हैं, इधर आती हैं उधर चली जाती हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हैं हम, बाहर निकलते हैं, किसी को दुख में, अफसोस में, अफसोसदगी में देखते हैं, हमारा दिल बहुत रंजीदा सा हो जाता है, और कई दिनों तक, और कुछ हसास दिलों पर तो कई हफ्तों तक यह कैफियत जारी रहती है। हम उस कैफियत में से निकल नहीं पाते, किसी के दुख में से नहीं निकल पाते। इसी तरह हमें अगर कोई दुख मिलता है जाती तौर पर, तो उसको झेलते झेलते यूं लगता है जैसे उसकी आदत सी हो गई है। तो दुख बड़े मुस्तकिल से होते हैं और खुशियां बड़ी आरजी होती हैं। इसके बावजूद भी हम खुशियां ज्यादा मांगते हैं और गमों की तमन्ना हमें कम होती है। वो लोग जो गम की अहमियत को समझते हैं वो उस कैफियत से निकलना ही नहीं चाहते। तो रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया।
0: क्या बात है।
1: बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और आमिर मैं बात बात पर कहता था जिसको जान, वो शख्स आखिर मुझे बेजान कर गया।
0: जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। उससे मैं कुछ पा सकूं ऐसी कहां उम्मीद थी।
1: वाह वाह।
0: गम भी वो शायद बराए मेहरबानी दे गया।
1: वाह वाह।
0: सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, और मुझको एक कश्ती बाद पानी दे गया।
1: वाह।
0: खैर मैं प्यासा रहा पर उसने इतना तो किया, मेरी पलकों की कतारों को वो पानी दे गया।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 819-1001 license number 12374।
7: मम्मा, why don't you go to work now?
8: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
9: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
8: क्या वो मदद करेंगे?
9: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
10: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
9: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
10: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी,
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: साहब, इंसान पूरी दुनिया में जहां भी रहे, हालात अच्छे हों या मुश्किल हालात का सामना उसे करना पड़े, एक बात बहुत अहम है कि या तो वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो, बहुत पढ़ा लिखा हो और किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में पढ़ाने के काबिल हो जाए। उसके लिए भी डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, जिसमें टीचिंग क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका और दूसरा ढंग एक ही रह जाता है, और वो है आपके पास हुनर हो, और हुनर ऐसा जो जदीद हो, जो मॉडर्न हो, जो अप टू डेट हो, ऑब्सोलीट ना हो, बल्कि आप दुनिया के कदम से कदम मिला के चल सकें, आगे बढ़ सकें। आज का दौर डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दौर है। एक वक्त था जब अखबार आया तो लोग अखबार पढ़ने लगे, उसमें मसरूफ हो गए, मगन हो गए। फिर वक्त आया टेलीविजन का, लोग उसमें मसरूफ हो गए। फिर वक्त आया डिजिटल मीडिया का, तो आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, और आने वाले वक्त में भी अगर आपको डिजिटल मीडिया आता है तो आप अपना कारोबार खुद प्रमोट कर सकते हैं। आप किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, ना सिर्फ अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं, मुलाजमत करना चाहते हैं, किसी के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छा पैसा बनाने की तवक्को और उम्मीद रखते हैं, तो डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन और मार्केटिंग का कोर्स कीजिए। उसके लिए हमारे साथ शामिल हैं अफीफ अली। वेलकम करते हैं आपको।
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अफीफ, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजनेसेस आमतौर पर यह समझा जा रहा है आज के स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल के दौर में जब उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मार्केट

0: जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि आजकल बिल्कुल सब कुछ डाउन हुआ है, तो हर जगह कॉस्ट कटिंग हो रही है, और उसमें काफी जगह जो आपकी ब्रांडिंग की कॉस्ट कटिंग है वो भी हो जाती है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप, अगर आपके पास स्किल है ना प्रमोशन की, या फिर आपके पास सोशल मीडिया यूज करने की, वीडियो प्रोडक्शन की, या फिर आप वीडियो बनाने की, पोस्टर्स बनाने की स्किल है, तो आप काफी अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं पर मंथ। फॉर एग्जांपल, काफी जगहों की जो होता है बजट होता है वो, इट इज लाइक $2,000 अ मंथ फॉर देयर मार्केटिंग एंड यू नो ब्रांडिंग। तो आप इतनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल खुद हो। और उस स्किल में क्या क्या होना चाहिए वो उसमें आता है कि आप वीडियो कैसे बनाएंगे, आप वीडियो एडिट कैसे करते हैं, आप उसको अपलोड कैसे करते हैं, दूसरी जगह आप पोस्टर्स कैसे बनाते हैं, पोस्टर्स में एनिमेशन कैसे डालते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स देखे होंगे राइट, उसमें फोटोग्राफी कैसी लगती है प्रोडक्ट की है। तो ये सारी चीजें जब आपके पास एक स्किल सेट होता है तो आप काफी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही। अगर आप अपना कारोबार खुद प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दुनिया भर की ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे आप 416-303-3639। नंबर दोहरा रहे, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है, सैटरडे 1 till 6, संडे 1 till 6 इसकी क्लासेस होती हैं, और यहाँ ब्रैम्पटन में ही क्लासेस होंगी, बहुत कन्वीनियंटली लोकेटेड लोकेशन है। ये नंबर मिलाइए 416-303-3639। दूसरी बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई YouTube चैनल बनाना चाहता है अपने घर में, आप भी जानते हैं, हमें भी इस बात का अंदाजा है कि आजकल लोग YouTube के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करके बहुत सा पैसा बना रहे हैं, तो अपना चैनल सेटअप करके उसमें से पैसा बनाने में कितनी मदद देता है ये कोर्स?
0: जी डेफिनेटली बहुत मदद देते हैं, क्योंकि ए टू जी सब दिखाया जाता है कि आपको लाइक फ्रॉम ए टू जी, मतलब कि आपको अकाउंट कैसे बनाने हैं, फ्रॉम टिल आपको यूज कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, और आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है राइट। तो ये सब सिखाया जाता है। यूट्यूब की खास बात ये है कि यूट्यूब अब आहिस्ता आहिस्ता एक टेलीविजन के तौर पर यूज होने लग गए, सारे न्यूज चैनल आपका यूट्यूब पे आ गए हैं, बाकी सारी चीजें आपकी यूट्यूब पे आ गई हैं। तो इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर यूट्यूब इज टेकिंग प्लेस ऑफ टेलीविजन, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह ने लिया था।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि टेलीविजन की जगह ऑलरेडी यूट्यूब इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो ना सिर्फ ये कोर्स करने के बाद आप अपना यूट्यूब चैनल खुद बना सकेंगे, चला सकेंगे, बल्कि उसमें से पैसा भी बना सकेंगे। कैसे करना है ये कोर्स, कहाँ क्लासेस होंगी, कब कब क्लासेस होंगी, ये सब आपको बताया जाएगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे आप 416-303-3639, 416-303-3639। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अपना बिजनेस खुद नहीं प्रमोट करना चाहता, जॉब करना चाहता है, तो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के हवाले से, कंटेंट प्रोडक्शन के हवाले से मार्केट में किस तरह की और तकरीबन कितनी जॉब्स अवेलेबल होंगी?
0: सर बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। मैं खुद जब अब भी आजकल भी इंडीड जाता हूँ तो हर जगह किसी न किसी को या तो वीडियो एडिटर चाहिए, या तो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, या तो उनको कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, मीडिया मैनेजर चाहिए। तो लाइक बहुत ज्यादा जॉब है, लाइक दिस इज न्यू थिंग राइट, नॉट अ न्यू थिंग बट लाइक इट्स नाउ बूमिंग। तो अगर अभी आप ये स्किल सीख लेते हैं और आपको आती है ये स्किल एंड इफ यू गुड एट इट, तो आपको इसमें जॉब मिलना एंड विद गुड सैलरी जॉब मिलना बड़ा आसान होगा।
1: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर है 416-303-3639। अफीफ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

0: CMRFM 101.3 लवी डवी शो चल रहा है और आप हैं शिवानी और आमिर के साथ, और इस वक्त का टाइम हो चला है 9:30. और आमिर, एक बड़ा प्यारा सा थॉट है जो कहता है Whenever you're not feeling well without any reason, कोई अगर रीजन है उसकी वजह से अच्छा फील नहीं कर रहे तब बात अलग है, आप मेडिकल एडवाइस लीजिए. लेकिन बिना किसी मतलब के कभी होता है ना कि आप सब ठीक है फिर भी आप ठीक नहीं फील कर रहे,
1: इसे बेसबब उदासी कहते हैं.
0: जी, Whenever you are not feeling well and you are suffering बेसबब उदासी है ना, तो उसके लिए एक नुस्खा बताया गया है कि स्पेंड टाइम विद समवन स्पेशल इन योर लाइफ. Because sometimes you don't need medicines. You just need the best times of your life.
1: वाह, क्या कहने, बहुत अच्छी बात की आपने. यहाँ अगर किसी चीज की किल्लत है इस मुल्क में तो वो मयारी टाइम है, मयारी वक्त है. मयारी वक्त दो तरह का होता है, एक वो जो आप किसी के साथ गुजारते हैं, एक वो जो आप घड़ियां सेट करने के लिए मुकर्रर करते हैं. तो कहते हैं मयारी वक्त 9 बजे हैं या मयारी वक्त 10 बजे, एक तो वो मयारी वक्त है और एक मयारी वो वक्त है जो आप अपने किसी पसंदीदा शख्स के साथ गुजारते हैं. शिवानी, मुझे लगता है कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ रुपए, पैसे, ज़मीन, जायदाद, दौलत, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त है.
0: Couldn't agree more.
1: क्योंकि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मुतबादल नहीं है, सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई कॉन्टेंजेंसी नहीं है टाइम की कि भाई ये 5:10 से 5:20 तक ये मैं रिट्रीव कर लूंगा तारीख से, ये कभी नहीं होगा.
0: There's no system of reuse of that time that you don't use.
1: लेकिन कुछ लोगों को
0: रिफंड का भी,
1: बिल्कुल रिफंड भी नहीं हो सकता, रिइंबर्स भी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को देख के वक्त लगता है जैसे रुक गया है. उनसे बात करें और उस बात में किसी तरह की कोई मादा परस्ती ना हो, जिसे मटेरियलिज्म कहते हैं, उसको उर्दू में मादा परस्ती कहते हैं.
0: अच्छा.
1: तो किसी तरह की मटेरियलिस्टिक थॉट ना हो उसमें, किसी फायदे, किसी नुकसान, किसी खसारे, किसी मुनाफे से बालातर होके किसी से प्योर और शफाफ बात की जाए.
0: क्या बात है?
1: मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अगर कोई मोहब्बत के दो बोल बोल सकता है तो बोल दे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बोल सकता है तो कम अज़ कम सिर्फ गैर मादी यानी अनमटेरियलिस्टिक बात ही कर ले, उसी में मोहब्बत का इजहार छुपा हुआ है.
0: क्या बात है, कहते ना कि इंसान को आजकल के वक्त में छोटे में ही, थोड़े से में ही गुजारा करने की आदत हो जाती है. अगर आप प्यार के लफ्ज़ बोलते हैं वो बहुत बड़ी नेमत है उसके, अब बोलने वाले के लिए भी और जिसके लिए बोला जाए उसके लिए भी. लेकिन अगर किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है तो जैसे आमिर ने बताया कि ऐसी बात एटलीस्ट ना कहें जो दूसरे को चुभ जाए, दूसरे को लग जाए, है ना.
1: और दूसरा ये है कि जैसे हम आमतौर पर किसी के साथ कोई नेकी करने की कोशिश करते हैं कि हम नेकी कर दें, इसका साथ दे दें, इसकी ढारस बंधा दें, बहुत सी कोशिशें होती हैं. आज का दौर इतना गया गुजरा है और लोग इतने मसरूफ हैं, लोगों में इतनी नफसा नफसी का आलम है, भाग दौड़ लगी हुई है कि मुझे लगता है नेकी आप करें या ना करें वो एक अलग बात है. मुझे लगता है आज के दौर में अगर आप बुराई से ही महफूज रह लें ये भी बहुत बड़ी
0: बहुत
1: है.
0: बड़ी बात है. और जैसे अभी आपने वक्त के बारे में बात की कि वक्त से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है. कहते ना कि जो कोई चीज़ हमें एक बार मिलती है, लिमिटेड एडिशन होती है, वो महंगी भी बहुत होती है, रीच से भी परे होती है.
1: आप अपनी और... बात तो नहीं कर रही.
0: मैं अपनी बात
1: नहीं कर रही. अच्छा, ठीक
0: जी. तो क्या होता है कि जैसे हम कभी कभी हम किसी प्लेयर की बात करते हैं, किसी सुपरस्टार की बात करते हैं, किसी हीरो हीरोइन की बात करते हैं, कहते हैं कि उसने वो घड़ी पहनी हुई थी, ऐसी वर्ल्ड में 3 या 4 ही बनी है, यू नो. एक वो पहनती है या पहनता है, एक उसने टेनिस स्टार ने पहनी है, एक क्रिकेटर ने पहनी है, यू नो, ऐसा होता है. और वो इसीलिए क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन, वो दोबारा नहीं बनेगी.
1: जी बिल्कुल,
0: है ना. और कोई भी चीज़ हमें एक बार मिलती है, जैसे शादी एक बार होती है तो ताउम्र याद रह जाती है कि वो हुई थी.
1: ये किसने कहा कि एक बार होती है?
0: मतलब
1: आम तौर पर
0: आपने और मैंने तो यही सुना है ज्यादातर मामलों में, आमिर इस बारे में अगले लिंक में ज्यादा बताएंगे। तो ऐसे ही जो वक्त होता है वक्त, कोई आपको अगर अपना वक्त देता है तो उसके लिए ता उम्र उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा आपको दे रहा है जो उसको फिर से नहीं मिलेगा।
1: खूबसूरत बात, बहुत ही प्यारी बात है कि आप किसी के दिए हुए वक्त की कदर कीजिए,
0: क्योंकि वो दोबारा जो लम्हे उसने आपको दिए हैं वो जिंदगी में दोबारा उसके पास नहीं आएंगे।
1: लेकिन मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे की सोच रहा हूँ कि कोई आपको वक्त दे तो उसमें आपने ये देखना है कि वो कितना क्वालिटी टाइम था।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ बैठे हैं और वो अपनी ही दुनिया में गुम है, उसको आपकी तरफ आपका कोई ख्याल नहीं, ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं, ही और शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू यू, येट ही और शी इज़ विद यू,
0: और उसका बैठना आपके साथ कोई मानी नहीं,
1: कोई मानी नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ
0: टाइम।
1: ठीक है कि आपके साथ कोई बैठा चाय की चुस्कियाँ तो ले रहा है लेकिन ख्याली ख्याल में कोई हिसाब कर रहा है, किसी अकाउंट्स में फंसा हुआ है, किसी कंपनी के मामले में फंसा हुआ है, अपनी मुलाजमत के चक्कर में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, कोई शिपमेंट कहीं से लेट है या जल्दी है, उस मामले के बारे में सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती है।
0: बिल्कुल,
1: ये तो मुझे लगता है मुनाफ़क़त भी है कि आप ज़ाहरी तौर पर कोई आपके साथ बैठा है लेकिन असल में वो आपके साथ नहीं है,
0: नहीं है।
1: तो इट इज
0: इवन मोर पेनफुल
1: बिकॉज़
0: यू गो विद एन एक्सपेक्टेशन दैट यू नो यू आर गोना स्पेंड गुड टाइम विद।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: और वहां पे आपको उलट ही पता चल रहा है।
1: बड़े दुख हैं, बड़ी अजियतें, बड़ी तकलीफें हैं दुनिया में, और उनमें से एक तकलीफ नजरअंदाज किए जाने की है।
0: बिल्कुल,
1: कि कोई आपके साथ बैठा हो और आपको नजरअंदाज कर रहा
0: है, वेरी पेनफुल,
1: चाहे वो दानिस्ता तौर पर हो या गैर दानिस्ता, यानी डेलिब्रेटली हो या अनडेलिब्रेटली, किसी को नजरअंदाज करना बहुत ही मैं समझता हूँ कमतर फेल है, और जो नजरअंदाज किया जा रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा पेनफुल है।
0: और आमिर ने जो गाना लाइनअप किया है हमारे लिसनर्स के लिए, वो कहीं से भी आपको अपने महबूब से नज़रअंदाज नहीं करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और कहते हैं ना, हर लफ्ज़ तेरे प्यार की खुशबू में ढला है, ये सिलसिला है इश्क का जो तुमसे चला है,
1: तुमसे चला है। और ये खूबसूरत सा गीत है, और खिली खिली हुई सी रोशन सुबह में ये खूबसूरत और मधुर बोल हम शिवानी के नाम करते हैं। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: दिस इज लवी डवी शो। मैं हूं शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिसनर्स जो मंडे की खूबसूरत सी सुबह में एंजॉय कर रही हैं खूबसूरत से गानों के साथ। मंडे होता है, नया हफ्ता होता है, नए हफ्ते की शुरुआत होती है। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं उस हफ्ते के बारे में भी और आने वाले वक्त के बारे में भी। और मई का महीना, ये जो महीना है, ये काफ़ी हद तक बहुत मायने में आप में से बहुत सारे लिसनर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत फ़ायदे का और एक ज़िंदगी बनाने का जो मौका है वो लेकर आया है। और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स। जाना पहचाना ये कोर्स है। अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है। कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं। हायरिंग के लिए किसी को हायर करके ज़िंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट दे के आप ज़िंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं A to Z। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ़ अली। आफीफ़, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
5: Good morning. I'm well. How are you?
4: बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है?
5: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्बिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया। इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है, राइट? तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें।
4: अच्छा।
5: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है, राइट? उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें। और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है, राइट? और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Adobe Premiere Pro, वो सिखाते हैं।
4: एंड
5: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में। एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
4: ठीक है,
5: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM।
4: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। ज़िंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग?
5: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना उसमें आ जाता है।
4: अच्छा, ठीक है।
5: कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है। एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि कैनेडा में काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है।
4: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स, बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये। 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639। हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
5: या मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है, तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है।
4: Amazing.
5: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स लेने में।
4: क्या बात है, तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से 4 हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके। 416-303-3639। हफीफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू।
5: थैंक यू सो मच।

0: 9:54 लवी डवी शो पे बहुत लव और बहुत डव के साथ चल रहा है ये सो शो आपके और हमारे साथ, हमारे यानी कि शिवानी और आमिर के साथ। और जब हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं और वो मेहमान आमिर, अगर देखिए हर किसी के लिए एक आजकल के टाइम में, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रोफेशनल हैं, पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है।
1: बिल्कुल करती
0: और अगर
1: है।
0: हम पर्सनालिटी की बात करें तो हमारा चेहरा और हमारे बाल
1: जी
0: सबसे पहले नजर आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहते हैं ना कि इंसान सबसे पहले तो देखता है ना एक दूसरे को, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो बस अगर आप चेहरा अपना ब्लेमिशेस हैं, फाइन लाइंस हैं, पिगमेंटेशन है या कोई भी इम्प्योरिटीज है आपकी स्किन की और बाल झड़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो सपना था अच्छे बालों का वो एक ख्वाब के साथ ही ना चला जाए, तो बस आपको हमारे मेहमान से मिलना है, बातचीत करनी है। और ये मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाना पहचाना कम्युनिटी का नाम है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वेलकम जफर मलिक साहब। तो
2: जी वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग हो गया।
0: गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? आपकी आवाज सुन के ऐसे लग रहा है कि चेहरा खिल उठा और जो बाल है वो एकदम घने काले लंबे कहीं से आ ही गए बस, है ना?
2: बाल तो आ ही जाएंगे, मुझे भी जमीन पर रहने देना।
0: आपको जमीन पर रहने देंगे तो हम आसमान पे कैसे उड़ेंगे? तो
2: आसमान पे रहे, लोगों के बाल आसमान पे न चले जाएं।
0: वही ना।
1: मलिक साहब, आपके पास ये बोतल तो छोटी सी है साइज में, देखने में भी आम सी लगती है, लेकिन इसका काम बड़ा खास है। और खास काम इस तरह से है कि मैंने अक्सर देखा है जिनको सिकरी होती है उसकी वजह पीछे मुमकिना तौर पर खुश्की होती है, खुश्की और सिकरी की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये तेल क्या जादू, क्या तलस्म दिखाता है जिसकी वजह से बाल ना सिर्फ गिरने बंद हो जाएं बल्कि नए आने भी शुरू हो जाएं?
2: मैं आज करता हूं, मुझे एक फोन आया, उन्होंने कहा साहब बाल हैं कि नहीं है, मैं फारिगुल बाल हूं।
1: फारिगुल बाल।
2: बालों से फारिग हो चुका हूं, क्या अच्छा। मेरा भी कुछ हो सकता है? अच्छा। मैंने कहा अगर स्किन शाइन नहीं कर रही तो बाल वापस उगते नजर आएंगे। पहले 3 दिन में आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और 6-7 दिन में आपको उगते भी नजर आते हैं। आप पहले दिन भी तस्वीर ले लो, 10 दिन के बाद भी तस्वीर ले लें, आपको फर्क साफ जाहिर हो जाएगा कि फ्रेश हेयर टॉनिक इस्तेमाल करने से पहले और उसके बाद क्या हुआ।
1: जी।
2: और कम
1: बिल्कुल ठीक है। सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आमतौर पर मोस्ट रीसेंट ट्रेंड्स में ये देखा गया है कि बच्चों के बाल भी गिरने शुरू हो गए हैं, वो बच्चे खास तौर पर जो 15-16 साल की उम्र के हैं, वहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उनके लिए कितना मुफीद है ये तेल?
2: 100% मुफीद है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सबके लिए ये ऑयल काम करता है। ये एलोपेशिया का भी इलाज है।
1: अच्छा।
2: एलोपेशिया होता है किसी शॉक की वजह से
0: जी,
2: या स्ट्रेस की वजह से। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी स्टडीज में।
1: अच्छा अच्छा। हाँ,
2: उनके ऊपर जो वजन पड़ता है ना पढ़ाई का, वो उनसे उठाया नहीं जाता, वो उनको ज़हनी तौर पर इतना स्ट्रेस में ले जाता है कि उनके बालों पर असर आता है।
1: बिल्कुल सही।
2: उनके बाल एलोपेशिया हो जाता है, वो गोल गोल से टिकाव पड़ते हैं, बीच में से बाल गायब हो जाते हैं।
1: यहाँ नंबर है जफर मलिक साहब का, अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर बाल वापस भी आ जाएं और झड़ने भी बंद हो जाएं, तो नंबर ये मिलाएंगे आप 6-4-7-5-2-1-5-1-5-9। नंबर दोबारा बता रहे हैं 647-521-5-1-5-9। मलिक साहब, अगर बच्चा मेरी उम्र का हो तो उसके लिए भी कोई इस्तेमाल किया जा सकता है ये तेल?
2: उससे अगर उम्र भाग ना रही हो तो हो सकता है।
1: हाँ जी
2: आपसे तो उम्र भी गुरेजा हो गई
1: गुरेजा मेरे मेरी उम्र के बच्चे शरारती नहीं होते, बड़े बेजरर होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते, बड़े सुकून से शराफत से बैठे रहते हैं। मेरा ख्याल है दवाई भी उन पे अच्छी असर करती है।
2: कनाडा है भाई, यहाँ जितनी एज बढ़ती है आदमी उतना ही बच्चा हो जाता है।
1: अरे वाह क्या कहने
0: आप? आपके लिए दिल तो बच्चा है जी वाला सॉन्ग हमारी स्टूडियो इंजीनियर हैरी ने लाइन अप कर दिया है। उससे पहले कि एक और चीज आपसे जानना चाहते हैं जफर साहब की, जो हम कभी भी ऐसा होता है ना जब हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये मेडिकेशंस हैं या ये ऐसा ऐसा कर लीजिए, उसके साथ ये जरूर बताते हैं कि आपको एहतियात क्या बरतनी है जैसे, तो इसमें कोई ऐसा है कि अगर हम हेयर ऑयल लगाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एहतियात बरतनी होगी या कुछ और हमें लगाना होगा, या फिर अगर चेहरे पर हम क्रीम लगाते हैं तो उसके साथ हम कुछ और अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर आराम से आप लगा सकते हैं?
2: कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बीबी, कप्तान जो जी चाहे करें, जो जी चाहे खाएं, अच्छा। जो जी चाहे लगाएं, सिर्फ ऑयल को इस्तेमाल करें, चार घंटे तक लगा रहे उसके बाद जो जी चाहे करें, शैम्पू करें भले ना करें, दूसरे दिन फिर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इस बगैर शैम्पू के भी आप इसको लगातार लगाते रहें, छह दिन में आपको फर्क जाहिर हो जाएगा। पहले दिन भी तस्वीर ले लें, 10 दिन के बाद भी पिक्चर ले लें, आपको फर्क खुद ही पता लग जाएगा, सारी बहस खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही। यहाँ एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ मलिक साहब
2: जी, जी
1: के वो लोग जिनके सर पर बाल कम होते हैं उनके बारे में उमूमी तासुर ये पाया जाता है कि वो बड़े दौलतमंद होते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, तो जब बाल वापस आए आपका तेल लगाने के बाद तो कहीं ऐसा नहीं है कि पैसा भी वापस चला जाए उनका?
0: बाल आ जाए पैसा चला जाए
1: पैसा चला जाए
2: ये वहम की बात है। लोग कहते हैं जिसका माथा बड़ा हो जाए
1: जी जी
2: वो बड़ा अकलमंद होता है, तो मैंने कहा जिनके दिमाग तक माथा बन जाए वो तो फिर लोगों को कर देगा। यानी बालों का गिरना ना गिरना, पैसे का आना ना आना, इसके साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है
0: जी। और अब जफर साहब कहते हैं ना कि एक्सेप्शन जिंदगी में जरूर होते हैं, जिसको हम अपवाद हिंदी में कहते हैं ना, तो आमिर के केस में ये एक्सेप्शन है, अदर देन दैट ये आप जो रेगुलर बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सब लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आमिर जो है वो कुछ और कहना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं देना चाहता हूँ जफर मलिक साहब का नंबर, ये नंबर खुद भी रखिए, सेव कीजिए, अपने आस पास इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत परेशान है, अजियत में बाल गिरते चले जा रहे हैं और ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई किसी की नज़रों से गिरता है, यानी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं बाल, तो ये नंबर रखेंगे आप। जफर मलिक साहब का नंबर है ये 6475215159। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 6475215159। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।
2: एक बात और बता दें
1: जी जी,
2: कि ये कैनेडियन प्रोडक्ट है और शिपिंग हम कनाडा में फ्री दे रहे हैं।
0: वाह अमेजिंग अमेजिंग,
1: कमाल है
0: जी, क्या बात।
1: कनाडा के अंदर अंदर कहीं भी मंगवाएंगे ये तेल, डिलीवरी के एतबार से आप तक मुफ्त में पहुंचेगा, मुफ्त डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, फायदा उठा लीजिए। चलिए आखिरी एक ऑफर मैं भी आपसे ले लेता हूं मलिक साहब, आज की डेट में अगर किसी खातून के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हों, मर्दों के तो गिर जाते हैं ये तो अमूमी सी आम सी बात है, लेकिन अगर किसी खातून के गिर रहे हों और कोई साहब उनको तोहफे में ये तेल देना चाहें
2: जी,
1: तो उनके लिए कोई खास रियायत है?
2: 3+1 है।
1: अच्छा 3+1
2: % डिस्काउंट पर उसको दे देंगे, वो आगे बांटे।
1: अरे वाह वाह वाह,
2: उन पर एहसान करें।
1: और वैसे भी खवातीन के बाल जितने घने होते हैं और जितनी तेजी से वो बाल वापस चाहती हैं, उनको 3 बोतलों की तो जरूरत रहेगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: जिस फैमिली को दो लोग होते हैं घर में उनको तो जरूरत पड़ती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: हम मैंने आपको फिर एक दफा आज आपने कहा, आज फिर आपको अनाउंस कर दें।
1: हाँ जी,
2: जो भी आज मंगाए 3+1 की उनको हम,
1: अरे वाह 3+1 की ऑफर लगा दिए, कमाल की ऑफर है जी,
2: 5% डिस्काउंट हो जाएगा।
1: वाह वाह वाह, 6475215 5159. थैंक यू वेरी मच.
0: शुक्रिया जफर साहब.
2: गुड लक. सो नाइस.
0: थैंक यू जी. थैंक यू आमिर. जैसे आप शेर का उधार नहीं रखते, मैं गाने का उधार नहीं रखती. ये गाना मेरी तरफ से आपके नाम.
1: अरे वाह वाह. इसमें ऐसा क्या खास है कि आप इसको मेरे नाम करना चाहती हैं?
0: क्योंकि आपका जो दिल है ना, वो बच्चे से बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा.
1: इसका एक हवाला ये भी हो सकता है कि कोई और इधर उधर आपको आपके जहन में नहीं आया कि मैं किसके नाम गाना करूं, किसके नाम करूं, तो मुझे आपने देखा यहाँ बैठे हुए मुझे पे.
0: और आपने मुझे सारी वजह सारे रीजंस पिछले एक घंटे में दिए कि मैं ये गाना प्ले करूं आपके लिए. प्लीज
1: स्टे ट्यून्ड.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
8: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
7: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
8: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
9: सब बात हो जाए रोड पर मौजूद उन लोगों की जो बेहतरीन ड्राइवर हैं, जिनका तजुर्बा है, जिनकी ड्राइविंग हैबिट्स बड़ी कमाल की हैं, बड़े मोहतात हैं, खास तौर पर अहले खाना के साथ मिलकर कहीं जा रहे हों फिर तो और भी एहतियात बरतते हैं। लेकिन यही गारंटी, यही जमानत हर किसी के लिए नहीं दी जा सकती। हर कोई महफूज ड्राइवर नहीं है, हर कोई सेफ ड्राइवर नहीं है, हर किसी की हैबिट्स आपकी तरह अच्छी ड्राइविंग हैबिट्स नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपका कसूर नहीं भी है, तो किसी भी सिमत, किसी भी डायरेक्शन और दिशा से कोई गाड़ी आके आपकी गाड़ी से टकरा सकती है। ऐसी सूरत में बात को बताना एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जुबान में वो स्टोरी, वो कहानी सुना सकें। बहुत से लोग इस वजह से क्लेम करने में, अपना हक लेने में नाकाम हो जाते हैं कि वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी, अपनी बात ठीक तरीके से पहुंचा नहीं सकते, बता नहीं सकते, कि जुबान पर उनको ग्रिप हासिल नहीं होता। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो आपकी जुबान बोलते हैं, आपके कल्चर, आपकी सकाफत, आपके बैकग्राउंड से हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड को समझते हैं और फिर कोर्ट में बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके लिए। जब से इन्होंने ये काम शुरू किया है, मोर देन फुल टाइम इसी सेक्टर में, इसी काम में, यही इनकी स्पेशियलिटी, यही इनकी एक्सपर्टी या यही इनका फोर्टे है, मोर देन फुल टाइम इनटू पर्सनल इंजरी। पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, कमर्शियल लॉस जानते हैं, कमर्शियल एलिमेंट्स जानते हैं किसी भी केस के हवाले से, उसके बाद एलएलबी किया, बैरिस्टर हैं, सोलिसिटर हैं, पर्सनल इंजरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है यहां जीटीए में। इनसे जरूर बात कीजिएगा, इनका नंबर जरूर नोट कीजिएगा, और पर्सनल इंजरी के हवाले से, स्लिप और ट्रिप के हवाले से, क्लेम्स के हवाले से कोई बात, कोई मशवरा, कोई ख्याल, कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, ही इज द मैन, सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको। सर आपको वेलकम करते हैं।
0: जी तो फैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिसनर से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं।
9: थैंक यू।
0: और हम उन्हें कुछ ऐसी टिप्स दें जो उनके काम आए।
9: जी
0: तो फैल भाई, जैसा आप बताते हैं सैयद लॉ ऑफिस एक पर्सनल इंजरी एक्सक्लूसिव लॉ फर्म है जिसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है, एरोप्लेन इंजरी है, डिसेबिलिटी क्लेम है, इसके साथ साथ कोई हाउस बर्न हो गया है उसके क्लेम में, कोई थेफ्ट के क्लेम है, तो ये सारे काम सैयद लॉ ऑफिस करता है। और व्हेन यू रिटेन अस यू वांट टू मेक श्योर दैट वी अवर क्लाइंट गेट द मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन ऑफ देयर इंजरीज विच दे गॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द एक्सीडेंट्स। इसमें तो फैल भाई मैं ये आपको बता दूं कि लास्ट 13 ईयर्स से जो हमारे कम्युनिटीज हैं, यू नेम द कम्युनिटीज इन GTA, वी हैव ऑल दोज क्लाइंट्स। और हमारे सेटलमेंट जो हैं आप बताते भी रहते हैंगे मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर को क्रॉस करते हैंगे। यही वजह है कि सैयद लॉ ऑफिस लास्ट 13 ईयर्स से सिर्फ एक ही एरिया में कम्युनिटी को सर्व कर रहा हैगा और वो है इंश्योरेंस क्लेम, कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट। मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा कि जो बहुत से लोग एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उनको क्लेम को किस तरह से प्रोसीड करना है।
9: राइट।
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि यू हैव टू रिटेन द बेस्ट लॉयर इन टाउन। और हमारे पास जो है वी हैव लाइसेंस पैरालीगल अवेलेबल विद अस, वी हैव लॉ क्लर्क हु आर वर्किंग ऑन योर फाइल एंड मेक श्योर दैट यू गेट योर बेनिफिट्स आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली, यू गेट योर वीकली बेनिफिट्स, मंथली बेनिफिट्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर यू रिटेन सैयद लॉ ऑफिस, एंड देयर आफ्टर योर ट्रीटमेंट नीड्स आर फुलफिल्ड एंड दोज ट्रीटमेंट नीड्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाई इंश्योरेंस कंपनीज।
9: दिस
0: इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू रिटेन अ लॉ फर्म which believes that you are the most valuable asset.
9: Yes.
0: And we have to take your claim personally to guide you through all the process. इसलिए कि इस वक्त जो क्लाइंट होते हैं जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं they are in desperate need of help, और उनको इस सिलसिले में अगर कोई ऐसी पार्टी मिल जाए जो कि उनको कहीं जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ ले जाके उसके हवाले कर दे और बाद में उनकी कोई सुनवाई ना हो, तो उससे ज्यादा डिस्करेजिंग जो है वो उनके लिए कोई चीज नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने जो है वो वी हैव गॉट क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल विद अस टू मेक श्योर कि आपको जो है इस किस्म का कोई भी सेट बैक्स नहीं हो, यू आर ऑलवेज हर्ड, आपकी कॉल्स अटेंड हो और आपके क्लेम्स जो है वो प्रोसेस हो। वो पर्टिकुलरली ये हमारे राइड शेयरिंग सर्विसेज के ड्राइवर जो कि ज्यादातर रोड्स पर होते हैं और एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि उनके क्लेम, उनका इनकम लॉस क्लेम और उनका जो है वो क्लेम अगेंस्ट द एट फॉल्ट पार्टी फौरी तौर पे प्रोसेस हो ताकि उनका आने वाली जिंदगी जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर सके।
9: बिल्कुल ठीक।
0: इसी तरह जो कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स हैं वो जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैंगे, उनके भी जो है जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो उनका लॉन्ग टर्म इंजरीज के लिए उनको फौरी असिस्टेंस चाहिए होती है। सैयद लॉ ऑफिस मेक श्योर दैट यू गेट ऑल दोज बेनिफिट्स और आपका क्लेम जो है वो स्पीडिली प्रोसेस हो। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो फैल भाई मैं ये कहूंगा आपके लिसनर से, कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल हो, ट्रिप एंड फॉल हो, डॉग बाइट हो, आपने की एक नंबर पे कॉल करना हैगा सैयद लॉ कम्युनिटी पर्सनल इंजरी लॉ फर्म। नंबर आप तो फैल भाई आप बताएंगे ताकि आपके लिस्टनर्स हमारा नंबर नोट कर लें। थैंक यू।
9: ये नंबर आपके पास होना चाहिए, आप ड्राइव करते हैं या नहीं करते हैं, आप बहुत केयरफुल ड्राइवर हैं या लिटल केयरलेस हैं, यू मस्ट हैव दिस नंबर। कसूर आपका हो या ना हो, आपको बहुत बेहतरीन कंपनसेशन दिला सकते हैं, आपके राइट्स का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख के बेस्ट कंपनसेशन दिलाए, क्योंकि एक ही क्लाइंट को अप टू $2 मिलियन तक की कंपनसेशन ये दिला चुके हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए 416 937 5046 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 416 937 5046। सैयद एम रजा बैरिस्टर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच।
10: लवी डवी शो पर आप हैं शिवानी और आमिर के साथ, 10:18 का वक्त है। और आमिर कहते हैं ना कि आजकल लोगों को एक बहुत जेन्युइन और बहुत ज्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम है, वो है नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है
9: जी जी।
10: तो उसके लिए एक और चीज है, आमिर मुस्कुरा रहे हैं तो मैं बताई दूं कि अगर मोहब्बत ताजी ताजी हुई है तो उसके लिए नींद ना आना परेशानी का सबब बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश नजर आते हैं, 15 मिनट सो के भी रात में, है ना
9: जी। और तो, मोहब्बत नहीं हो रही हो किसी से, वो भी एक बहुत बड़ा मसला
10: है ना,
9: उसकी तो, वजह से भी नींद नहीं आती।
10: नहीं, वो तो कॉमन प्रॉब्लम है।
9: कुछ लोग बड़े सख्त दिल होते हैं, मोहब्बत उनको होती ही नहीं,
10: है ना।
9: हाँ। खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा हो, प्यारी से प्यारी बात हो, ऐसी खूबसूरत बातें करती हुई शरारती रोशन आंखें हो, उनका ध्यान ही नहीं जाता।
10: सब कुछ करेंगे, मोहब्बत तो करनी नहीं है, है ना। तो लेकिन आजकल स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो कहते हैं ना कि जो एक स्लीप हार्मोन होता है जो हमारे नींद के लिए ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी में होता है, सबकी बॉडी में होता है, ज़्यादा कम होने की वजह से भी वो नींद नहीं आती है।
9: अच्छा।
10: उसको कहते हैं मेलाटोनिन।
9: मेलाटोनिन,
10: हाँ जी। तो ड्रग स्टोर पर ये ओवर द शेल्फ भी आपको मिलता है, उसकी टैबलेट्स, उसके सप्लीमेंट्स होते हैं, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन एक जैपनीज रिसर्च हुई है, वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू अ जैपनीज रिसर्चर्स, लाफिंग इन द इवनिंग कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर मेलाटोनिन हार्मोन दैट प्लेज अ रोल इन स्लीप। शाम को अगर आप हंसते हैं, कल आप शाम को हंसे थे आमिर?
9: कल शाम को मैं बहुत हंसा था,
10: पैर में चोट के बाद भी हंसे थे, तो डेफिनेटली मेलाटोनिन ज्यादा आपकी बॉडी में गई होगी।
9: हाँ, क्योंकि मैं कल कहीं स्लिप हो गया था, कहीं फिसल गया था जमीन,
10: फिर भी हंसे?
9: जी हाँ, फिर भी हंसा। उसकी वजह क्यों? वजह भी तो पूछे ना, कोई वजह भी तो हो सकती
10: है।
9: ये एक बड़ा गैर मामूली वाकया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
10: उसकी वजह क्या थी आमिर?
9: वजह ये थी कि जब मैं फिसला तो एक मासूम सी, प्यारी सी, बहुत क्यूट सी बच्ची सामने खड़ी मुझे देख रही थी।
10: क्या बात।
9: और वो इतना खिल के हंसे जैसे फूल खिल जाता हो गुलाब का, और उसकी हंसी में इतनी बेसाख्तगी, इतनी सादगी, इतनी दिलकशी, इतनी गहराई और इतनी नाजुकी थी कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया इतनी तकलीफ के बावजूद।
10: हाउ स्वीट। एक और चीज भी है,
9: जैसे आप मुझे कभी कभी परेशानी में देख के हंसती है ना,
10: इसलिए कि आप उस बच्ची को देख के भी आप मेरी तरफ ऐसे ही हंसे, लेकिन आप कभी हंसे नहीं, तो मैं हंसती रहूंगी जब तक आप हंसेंगे नहीं मेरी तरफ देख। रिसर्च कहती है कि कपल्स हु लाफ टुगेदर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स डे,
9: ओके,
10: कपल्स के लिए एक साथ 10 मिनट साथ में हंसना बहुत टीडियस जॉब
9: नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। कपल्स, मतलब डिपेंड करता है शादी को कितना टाइम हो गया है, तो 10 मिनट मुसलसल हंस सकते हैं कपल्स, क्योंकि पागलपन की आखिरी हद तक को चू चुके होते हैं वो लड़के।
10: हाँ, या तो वो स्टेज होती है या अब एंगेजमेंट और शादी के बीच का कोर्टशिप पीरियड होता है।
9: हाँ बिल्कुल, तो 10 मिनट नहीं, वो तो हंसते ही रहेंगे, वो ऑल द टाइम ही हंसते रहेंगे।
10: आप फिर टांग पे चोट क्या लगी, अगर टांग ही चली जाए तो भी खुश होंगे कि कोई बात नहीं, टांग और हाथ नहीं रहा, वो इंसान तो रहा जिंदगी।
9: मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ मिलके हंसे, कपल की बात है, चलें कपल अगर मिलके हंसे और 10 मिनट मुसलसल हंसता चला जाए, वो हंस सकता है, इससे भी ज्यादा हंस सकता है अपनी बेबसी पे। कभी बेबसी पे भी हंसी आती था कि आप कुछ कर ही ना पाए, मामले का कोई हल ही ना निकल पाए,
10: तो
9: हंसी लें बस फिर गया,
10: हेल्थी बना लेते।
9: देखिए, जब आपके पास कुछ बाकी नहीं रहता खोने के लिए, तो फिर सिर्फ हंसी है और कुछ नहीं।
10: तो रिसर्च कहती है, ऑन द सीरियस नोट लिसनर्स, आप अगर आमिर की बात जो है उसे थोड़ा सा अलग थिंकिंग रखते हैं, सिंसियरली आप अपने बेटर हाफ के साथ हंसते हैं 10 मिनट, दिल पे पत्थर रख के। तो रिसर्च कहती है कि कपल्स हु लव टुगेदर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे हैव अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर लास्टिंग रिलेशनशिप।
9: मोर लास्टिंग रिलेशनशिप, वाह वाह वा,
10: पूरी बातें नहीं सुनी थी आपने ना, इसलिए असल में।
9: अरे अरे अरे अरे अरे, ये बड़ा अच्छा काम आपने किया, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि उनकी जिंदगी बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कपल्स के हवाले से, आज हम बात कर ही रहे हैं तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो एशियन कपल्स हैं
10: जी,
9: इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान, ये जो ये जो खत्ता है साउथ एशियंस की मैं बात करता हूँ, यहाँ के रस्मों रिवाज ऐसे हैं कि कपल्स की जिंदगी को ज़्यादा लंबी होती नहीं। मतलब एक चीज़ शुरू हुई, सबसे पहले तो रिवायत यह है कि लड़का क्या करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है भाई, लड़का क्या करता है। शादी से पहले ही लड़के के गले में ये फांसी का फंदा डल जाता है कि वो करता क्या है। भाई अगर वो करता नहीं है कुछ तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसको शादी करने का हक ही हासिल नहीं। देखिए कितनी बड़ी अजियत है ये।
10: किसी ने पूछा कि तुम करते क्या हो, अब भला बताइए, मोहब्बत करना कोई काम ही नहीं हुआ,
9: काम ही नहीं हुआ। जैसे जो लोग कुछ करते नहीं है उनका कुछ शादी पे कोई हक नहीं है क्या? और बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, लड़का बड़ा सेटल होगा, फलां कंपनी में इंजीनियर है, फलां जगह पे डॉक्टर है, फलां जगह पे बिजनेसमैन है, शादी हुई नहीं उसका, सब कुछ चौपट हुआ नहीं। ऐसा भी होता है, यू नो होता है, आई हैव सीन दिस, इट लिटरली हैपेंस।
10: जी बिल्कुल।
9: ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी होता है, लड़का कुछ नहीं करता था, शादी हुई ऐसे खुशहाल हो गया वो, सब कुछ किस्मत खुल गई उसकी और वो बरसरे रोजगार भी हो गया, पैसा भी आना शुरू हो गया, सब हो गया।
10: लेडी लक आपका मतलब है?
9: ये तो नहीं मुझे मालूम। लेडी लक लेडी बैड लक भी होती है कभी कभी। चलिए ये देखिए, तो यानी वो पहला मरहला तो ये हुआ, अब फिर शादी हो गई, उसके बाद फिर सारी की सारी जिम्मेदारियां लड़के के सर पर होती हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पढ़ाने का मरहला होता है, उसके बाद फिर बड़ी लेविश किस्म की, बड़ी कमाल की, एक बड़े लेवल पे शादी बच्चे या बच्ची की करनी होती है, उसके लिए
10: पड़ोस से रिश्तेदारों से कंपैरिजन भी करना है, वही बात है।
9: जी हाँ, और उससे पहले अगर बेटी की शादी है तो जरूरी है कि अच्छा घर हो, ताकि रिश्ते देखने वाले जो आ रहे हैं उन्हें पता लगे कि वो अपने आप को किसी अच्छे घर के साथ जोड़ रहे हैं।
10: क्योंकि जिस पैरामीटर से आप उस घर में लाए गए थे वही पैरामीटर्स आपने अपनी बेटी के लिए भी सेट किया।
9: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल,
10: इट पासेस ऑन।
9: जी पासेस ऑन। फिर उसके बाद

0: आंखें अंदर धस जाती हैं, बाल बिल्कुल सफाया हो जाता है। फिर जफर मलिक को फोन करते हैं वो कि भाई हमारा
1: वो भी
0: कुछ कीजिए,
1: कब तक साथ देंगे
0: कब तक साथ देंगे
1: वो भी एक
0: तो यानी, और ऑन दी अदर हैंड चूंकि मेरा एक तवील अरसा मगरबी दुनिया में गुजरा, इंग्लैंड में गुजरा, तो जो सफ़ेद फॉर्म कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो इटालियन है, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो नॉर्वेजियन है, चाहे यूरोप के किसी भी हिस्से, इवन अमेरिका कनाडा की भी बात कर लें, तो उनके हाँ ये सारी जिम्मेदारियां नहीं हैं। वो बड़ी अच्छी राहत अफरोज, पुरसकून और पुरलुत्फ जिंदगी जीते हैं। उनके लिए जिंदगी के एक एक लम्हे में मजा है, लुत्फ है, क्योंकि जिम्मेदारियों का अंबार नहीं है।
1: एग्जैक्टली, दे नो द वैल्यू ऑफ लाइफ।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैं आगे पढ़ने से पहले नंबर जरूर बता दूं, डिजिटल मीडिया कोर्स बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 416-303-3639 पर आप कॉल कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल सकती है। अगले गाने पर जाने से पहले एक और मैं रिसर्च बता दूं कि हायर फेशियल सिमिलैरिटी इन कपल्स, अब आप सोचेंगे कपल्स में कैसे सिमिलैरिटी हो गई, हस्बैंड वाइफ की शक्ल कैसे मिल सकती है, लेकिन ये रिसर्च कहती है कि ऐसा पॉसिबल होता है बिकॉज हायर फेशियल सिमिलैरिटी इन कपल्स इज एसोसिएटेड विद हायर मैरिटल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस।
0: यानी
1: अगर आप जिंदगी में एज अ कपल हस्बैंड और वाइफ ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो आपके फेशियल सिमिलैरिटीज भी होती हैं। उसका रीजन ये बताया गया है कि जब आप एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा खाते हैं, चीज़ों पर एक जैसा रिएक्ट करते हैं, बच्चों की चीज़ों पर, बच्चों की केयर में एक जैसा रिएक्ट करते हैं, तो आपकी फेशियल सिमिलैरिटीज होने लगती हैं।
0: लेकिन मुझे लगता है ये बड़ी खतरनाक भी हो सकती है, मतलब जो आपको नहीं जानता कहीं बहन भाई ना समझने लगे, फेशियल सिमिलैरिटी फेशियल सिमिलैरिटी का तो यही मतलब है, यू नो, आप आपस में दिखाई एक से देते हैं, उनके नकूश मिलने लगते हैं, चेहरे के तासुरात मिलने लगते हैं, इट्स वेरी डेंजरस।
1: अगर आमिर की सोच से आप ताल्लुक रखते हैं और 416-303-3639 पर फौरी तौर पर कॉल कीजिए, एज सून एज पॉसिबल। अगला गाना आपके लिए।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
3: क्या आप सुन रहे हैं?
4: क्या आप सुन रहे हैं?
3: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
4: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
3: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
5: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
6: वेरी गुड मॉर्निंग लवी डवी शो पर आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। मंडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह है। मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
7: सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत खिली हुई, रोशन, खूबसूरत सुबह है यहाँ टोरंटो में, इस उम्मीद और इस ख्याल के साथ कि आपका आज का दिन इंतहाई शानदार, तामीरी और प्रोडक्टिव गुजरे। हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं।
6: क्या बात है। और बिगिनिंग ऑफ द वीक में कहते हैं ना कि जो मंडे होता है वो एक बार सेट कर देता है, एक हमारे लिए एक प्लानर का काम भी करता है, जो हम पूरे हफ्ते की प्लानिंग करते हैं मंडे को, और उसके बाद हम उसमें वीकेंड की प्लानिंग भी शामिल कर लेते हैं, जिससे कि काम काम जैसा काम ना लगे।
7: बिल्कुल ठीक।
6: और वीकेंड पर अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं इन एडिशन टू इन्जॉइंग योर लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजिटल मीडिया का प्रोडक्शन कोर्स है जिसके बारे में हम जानकारी देते ही रहते हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है आजकल कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना।
7: बिल्कुल ठीक।
6: और आज हम उसी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे जो लवी डवी शो ऑफर कर रहा है आपको।
7: जी बिल्कुल।
6: तो आमिर बताइए, एज एन एक्सपर्ट की कैसे हम ये काम कर सकते हैं?
7: देखिए शिवानी, बड़ी कंपनीज को ले लीजिए, बड़े जर्नलिस्ट्स को ले लीजिए, बड़े जितने भी नाम हैं दुनिया के, वो कन्वेंशनल यानी रिवायती प्लेटफॉर्म्स से उठ के डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चले गए हैं। आप बड़े जर्नलिस्ट्स को अब YouTube पे देखेंगे
6: जी,
7: बड़ी कंपनीज को उनकी इश्तिहारी मुहिम को, तशहीरी मुहिम को आप YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे भी देखेंगे।
6: इन एडिशन टू व्हाट दे आर डूइंग,
7: व्हाट दे आर डूइंग, बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली इनकरेज करता हूँ कि अगर आपको वाकई एक कैंपेन करनी है, एक होता है कैंपेन करना, एक होता है किसी भी रेडियो पर एक आध एड चला देना, इन दोनों में बहुत फर्क है शिवानी। कैंपेन एक वॉर की तरह होती है, एक जंग की तरह होती है, जिसमें प्यादा फौज यानी पैदल फौज भी आती है, एयरफोर्स भी आती है, नेवी भी आती है, यानी हर तरफ से आपको देखना होता है कि कोई एलिमेंट, कोई कंपोनेंट, कोई साइड, कोई एरिया खाली ना रह जाए।
6: सो ट्रू,
7: दिस इज कॉल्ड कैंपेन।
6: बिल्कुल।
7: इसी तरह से अगर आपको अपने कारोबार को तरक्की देनी है, बेहतरी देनी है और आपको कुछ बड़ा करना है, तो फिर रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिटिल बिट ऑफ टेलीविजन जितनी उसकी व्यूअरशिप आजकल रह गई है, ये 6-7 कंपोनेंट आपको अपनी कैंपेन में शामिल करने होंगे।
6: You mean as in collective measure?
7: जी, at the same time, जैसे किसी पर हमलावर होते हैं, इसी तरह से कैंपेन भी ऑडियंस के दिमाग में एक नक्शा खींचने के लिए चलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इमेज रजिस्टर करना, इमेज बिल्ड करना, इमेज डेवलप करना, और उसको इस सतह तक ले जाना कि आपने देखा होगा कि बहुत से एड्स आज भी हमारे जहनों में महफूज हैं, जो हमने इंडिया पाकिस्तान में दूरदर्शन पे या पीटीवी में सुने, आज भी हम उन टैग लाइन्स को दोहराते हैं। एक शायद सर्फ का इश्तेहार था, डिटर्जेंट का, डिटर्जेंट का इश्तेहार था कि जी वो दाग भी धो डालें जो दूसरे छोड़ जाएं। आज भी हमें याद है, यानी मुझे लगता है कि कोई 20 साल पहले वो इश्तेहार सुना हो।
6: या और हमारे उस दूरदर्शन पे आता था वो वॉशिंग पाउडर निर्मा का ऐड था, तो मैं उस वक्त और बाकी सारे भी ऐड थे, और इतने वो दिल में घर कर गए हैं कि मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे अभी तक वो साड़ी और उसका बॉर्डर याद है जो पेन के मॉडल ने उसमें काम किया था। राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
7: तो वो कैरेक्टर्स हमें याद है, वो लाइनें, टैग लाइन्स, पंच लाइन्स हमें याद हैं। क्यों याद हैं? कि उन्होंने रेडियो पे भी इश्तेहार वही चलाया, वही लाइन थी, टेलीविजन पे चलाया, वही लाइन थी, वही ऐड था, अखबार में इश्तेहार दिया तो वही लाइन लिखी हुई हमें दिखाई दी। तो ऐसा ब्रांडिंग किया उन्होंने उस प्रोडक्ट का कि आज भी हमें वो प्रोडक्ट याद है। जैसे डिनटॉनिक का इश्तेहार होता था, वो आज भी हमें उसकी टैगलाइन याद है, उसकी स्टोरी लाइन याद है, सब याद है। इसी तरह से हम आपकी कैंपेन करते हैं।
6: अच्छा, यही मैं जानना चाह रही थी कि हमारे जो लिस्टनर्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि हम किस तरीके से उनके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं।
7: जी बिल्कुल, पहला तरीका ये होता है कि हम आपका एड बनाते हैं। एड में हम आपका वीडियो एड भी बनाते हैं, 30-second का वीडियो एड बनता है जिसमें टैग लाइन्स, लॉग लाइन्स, स्लोगन्स, आपका मैसेज टेक्स्ट की सूरत में भी और वर्बल भी, दोनों ही देते हैं बेहतरीन तरीके से। एट द सेम टाइम एक ऑडियो एड आपका बनता है रेडियो के लिए। तो हम एट द सेम टाइम, मान लीजिए आपने कैंपेन शुरू करनी है 10 मई से, आपका नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है, हम ये काम 27 साल से कर रहे हैं
6: जी,
7: तो आपका नया बिजनेस है, आपने कैंपेन चलानी है, हम एक एड बनाएंगे, वो इंस्टाग्राम पे पेड एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स जैसे कहते हैं, जिसमें आपको रिपोर्ट मिलेगी हर 15 दिन के बाद कि लेडीज ने कितना देखा, जेंट्स ने कितना देखा, बच्चों ने कितना देखा, किस किस डिवाइस पे इसको देखा, और इस हिसाब से फिर आप अपना बजट इंक्रीज कर देते हैं।
6: Amazing.
7: इसी तरह यूट्यूब एड्स करते हैं हम, इसी तरह फेसबुक एड्स करते हैं हम, टिकटॉक एड्स करते हैं, और रेडियो तो हम करते ही करते हैं। सो वी विल मेक योर कैंपेन फुल फ्लेज्ड कैंपेन, और इस बात की हम जमानत देते हैं कि आपकी ब्रांडिंग को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि सुबह शाम दिन रात लोग आपके नाम को याद करें।
6: क्या बात है, तो देर किस बात की है, इंतजार किस बात का है, मंडे का फायदा उठाइए, मंडे ब्लूज को एक बिजनेस, एक प्रोस्पेक्टिव, एक बिजनेस दिन के हिसाब से आप लीजिए, और उसके लिए आमिर हमारे लिसनर्स को नंबर बता देते हैं।
7: बिल्कुल, नंबर बता देते हैं, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत थॉट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मंडे ब्लूज की बात करती हैं आप, तो मुझे लगता है कि मंडे लेजी दिन या मुश्किल दिन या कठिन दिन उन लोगों के लिए होता है जो ख्वाब नहीं देखते। जो ख्वाब देखते हैं उनके लिए वीकेंड बहुत मुश्किल होता है कि काम करना शुरू कब करेंगे हम,
6: और मंडे
7: इट्स टू वर्क
6: जी। और आमिर के लिए मंडे ब्लूज जो है, जब भी मैं मंडे ब्लूज कहती हूँ, मेरे चेहरे पर थोड़ी परेशानी आती है, आमिर के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि ब्लू आमिर का फेवरेट कलर है।
7: यस इंडीड, ऑफ कोर्स, नाउ यू आर टॉकिंग,
6: इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ब्लू में भी खुशी ढूंढ ली।
7: जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर मिलाइए, अपनी पूरी कैंपेन बुक कराइए। याद रखिए, एक अच्छा बेहतरीन कारोबार अगर आप लाख डॉलर उस पर खर्च कर रहे हैं तो कम से कम $30,000 मार्केटिंग पे लगाइए।
6: करेक्ट,
7: इफ यू रियली वांट योर बिजनेस टू वर्क देन यू हैव टू एलोकेट बजट टू द मार्केटिंग सेक्टर।
6: एब्सोल्युटली,
7: हियर इज द नंबर टू डायल, आप ये जिम्मेदारी हमें दीजिए, यू विल नेवर रिग्रेट। 416-303-3639। आपका रेस्टोरेंट है, नया बिजनेस है, आप मुर्गेज एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, आप रियल स्टेट में हैं, इन्वेस्टमेंट में हैं, जो भी बिजनेस है आपका, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी पूरी फुल फ्लेज्ड मार्केटिंग कैंपेन, प्रमोशनल कैंपेन, एडवर्टीजमेंट कैंपेन डिजाइन करेंगे और बड़े लेवल पे उसको पिच करेंगे. 416-303-3639.
6: अमेजिंग, जल्दी मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 16-17 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। 18 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ।
5: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 12942 ਹਾਰਡਲੇਕ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਨੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬੀਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 6474481000। 6474481000। ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ seva2022@yahoo.com ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: Team Sapphire. Mahesh and Rocky Khatri, your friends in real estate.
7: Are you ready to turn your real estate dreams into reality? Whether you are a first-time buyer, looking to upsize, downsize, or invest.
6: Team Sapphire. Mahesh and Rocky Khatri, your friends in real estate.
8: Sochiye, apne pehle ghar ki khushi. Ek aisi jagah, jahan yaadein banti hai, aur aapka bhavishya shuru hota hai.
7: Call us at 416-464-6568 or visit teamsapphire.ca.
6: Friends in real estate.
9: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
10: CMRFM 101.3 पर यह है लवी डवी शो, और आमिर की जो प्रीचर्स हैं जो इतनी अच्छी बातें करते हैं जिंदगी के बारे में, वो मुझे अभी समझा रहे थे ऑफ द एयर कि लाइफ मंडे को निकाल पास करने का 24 घंटे क्या तरीके होने चाहिए। इस चक्कर में मुझे पता नहीं चला कि कब मेरा माइक ऑन हो गया। तो इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, कल ये बातचीत जारी रहेगी। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार।
11: यहाँ हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है इस पैगाम के साथ कि कुछ लोग समंदर की तरह होते हैं, बिल्कुल ऊपर से एक लकीर की तरह, बिल्कुल शांत पुरसकून राहत के साथ बहते हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप समंदर को देखते हैं तो आपको एक वाटरस्केप दिखता है। जहां तक आप देखते हैं वहां तक आपको पानी ही पानी दिखाई देता है, छोटी छोटी नन्नी नन्नी सी लहरों में बहता हुआ पानी।
10: बिल्कुल।
11: लेकिन याद रखिए, समंदर की गहराई बहुत ज्यादा होती है। दुनिया का बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन, जिसे हम सुस्त रवि का शिकार समंदर कहते हैं, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बड़े खामोश होते हैं, चुप साध कर बैठते हैं, सुनते चले जाते हैं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन बात बहुत मानी खेज और कमाल की होती है। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए जो गहरे हैं। इसके बरक्स कुछ लोग बड़ा वावेला मचाते हैं, स्ट्रॉम इन द टी कप, बड़ी बातें करते हैं, बड़े दावे करते हैं, बुलंद बांग दावे होते हैं उनके, लेकिन काम करने में बहुत नातमाम, बहुत कमजोर, इरादे बहुत ढीले और नाजुक होते हैं उनके। ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको कोई काम करने की तरगीब नहीं दे पाएंगे वो, बल्कि जो काम कर रहे हैं अपनी सुस्त रवि की वजह से आपको वो काम करने में दिक्कत पेश आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि गहरे लोगों, गहरे अफराद और गहरी सोच के हामिल लोगों के दरमियान बैठिए। आप जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तुफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू, आई लव यू।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे
1: इह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा
0: ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलण लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी साथ में ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी और हाँ विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर इट डिजर्व्स।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9059461000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 4167571000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट माय मैकेनिक ऑटो.ca।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देन के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।

क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स the care it deserves.

आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सियर्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट माय मैकेनिक ऑटो.ca।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। बाहर का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 22, एंड यूवी इज हाई, इंक्रीज फ्रॉम यस्टरडे, और सनसेट होगा तकरीबन 8:24 पर, 8:24 PM, एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी 14, बट देन टुमारो लुकिंग एट क्लाउडी वेदर, 15 and 6, वेंसडे 11 and 3, एंड थर्सडे अगेन 11 and 3। बहुत ही एक प्यारे से गीत के साथ, गैरी संधू की आवाज़ में, एक तेरा सहारा, और ऊपर वाले के सहारे को देखते हुए, समझते हुए, हमने इस दिन की, मंडे की शुरुआत कर ली है। टुडे इज May 4th, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, नथिंग टू कंप्लेन। और हाँ, एक छोटी सी कंप्लेन ज़रूर है कि भाई रैप्टर्स हार गए, दैट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बट क्या कर सकते हैं, दे प्लेड वेल, और बट इन द एंड जो बेस्ट टीम होती है वही जीतती है। प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने $270 मिलियन प्लेज किए हैं फॉर यूक्रेन, एंड बॉक्स ऑफिस पर द डेविल वेयर्स प्रोडक्ट 2 अर्न $77 मिलियन इन द US एंड कैनेडा, एंड इस फिल्म को भी एक सॉर्ट ऑफ अ कल्ट फिल्म कहा जाता है, जो जब आज से 20 साल पहले पार्ट 1 आया था उसे बहुत प्यार दिया था लोगों ने, एंड सिमिलरली द पार्ट 2 इज ऑल्सो गेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ लव। हैमिल्टन क्रैश में एक ऑफिसर इंजर हुआ है, कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई है, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग आफ्टर शॉट्स वर फायर्ड इन अ पार्किंग लॉट एट यंग एंड शेपर्ड, नॉर्थ यॉर्क से ये खबर सामने आ रही है। एंड टोरंटो में ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील टू हियर पीटर डाइगार्ड्स अपील ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट कन्विक्शंस और प्रिजन सेंटेंस, और ये आज फिर से होंगे जज के सामने। एंड लेस्लीविल में पेडेस्ट्रियन सीरियसली इंजर्ड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय अ ट्रक, क्वीन और लोगन एवेन्यू पर, और मैन फेसिंग 21 चार्जेस, गन्स, एमो, ड्रग्स एंड कैश सीज्ड इन 2 सर्च वारंट्स टोरंटो एंड एजैक्स में। ये कुछ खबरें हैं, आगे चलकर स्पॉन्सर्स के मैसेजेस, 12:15 की अपनी हेडलाइंस भी बिल्कुल रेडी है, गीत संगीत का कारवां चलेगा, आपकी रिक्वेस्ट को प्ले करेंगे। द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज एज वेल एज विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग। मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे आगे चलकर, फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून है 12:30 से 3:30 बजे, अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लें, 905-206-1008 नंबर आपने रखना है याद। एंड क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन, जॉर्जटाउन, 2 लोकेशन से सर्व करते हैं, 100% इनकी जो सेल है, नेम ब्रांड सनग्लासेस पर, हर नेम ब्रांड सनग्लासेस पर भारी सेल लगी हुई है, और ऐसे वेदर में जब स्प्रिंग और समर की ओर हम रुख करते हैं तो यू डू नीड दोज ब्रांड नेम सनग्लासेस, और एक से बढ़कर एक आपको मिलेंगे ओनली एट क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। आईज एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स ऑल्सो अवेलेबल 7 days a week, एंड Brampton TV and Appliances, Sultan Ji will bring some amazing, amazing deals for us, and unse bhi baatcheet hogi. Manan Gupta Ji, Skylake Immigration se bhi aage chalkar humare saath honge with some local updates as well as the immigration update by Skylake Immigration. And jitni request aapki aa rahi hain, ek ek karke main 2 baje tak aapki requests ko play karta rahunga, and ek bahut hi choti si yahan pe break lete hain, 12:15 ki headlines lekar foran aate hain wapas.
1: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। Winter tires या extended warranty ले और हर एक के साथ पाए एक extra entry. आज drive करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 6478661086, 6478661086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: बस यूं ही तुमको ठीक से ना जानते हुए भी अपना सब कुछ बना बैठे, बस यूं ही तुम्हारी सारी आदतों को ठीक करते करते तुमको ही अपनी आदत बना बैठे, बस यूं ही तुम्हारे सपनों के साथ जीते जीते खुद अपना ही सपना भुला बैठे, बस यूं ही तुम्हारी सारी बातों पे यकीन करते करते खुद पे ही यकीन गवा बैठे, बस यूं ही तुम्हें हर लम्हा हंसाते हंसाते खुद ही हंसना भूल गए, बस यूं ही तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें इसलिए खुद ही तुमसे दूर चले गए, बस यूं ही। काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहाँ से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779,
3: 647-760-2779। लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस। Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Win Lifetime Trading. Lisa's Cosmetic 2026 Spring Warehouse Sale, Clear Optical by Varun Kanda, Brampton TV and Appliances, Kavya Homeo Care, McVean Dental Care एंड छोले भटूरे .ca। शुरू करते हैं ताज़ा तरीन हेडलाइंस। जापान की प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ईरान वॉर ऑयल क्राइसिस का एशिया पैसिफिक पर इनॉर्मस इम्पैक्ट पड़ा है। वल्केनो से एशफॉल की वजह से फिलीपींस में 300 से ज़्यादा फैमिलीज को इवैक्यूएट किया गया। ब्लैक्ड आउट ईरान को एक स्मगलिंग रिंग प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट एक्सेस। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। सदर्न इंग्लैंड के घर में हुए धमाके से 2 लोग मारे गए। पुलिस नॉट ट्रीटिंग इट एज अ सस्पेक्टेड टेररिस्ट इंसिडेंट। कैनेडा कॉन्सर्ट में प्रो खालिस्तानीज ने फ्लैग्स वेव किए। दलजीत दोसांझ ने उन्हें लीव करने को कहा, जिसके बाद हुई कंट्रोवर्सी। स्पाइस एयरलाइंस के हालात को देखते हुए यूएस कैरियर्स ऑफर रेस्क्यू फेयर्स टू फ्लायर्स एंड यूएस ब्लॉकेड के बीच इंडिया शिप कैरिंग एलपीजी ट्रांजिट्स हॉर्मूज। दूसरी ओर फ्रेंच मिलिट्री साइट पर 40,000 ने इलीगल रेप पार्टी को अटेंड किया। जेल्ड ईरानियन नोबल लॉरिएट नरगिस मोहम्मदी हॉस्पिटलाइज हुई एट वेरी हाई रिस्क। यमन कोस्ट के पास ऑयल टैंकर हाईजैक हुआ डायरेक्टेड टूवर्ड सोमालिया एंड ईरान ने दे दी है वार्निंग, कहा वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर American foolishness. Iran ne US ko warn kiya, drop your excessive demands now. Boeing faces new lawsuit over 737 Max Ethiopian crash केस और लोकल समाचारों में रीजेंट पार्क एरिया में अनप्रोवोक्ड स्टैबिंग में एक शख्स हुआ बुरी तरह जख्मी. पुलिस का कहना है कि टोरंटो मिसागा की ओवरनाइट वेयरहाउस फायर्स कुड बी रिलेटेड. स्कारब्रो में इम्पेयर्ड ड्राइवर को चार्ज किया गया आफ्टर व्हीकल हिट्स पोल. और मिसागा क्रैश में पेडेस्ट्रियन को लगी टक्कर बुरी तरह हुआ जख्मी, महिला भी हुई घायल. Canadians cancelling road trips due to high gas prices and Raptors fall to Cavaliers 114 to 102 in Game 7 last night. दूसरी ओर भारतीय समाचारों में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की विद फिश पार्टी, आईज बेस्ट परफॉर्मेंस इन केरला एज वेल. टीवीके की लैंडमार्क जीत पर विजय के पिता का कहना है कि ही नेवर हैड 1% ऑफ डाउट. तमिलनाडु असेंबली में टीवीके के विजय ने जोरदार डेब्यू किया. यूएस रिटर्न शख्स ने गुरुग्राम के हाईराइज से छलांग लगाई आफ्टर अ मैरिटल डिस्प्यूट हुई मौत. आम आदमी पार्टी वर्सेस रेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्यूजडे को दोनों कैंप्स प्रेसिडेंट मुर्मू से करेंगे मुलाकात. और रोड साइड स्टॉल से दही वड़ा खाकर उड़ीसा के 50 गांव वाले हुए बीमार. जबलपुर ब्रोड ट्रेजेडी डेथ्स क्लाइम्ब टू 13 एज लास्ट बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम द डैम. उत्तर प्रदेश के कुछ टीनेजर्स ने रील्स बनाने के लिए वाटर टैंक पर क्लाइंब किया फिर स्टक हुए, एयरफोर्स टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया. एक पैसेंजर ने दो बार किया वॉमिट. चेन्नई एयरपोर्ट पर मूविंग प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगाई. और दिल्ली के रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगी आग, 9 किल्ड आफ्टर सस्पेक्टेड एसी ब्लास्ट स्पार्क्स फायर. और राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने रिफ्लेक्ट किया इंडियाज रिजॉल्व टू एलिमिनेट टेररिज्म. और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर कहा, लेफ्ट के खिलाफ ममता की लड़ाई जोरदार जरूर थी, देन शी फाइनली बिकेम वर्स देन देम. अरुणाचल के रिजॉर्ट पर सेक्स रैकेट बस्टेड, चार महिलाओं को बचाया गया. और बंगाल में बीजेपी ने सेलिब्रेशंस शुरू की. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया यूएस सीज ईरानियन वेसल के 22 क्रू मेंबर्स को पाकिस्तान भेजा गया शिप टू अंडरगो रिपेयर्स बिफोर रिटर्न प्रोसेस. ईरानियन एनवॉय ने रीअफर्म किया पाकिस्तान का अहम रोल इन ऑनगोइंग टॉक्स विद द यूएस. इस्लामाबाद के एफर्ट्स को उन्होंने वैल्यूएबल बताया और कहा तेहरान तो अपनी डिमांड्स को लेकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. और हॉटर वेदर फोरकास्ट के साथ मर्करी राइजेस टू 42 डिग्री सेल्सियस इन कराची. मेट डिपार्टमेंट के अनुसार नो चांस ऑफ रेन इन कराची. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर प्रेसिडेंट जरदारी और पीएम शरीफ ने मीडिया वर्कर्स को दिया ट्रिब्यूट. प्रेसिडेंट ने वार्न किया ऑफ एआई मिसयूज, फेक न्यूज एंड ग्लोबल मीडिया मैनिपुलेशन रिस्क्स. पीएम ने एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी में जर्नलिज्म के रोल की तारीफ की फॉर पब्लिक अवेयरनेस. और कराची के डीएचए में एसएसपी के बेटे को पुलिस के साथ हुई लड़ाई के बाद मिली बेल. डिफेंस लॉयर ने सस्पेक्ट के खिलाफ केस को फॉल्स और फैब्रिकेटेड बताया. सऊदी अरब ने रोल बैक किया 15 ईयर एज रिस्ट्रिक्शन ऑन हज पिलग्रम्स. चिल्ड्रन एज 12 एंड अबव को एलिजिबिलिटी ग्रांट हुई. 5.2 अर्थक्वेक ने इस्लामाबाद पेशावर को हिलाया. नो रिपोर्ट्स ऑफ डैमेज और कैजुअलिटीज येट. और गवर्नमेंट अब कॉम्पनसेट करेगी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट ओनर्स एट प्राइस ओरिजिनली पेड. पीएम के अप्रूवल का इंतजार. स्पोर्ट्स जगत से हार्दिक पांड्या से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सेप्टेड, डोंट बी एरोगेंट. हार्दिक को मिला ब्रूटल रियलिटी चेक. रिनाउंड कमेंटेटर हर्षा भोगले ने मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांडे पर ब्रूटल वर्डिक्ट दिया आफ्टर 7 लॉसेस इन 9 गेम्स और कहा, हार्दिक इट्स जस्ट नॉट वर्किंग. विमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया. जमाइमा रोड्रिगस ने कहा, वी आर हंग्रियर देन एवर. साई सुदर्शन स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री, शैटर्स क्रिस गेल्स लॉन्ग स्टैंडिंग IPL रिकॉर्ड. बॉलीवुड खबरों से, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने धुरंधर के प्रोपेगेंडा फिल्म कहलाने पर कहा, टास्क ऑफ एवरी फिल्म मेकर इज टू प्रेजेंट ट्रूथ. एंड वेटरन एक्टर सुदेश कुमार डाइज एट 95 इन मुंबई ड्यू टू अ ब्रेन स्ट्रोक. दलजीत दोसांझ का कहना है कि हैव नो फियर ऑफ डेथ. रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त की राजा शिवाजी की रेकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई जारी है, रीचेस 50 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस. आयुष्मान खुराना ने पति पत्नी और वो दो को लेकर कहा, नॉट प्रॉमिसिंग इनफिडेलिटी. एंड डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने राजा शिवाजी को रिव्यू किया और कहा, स्लैशिंग एंड स्मैशिंग द बॉक्स ऑफिस. उषा मंगेशकर ने यंगर सिस्टर आशा भोसले की डेथ पर शोक जताते हुए कहा, आई फील वेरी सैड एंड लोनली आफ्टर आशा लेफ्ट. और कंगना रनौत ने वायरल फेक न्यूज पर रिएक्ट किया अबाउट marrying Rahul Gandhi if he joins BJP. Kangana ne kaha, how pathetic is this? Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headlines. Studio ka number 416-593-0055, 416-593-0055 studio ka number hai. Aur BJP ne itihasik jeet hasil ki hai. literally after 50 years we are seeing something like this Bengal mein. Agar Tamil Nadu ki baat ki jaye to TVK ke Vijay ne zabardast jeet hasil ki aur aane wale dinon mein CM ki gaddi par baithe honge. And Assam mein bhi Himanta Biswa Sarma jo chief minister hain BJP ke, unhone bhi solid jeet hasil ki hai. Ek caller hai, unhe lete hain fir aage badhte hain. Aap on air hain, please go ahead.
5: जी कैसे हैं आप? ठीक है
2: जी. जी ठीक है, आप सुनाइए.
5: सनी एक सवाल है, पता नहीं आप जवाब दोगे या नहीं दोगे, पता नहीं. मेरा सवाल ये है
2: जी,
5: यार ये न्यूज कौन बनाता है? आपकी जो न्यूज आपने पढ़ी है
2: जी,
5: उसमें 10 आदमी दही बड़े खा के बीमार हो गए इंडिया में. जो कमिश्नर का बेटा था उसने पाकिस्तान में लड़ाई की, पुलिस ने उसको पकड़ लिया. भाई साहब हमें कोई वो खबरें दे जो कोई, अब दही बड़े खा के तो यहाँ 50 आदमी कभी बीमार हो जाए तो सबकी खबरें दोगे? तो ये कौन खबरें बनाता, कौन ये है? ये कार्तिक तो नहीं साहब, कार्तिक साहब तो नहीं बनाते आपकी खबरें?
2: चलिए आपको खबर पसंद नहीं आई ये दही बड़े वाली खबर?
5: नहीं नहीं, तो मैं फिर ये मुझे बताए ना इसके पीछे होगा ना, हो सकता है कि 10 दही बड़े खा के कोई ऐसे दही बड़े थे.
2: नहीं, 50 लोग से ज्यादा बीमार हुए, 5 लोग बीमार नहीं हुए.
5: अच्छा
2: जी,
5: चलिए वो खबर
2: आपके लिए. 50 लोग को, लोगों का बीमार होना इज प्रॉब्ली अ नॉर्मल थिंग, राइट?
5: ओए यार, फूड पॉइजनिंग हो गई, अब उसकी खबर दोगे सनी जी? क्या हो गया यार?
2: अच्छा ना दे मतलब.
5: कोई गाना ही सुना दो, इससे बेहतर नहीं है कि खबर गाना सुना दो.
2: सही है, चलिए. आज मंडे के दिन आप बड़े अच्छे मूड में हैं, ये अच्छी
5: नहीं,
2: बात
5: नहीं.
2: है.
5: आप बताओ ना, आप वो बीमार हो गए या वो कमिश्नर के बेटे को पकड़े, कुछ लफंगा होगा कमिश्नर का बेटा वहाँ पाकिस्तान में, कम लफंगे और लफंगे घूम रहे, अब हर एक की खबरें दोगे? और वो तो बड़ा वो हो गया होगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान कनाडा में मेरी खबर चल रही है भाई. हाँ, मैं इतना फेमस हूँ.
2: सही बात है, और उस पे टिप्पणी की जा रही है आपकी तरफ से, ये भी तो छोटी बात नहीं है. अच्छा, गैस प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये खबर दे देते हैं कि गैस प्राइस जो है,
5: देखो ना अभी गैस प्राइस ऊपर जा रहे हैं, उसका कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है.
2: हाँ,
5: अब वो जो प्लेन बेचा था ये कैसे लिया कि जितने में लिया उतने में बेच दिया
2: जी.
5: हाँ, कुछ $100 ऊपर ही बता देते कि ये कहते खबर देते कि हमने प्रॉफिट में बेचा, ये नहीं बता.
2: अच्छा, बीजेपी जो आपने सुना, बीजेपी बंगाल में जीत गई है और बीजेपी ने असम में भी जीत हासिल की है, और टीवीके के विजय साहब जो हैं वो पहली बार तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके को हरा के वो जीते.
5: भाई देखे ना, अभी वो तो सियासी बातें हैं ना, लेकिन अगर इंडिया के लोग ये समझते हैं या बंगाल के लोग समझते हैं कि बीजेपी आके उनके मसाइल हल कर देगी तो जिताते रहे. लेकिन सबको पता है कि ये जो सिस्टम है ना वहां का,
2: हाँ,
5: जो सियासत का
2: जी,
5: वो ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने मेजोरिटी सीट ली, ये होना चाहिए कि जिस पार्टी ने 75% से ज्यादा जब तक नहीं लेती इलेक्शन करते रहे. क्योंकि होता ये है कि एक ने 30 वोट लिए, दूसरे ने 35 लिए और अगले ने 20 लिए, तो 35 वाला जीत गया.
2: अच्छा,
5: तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए. और मेरा ख्याल में इंडिया के लोग जो है, और पाकिस्तान के लोग को तो मैं इतना नहीं कहता हूँ
2: जी,
5: इंडिया के लोग तो काफी मैच्योर है इन बातों में, और एहतियात भी पूरा पुराना है.
2: हाँ,
5: तो अभी तक ये समझ में नहीं आती कि यार ये सिस्टम को ही चेंज करो, ऐसे ही अपने आप को पागल बनाया हुआ सबने. ये इलेक्शन इज नॉट अ रियल इलेक्शन.
2: अच्छा,
5: ये इलेक्शन कोई इलेक्शन नहीं है, ठीक है. इसको आपके मसले कभी भी हल नहीं होंगे.
2: चलिए ठीक है जी, आपके कमेंट्स ऑन एयर चले गए, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड अगले कॉलर को लेते हैं. अशोक जी, आप ऑन एयर हैं, आपको भी लगता है कि दही बड़े वाली एड, मतलब ये न्यूज नहीं देनी चाहिए?
6: नहीं सनी साहब, दही बड़े वाली न्यूज आपने दिया जो बिल्कुल सही दिया है. साथ ही आपने जबलपुर की भी न्यूज सुनाई, जो बरगी डैम पर वो नाव पलट गई थी, वो भी बिल्कुल सही दी न्यूज, उसमें कोई गलत नहीं है. आपके लिए मेरा सुझाव है
2: जी,
6: कि आप ना हर श्रोता से पूछ लीजिए, करिए कि किस कौन सी न्यूज
2: आज मैं मुझे देनी चाहिए.
6: दूसरा एक कमेंट सुन रहा था
2: जी,
6: इलेक्शन इंडिया में जो इलेक्शन हुए हैं, और खासतौर से बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु में
2: जी,
6: ये

0: कहना कि जब कोई हार जाता है तो इलेक्शन में काफी काफी खराबियां निकालने लगते
1: जो
0: हैं
1: ममता कर रही
0: आप।
1: है, ममता ईवीएम ईवीएम को ब्लेम कर रही है, अगर वो जीत जाती फिर ईवीएम ठीक था।
0: हाँ, पर ममता जी ने ये भी तो किया कि राष्ट्रपति वहां गए थे, उनको रिसीव करने नहीं गई, तो उसकी ये करतूतें भी तो लोग देख रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: और
1: बिल्कुल।
0: बीजेपी का मुद्दा बिल्कुल साफ है सर, बीजेपी के कुछ खास चेहरे हैं जैसे राम मंदिर, काली, शिव, महिला वोट, फिर हमारा सत्यजीत रे, अमृत सेन, ये भी तो हमारे खास मोहरे हैं
1: जी
0: और उन्होंने काफी काम किया। फिर इस बार के इलेक्शन में खास बात रही, मोदी जी वहां रात भर रुके, अक्सर
1: जी
0: वो वापस हो जाते हैं, पर इस बार रात भर रुके, वो
1: जी
0: झालपुरी भी खाई, होम
1: बिल्कुल।
0: मिनिस्टर भी
1: झालमुड़ी
0: पंद्रह
1: को
0: दिन रहे।
1: तो मुझे लगता है मोदी जी ने फेमस कर दिया, ऐसे झालमुड़ी खाई है। अच्छा अशोक जी, मैं आपसे एक कमेंट जरूर जानना चाहूंगा। ये वीकेंड पर कैलगरी में दलजीत दोसांझ ने एक बड़ा जबरदस्त शो किया, जो वो ऑलवेज करते हैं। उसमें कुछ खालिस्तान के झंडे जो है लहराए गए, जिस पर बीच में दलजीत दोसांझ ने अब शो को रोक कर कहा कि भाई ये यहां पर जगह नहीं है ये करने की, आपको जहां करना है वहां करें। और दलजीत दोसांझ ने ये भी कहा कि भाई इन अगर ये लोग नहीं सुनते तो इनको यहां से बाहर निकालो। और फिर उन्होंने ये बताया कि पगड़ी पहनकर उन्होंने पंजाब का नाम किस तरह से हर जगह सामने रखा है, पंजाब के मुद्दों को रखा है। आपको लगता है कि जो दलजीत ने किया सही किया? बिकॉज देर आर सम पीपल ऑन सोशल मीडिया दैट आर सेइंग कि दलजीत के कॉन्सर्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, इसकी फिल्मों को बॉयकॉट करना चाहिए।
0: ये सर बिल्कुल गलत कह रहे हैं, दलजीत दोसांझ ने जो किया बिल्कुल सही किया। वो गाने का प्रोग्राम है, उसमें ये खालिस्तानी के झंडे क्या कर रहे हैं, ये तो कनाडा के रूल के खिलाफ है। C-24 बिल जो अभी पास हुआ उसके खिलाफ किया है।
1: बिल्कुल
0: कल कल माल्टन गुरुद्वारे से भी ये एक जुलूस निकला था,
1: जी,
0: उसमें भी खालिस्तान के झंडे थे काफी ज्यादा, पर
1: बिल्कुल।
0: वो इस बार पीसफुल था, पुलिस भी थी काफी थी। यह गलत है, अगर आपको खालिस्तान के बारे में बात करना है तो आप इंडिया में जाके करिए, यहाँ क्या करना है।
1: जी
0: तो दलजीत दोसांझ का जो प्रश्न है और जो उन्होंने कहा वो सही कहा, उन्होंने पगड़ी का मान रखा है। फिर
1: जी बिल्कुल
0: ओकेजन देखा जाता है सर, अभी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम दलजीत दोसांझ की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उस बारे में उस टॉपिक पे बातचीत करिए। अगर मैं यहाँ मटन और चिकन बिरयानी की बात कर रहा हूँ तो वो अशोक नहीं लगेगा।
1: सही है, इसलिए दही बड़ा जो है कभी कभार आ जाता है। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल जी की
0: जी
1: कॉल लेते हैं। विपुल जी आप ऑनर हैं,
0: हाँ
1: क्या कहना चाहेंगे?
2: जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो इलेक्शन था अभी 5 राज्यों का, उसमें बहुत ही जबरदस्त इलेक्शन हुआ है और सभी जगह पे 50%+ जो सीट आई है वहां पे बीजेपी की विन हुई है। और ये जो विन है वो नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट का जो मुद्दा है और लोगों को जो योजनाएं दी गई है और उसका जो इम्प्लीमेंट हुआ है पॉजिटिवली, ये सब उसका नतीजा है ये।
1: ये इसे विपुल जी आप बीजेपी की जीत मानते हैं या आप इसे मोदी साहब की जीत मानते हैं?
2: नहीं, बीजेपी की जीत मानता हूं, लेकिन मोदी साहब इज द फर्स्ट, ही इज द मैन, ही इज द मैन।
1: यू थिंक ही इज बिगर देन बीजेपी टुडे?
2: नो, बीजेपी की तो वो लीडर है सर, इसमें
1: नहीं,
2: बीजेपी पार्टी तो
1: मैं
2: उनकी
1: वैसे
2: है।
1: पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि आज जो उनकी पॉपुलैरिटी है और
0: हाँ,
1: वर्ल्ड लेवल पर भी जो पॉपुलैरिटी है, इज हैज ही बिकम बिगर देन द पार्टी इटसेल्फ?
2: नहीं पार्टी से तो बिगर है, लेकिन सर उसमें वो और एक अमित शाह, दोनों सर इतने बड़े बड़े माहिर है इस चीज के, किसकी को बात ही मत पूछो। हम
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूं कि मीडिया में किसी भी पार्टी की तरफ अगर आप एक न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए, पर हाँ अगर कोई पार्टी अच्छा कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी तारीफ करनी भी गलत नहीं होती है। पॉइंट ये है कि जनता जनार्दन है। पॉइंट ये है कि वेदर वी लाइक अ पॉलिसी ऑफ अ सर्टन पॉलिटिकल पार्टी और नॉट, इट रियली डज नॉट मैटर। खासकर जब हम यहाँ पर ओवरसीज बैठे हुए कई चीज़ों के ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट द, हम वो वोटिंग करने वाले जनता है नहीं। अब यहाँ पे अक्टूबर में जब इलेक्शंस होंगे, मेयर वाले काउंसलर इलेक्शंस होंगे, उस पर हमारी पकड़ जो है ज़्यादा होनी चाहिए। उस पर हम क्या सोचते हैं, दैट शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू इंडियन पॉलिटिक्स, हम एक सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए या ये है कि किसी ने अच्छा काम किया तो तारीफ कर दो और नहीं किया तो फिर ठीक है।

That's how it is. चलिए अरमान मलिक देव अरिजीत की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गीत है आपके लिए हमने लाइन अप कर दिया है, इंजॉय करें. और दिस इज फ्रॉम द मूवी भूत बंगला. अक्षय कुमार की फिल्म है, 3 हफ्ते पूरे बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है और फाइनली अक्षय कुमार को एक क्लीन हिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मिली है एंड ही शुड एक्चुअली थैंक हिज मेंटोर प्रियदर्शन फॉर दैट. एंजॉय द सॉन्ग. आते हैं वापस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर. ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर. वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
2: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम काव्या होम्यो केयर पर पहुंच चुके हैं गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा पिनाक ओझा जी. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. द मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड एंड क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 days अ वीक, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. आप वॉक इन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, फोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं. ऑल अक्रॉस US कैनेडा दवाई शिप भी की जाती है. नंबर है काव्या होम्यो केयर का 647-760-2779. मीता जी आपका स्वागत है.
4: थैंक यू सो मच सनी जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो
3: जी, मजा आवा. गुड आफ्टरनून मीता जी. और आज स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में मंडे के दिन हम किस टॉपिक को करेंगे डिस्कस?
4: हार्ट बर्न, आज इसी के बारे में देखेंगे.
3: बिल्कुल जी.
4: सो हार्ट बर्न क्या है कि फीलिंग ऑफ बर्निंग इन योर चेस्ट, आपके थ्रोट से लेके फुट पाइप एंड स्टमक तक कहीं पे भी ये बर्निंग हो रही है ना, तो इस कंडीशन को हार्ट बर्न कहते हैं. अब हम सबको कभी ना कभी कि आपने हैवी कुछ खा लिया है, फ्राइड खा लिया, बाहर का खा लिया, तो एक दो दिन ये रहता है लेकिन उसके बाद सही हो जाता है. और कई बार ये हार्ट बर्न में आप देखोगे कि पूरे ट्रैक्ट में आपको बर्निंग हो रही है, जैसे ही लाई डाउन करते हो नाइट टाइम तो वो बर्निंग बढ़ जाती है, आगे की ओर झुकने के साथ बर्निंग बढ़ जाती है, और इसके साथ आपके मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाना. सो डिस्पेप्सिया या बदहजमी जिसको कहते हैं, कि जिनको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है कि पेट खराब हो रहा है, तो उन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम पाई जाती है. और हार्ट बर्न के साथ साथ आप देखोगे कि एब्डोमिनल पेन की भी कंप्लेन रहती है, कि पेट में दर्द होना, स्पेशली लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन या राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में ये पेन होना. ब्लोटिंग हो जाती है कि गैस भर गया हो ना, तो बर्ब्स आ रहे हैं, अंदर ही अंदर गैस मूव हो रहा है. और फिर नॉशियस फीलिंग है, वॉमिटिंग भी लगती है, मुंह का टेस्ट चेंज होके आप देखोगे कि सार हो जाना, खट्टा सा है बिल्कुल, एसिडिक टेस्ट हो जाना, बिटर टेस्ट हो जाना, स्पेशली व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग टाइम पूरा टेस्ट खराब है. और फिर जैसे जैसे कुछ खाते पीते हैं उसके बाद टेस्ट वापस चेंज होता है, तो समटाइम्स लगातार ये बैड टेस्ट की कंप्लेन रहती है. पेट में रंबलिंग सी रहती है, गैस मूव हो रहा है, उसकी आवाजें आती रहती है. और इसके साथ साथ जो है आप देखोगे कि जिनको ये प्रॉब्लम, कह लो कि रात को लेट खाना और फिर घर आके जम के खाना है, तो एक बार खाते हैं लेकिन हेवी मील खाते हैं, दो मील्स के बीच गैप ज्यादा आए, तो उनको भी ये प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है. और फिर जिनको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, गर्ड जिसको कहते हैं, कि फूड पाइप एंड स्टमक के बीच वॉल्व होता है, वो वॉल्व अगर वीक हो जाता है तो आपके स्टमक के कंटेंट्स और साथ में एसिड जो है स्टमक में, वो ऊपर फूड पाइप की ओर आ जाता है, और उसके साथ आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम. और ये पेन या बर्निंग जो है ना, नाइट टाइम बढ़ेगी, और फिर एक साइड में आपको गले में फील होता है कि वहां पे कुछ जैसे छाला बना हो, अल्सर बना हो, उस तरह की प्रिकिंग या पेन फील होता है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एसिड रिफ्लक्स करके ये प्रॉब्लम आ रही है. और कई बार थ्रोट में फंस जाता है, आपको फील होता है कि मिडल में कुछ फंसा हुआ है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. और उसके साथ खाने के साथ भी आपको फील होता है कि जो भी खाना आप स्वॉलो कर रहे हो अंदर जा रहा है फूड पाइप में, वो वहां पर ही जहां पे आपका स्टमक एंड फूड पाइप मिलते हैं वहां पे चेस्ट में, जैसे मिडल ऑफ चेस्ट में वो फंसा पड़ा है, ना तो वो ऊपर की ओर मूव हो रहा है ना नीचे की ओर मूव हो रहा है। और अक्सर कई बार कोई खाने की चीज के साथ आपको ये प्रॉब्लम आती है कि मिल्क प्रोडक्ट्स है जिनको प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स खा लिए तो ये प्रॉब्लम आ गई, एसिडिटी बढ़ गई, चाय पीने के साथ ये प्रॉब्लम आ गई, अगर चाय छोड़ देते हैं कॉफी छोड़ देते हैं तो फिर आप सही हैं। और अक्सर जो बैड बैक्टीरिया माना जाता है आपके स्टमक में, जिसको एच पायलोरी बैक्टीरिया कहते हैं, ये इन्फेक्शन के साथ हार्ट बर्न से लेके आगे जाके आपके स्टमक में अल्सर तक बन सकता है। सो तभी अगर हार्ट बर्न फील हो रहा है ना, सिर्फ बदहजमी समझ के लाइटली नहीं लेना चाहिए इस कंडीशन को, क्योंकि आगे जाके स्टमक में फूड पाइप में सो ईसोफेजाइटिस या गैस्ट्राइटिस ये प्रोड्यूस करेगा, अल्सर तक बन सकते हैं, ब्लीडिंग तक हो सकती है। सो इस तरह के कोई भी कंसर्न के लिए जब भी आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं वो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सजेस्ट करते हैं, और उसी से आपको पता लगेगा कि क्या अंडरलाइंग रीजन है जिस करके आपको ये बार बार हार्ट बर्न हो रहा है। तो ऐसे में ये जो हमारा ट्रीटमेंट है इट कैन हेल्प, एंड ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उसके साथ ही हार्ट बर्न या बर्निंग जो सबसे ज्यादा परेशानी दे रहा है उसमें आराम आता जाएगा, और साथ साथ जो हमने कंडीशंस देखी इतना कुछ साथ में हो सकता है तो वो सही होने से फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगी। सो किसी भी तरह के डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, गैस, ब्लोटिंग या फैटी लीवर है, गोल्ड ब्लेडर की कोई प्रॉब्लम है जिस करके आप परेशान हो रहे हैं, डाइजेशन खराब हुआ है आपका, पेट में आप कह लो कि पेन रहती है ऑल द टाइम, एब्डोमिनल पेन है, कई बार डार्क कलर का स्टूल होना वो इंडिकेट कर रहा है कि अंदर कोई अल्सर से शायद ब्लीडिंग हो रही है और आपको डार्क कलर के स्टूल्स हो रहे हैं। सो फील फ्री टू कॉल अस कोई भी एक्यूट या क्रोनिक डिजीज के लिए, काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। और इसके साथ हम लेके आए हैं मसाज थेरेपी एज वेल, सो बॉडी में कहीं पे भी पेन है, बैक पेन, साइटिका की पेन, नेक पेन है, आपको सर दर्द है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, सो साथ में मसाज थेरेपी लेने से काफी बेनिफिट मिल सकता है। सो या
3: जी दोस्तों बता दें, काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ अमिता ओझा, पिनाक ओझा जी, अब मसाज थेरेपी भी अवेलेबल है एट काव्या होम्यो केयर, आप अपॉइंटमेंट बना लें, और ऑब्वियसली फॉर द मसाज थेरेपी डोंट वॉक इन, मेक एन अपॉइंटमेंट, रेगुलरली आप वॉक इन कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन, फोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है, 10 कॉट्रल बुलेवार्ड यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड वाला मेजर इंटरसेक्शन है। क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM All across North America, दवाई शिप की जाती है, so that is also something you can take advantage of. Number एक ही है, काव्या होम्यो केयर, 6477602779, 6477602779. बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी।
4: थैंक यू सो मच सनी जी।
3: थैंक यू जी। 6477602779 एंड देर इज अ अपार्टमेंट, 2-bedroom बेसमेंट अपार्टमेंट फॉर रेंट इन न्यू मार्केट, 9-foot की सीलिंग्स हैं, सेपरेट एंट्रेंस है, सेपरेट लॉन्ड्री है, बहुत ही क्लीन अपार्टमेंट मिलेगा आपको, ओनली 2 years old, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अपर कैनेडा मॉल एंड बस टर्मिनल, 416-399-1607 पे कॉल करें, 416-399-1607। एंड मोहम्मद रफी साहब, सुमन कल्याणपुरी की आवाज में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, शैलेंद्र के लिरिक्स, एंड ब्रह्मचारी वॉज द फिल्म 1968 की सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट गीत, एंजॉय करें। फिर स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी भी आएंगे हमारे साथ बहुत जल्द।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke sath paye ek extra entry. Aaj drive kare kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe Jassi? Jassi ko chhodiye kyunki Lisa's Cosmetics laaye hain Spring Warehouse Sale khas aapke liye. Perfume, skin care, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Dhurandhar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर विजिट lisascosmetics.com।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना, वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 647-628-0040। दैट इज 647-628-0040।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स। जी हाँ, स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। अंत में आपको इमिग्रेशन अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मनन जी, आपका स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी लिसनर्स का जो प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, और सब लिसनर्स को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक
1: यू। सबसे पहली खबर मनन जी, कार्नी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एडिशनल $1.5 बिलियन टू स्टील, अल्यूमिनियम एंड कॉपर सेक्टर्स।
2: देखिए, ये सेक्टर्स सनी जी वही हैं जिनको टैरिफ की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ रिलेटेड चेंजेस कैनेडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाए हुए हैं, उसमें स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है। और इसीलिए कार्नी सरकार, न्यू लिबरल गवर्नमेंट एट द फेडरल लेवल, उन्होंने $1.5 बिलियन की एडिशनल फंडिंग और फाइनेंसिंग का ऐलान किया आज सुबह, जिसमें से $1 बिलियन जो सा बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा, जिसे हम बीडीसी के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू फाइनेंसिंग मिलेगी। और बाकी का रहता है $500 मिलियन जो है वो रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज, खास करके जो RTRI एक स्कीम है, यू नो रीजनल टैरिफ जो सा रिस्पॉन्स इनिशिएटिव, उसके तहत ये यू नो जारी किए जाएंगे इन इंडस्ट्रीज को, जिसको इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्शन लेवल को डाइवर्सिफाई करने के लिए, इन टैरिफ्स को कम्पीट करने के लिए और वर्ल्ड मार्केट में अपने आप को अडेप्ट करने के ऊपर स्पेंड किया जाएगा।
1: जी, एंड कनाडा चोजन एज होस्ट फॉर द न्यू मल्टीनेशनल डिफेंस बैंक, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
2: बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट हुई है पिछले दिनों, जो कि जिक्र करना बनता है हमारे लिसनर्स के साथ, कि जो डिफेंस सिक्योरिटी रिसीलियंस बैंक है, जिसे DSR बैंक भी कहा जा रहा है, उसका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स होगा वो अब कनाडा को एलोकेट हुआ है, कनाडा में बनकर तैयार होगा। ये जो सा बैंक है, ये लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट फाइनेंसिंग फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो उनसे खास करके नेटो और नेटो के अलाइड नेशन है उनको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी ये चुनना बाकी है, डिसाइड करना बाकी है कि कनाडा के किस शहर में इस बैंक के हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे। नो डाउट टोरंटो, वैंकूवर, ऑटवा और मॉन्ट्रियल के बीच में आपसी कंपटीशन चल रहा है। ओंटारियो सरकार ने तो टोरंटो के हक में अपनी यू नो ऐलान कुछ महीने पहले किया था, बट द डिसीजन इज येट टू बी मेड। जिस भी शहर में ये DSR बैंक बनेगा, डिफेंस बैंक इंटरनेशनल लेवल का, उस शहर में तकरीबन 3,000 से 4,000 तक हाई प्रोफाइल, हाईली पेड जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा का नाम भी आगे बढ़ेगा।
1: जी दोस्तों, बता दें, द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय लीसास कॉस्मेटिक 2026 स्प्रिंग वेयरहाउस सेल, ब्रांड नेम फ्रेग्रेंसेज एंड कॉस्मेटिक्स। ये आखिरी अब कुछ दिन आपके पास बचे हुए हैं, आज 4 तारीख है, मंडे के दिन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्लो, एंड देन 8, 9, 10 इट्स एंडिंग। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट एंड मार्कम पहुंचिए। प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स एंड ब्रांड नेम fragrances and cosmetics up to 80% savings, or Mother's Day ke liye perfect gift ideas aapko milenge at Lisa's. Manan ji, York regional police ne recover kiya hai $2 million plus stolen cannabis aur 5 logon ko hirasat mein liya hai.
2: बिल्कुल जी, ये खबर बड़ी सनसनीखेज खबर है। यॉर्क रीजनल पुलिस की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं, उन्होंने $2 मिलियन का वैल्यू के स्टोलन कैनबिस का एक ट्रेलर बरामद किया है मिसिसागा के मैकलॉरिन और 401 के एरिया से जो चोरी हुआ था। और 5 लोग हमारी अपनी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, 4 जाने ब्रैम्पटन के हैं, 1 शख्स हैमिल्टन का रहने वाला है। ब्रैम्पटन के रहने वालों में से 21 साल के मनवीर सिंह, 32 साल के सरबजीत सिंह, 21 साल अगेन दिलखाब सिंह, और फिर 23 साल के जैसकवन मल्ली हैं, और हैमिल्टन के रहने वालों का नाम है 25 साल के करण कुमार। सो इन सबको अब डिटेल चार्जेस तो लग चुके हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने इसके अलावा और कहां कहां पर ऐसे गौरव धंधे, ऐसे चोरियां की हैं, जिसके कारण ना सिर्फ उनका अपना रैकेट खराब हुआ है, बल्कि कम्युनिटी और पब्लिक सेफ्टी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंसर्न सामने देखने को मिल रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। एंड दूसरी तरफ, ये जो टोइंग इंडस्ट्री के टर्फ वॉर एक्सटॉर्शंस विद इन हो रहे हैं, वायलेंट इंसिडेंट ऑन द राइज है, अचानक लगातार जो है 3-4 इस तरह के इंसिडेंट जो है आपने भी रिपोर्ट किए हैं। अब बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आपने ठीक कहा। ये जो टोइंग इंडस्ट्री के अंदर जो एक तरह की टर्फ वॉर, गैंग वॉर, एक्सटॉर्शन रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं, उससे आम लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है, क्योंकि पहले ये इंसिडेंट सनी जी यॉर्क रीजन में ज्यादा अग्रसर थे, ज्यादा वहां बढ़ रहे थे। आपको वॉन में, आपको वुडब्रिज वगैरह एरिया में इस तरह के काफी सारे इंसिडेंट देखने को मिले थे, कई लोगों की तो जान भी गई है इस टर्फ वॉर में। लेकिन अब देखने को आया कि ये सारा जो ट्रेंड है, इट हैज फ्लोन डाउन टू पील रीजन, और पील रीजन में भी पिछले में मिसिसागा के हाईवे 409 और 427 के एरिया में अमेरिकन ड्राइव पर एक वारदात हुई। उसके तुरंत बाद मैकलॉगिन और स्टील्स का जो ब्रैम्पटन का एरिया है, वहां पर एक इंसिडेंट हुआ। उससे एक दिन पहले बालमोरल और डिक्सी का एरिया वहां पर, और इनफैक्ट पिछले हफ्ते की अगर बात करें 10 दिन पहले, तो एक ही रात में आधे घंटे के बीच 3 अलग अलग आर्सन के इंसिडेंट्स हुए। सो ये क्यों शिकंजा बढ़ता जा रहा है, क्यों इस तरह की कार्रवाइयां बढ़ रही हैं, जिससे पब्लिक सेफ्टी, लोगों में जो सा सेफ्टी का कंसर्न और क्रिमिनल एक्टिविटी लगातार बढ़ती नजर आ रही है।
1: जी, कनाडा ने मनन जी अनाउंस किया है अनदर $145 million फॉर टोरंटो एंड वैंकूवर फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। सम पीपल आर लिटिल स्केप्टिकल, मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ लोग जो शायद सॉकर में वैसे भी रुचि नहीं रखते, आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट।
2: देखिए, ये तो आपकी पर्सनल, हर एक इंसान की अपनी पसंद है कि वो किस स्पोर्ट को पसंद करते हैं, किसको नहीं करते। अब कहने वाले तो जो ब्रैम्पटन में क्रिकेट कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही है नॉर्थ अमेरिका में, उसके ऊपर भी अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं। लेकिन अगेन, एवरी स्पोर्ट, एवरी गेम हैज इट्स ओन फैन बेस, एवरी फॉलोइंग। नो डाउट डेमोग्राफिक्स चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल मौका है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के पास, क्योंकि तीनों कंट्रीज ये होस्ट कर रहे हैं। और कनाडा में सनी जी ये मैचेस जौन से होने हैं, दो शहरों में होने हैं, टोरंटो में और वैंकूवर में। टोरंटो में 6 मैचेस होंगे और वैंकूवर में 7 मैचेस होंगे, और डेफिनेटली इन टूर्नामेंट्स को सेफली, सिक्योरली, पीस ऑफ माइंड से ऑर्गेनाइज कराने के लिए हर लेवल की गवर्नमेंट अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। फेडरल सरकार की इससे ज्यादा जिम्मेदारी आई है, और पहले भी उन्होंने $320 million इन दोनों म्युनिसिपैलिटीज को दिए हैं थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। लेकिन अब पता चला है कि 45 मिलियन की एक एनहैंस्ड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस को लेकर फंडिंग जारी की गई है, जिसमें से $100 million वैंकूवर को गए हैं, $45 million टोरंटो के हिस्से आए हैं। सो देखते हैं कि किस तरह की हैसल फ्री गेम्स होती हैं। एक लोगों का भी कंडक्ट इसमें काफी ज्यादा रोल अदा करेगा, ट्रैफिक का ग्रिडलॉक भी अपने सुर्खियां बनाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वॉन्ट ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स टू एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ कैनेडा।
1: बिल्कुल जी। एंड पुलिस ने मनन जी सीज किया है $4.1 million इन ड्रग्स एंड डिसमेंटल इंटर प्रोविंशियल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को किया है।
2: बिल्कुल जी, ये देखिए आज के हमारे न्यूज सेगमेंट में क्राइम को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ी इतना गया है। हर लेवल के ऊपर क्राइम को लेकर इंसिडेंट्स लगातार सुनने को मिल रहे हैं, और उसी कड़ी में आज सुबह ही अपडेट आई है। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस और क्यूबेक की जो प्रोविंशियल पुलिस है, उसकी तरफ से ज्वाइंट एक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट रेड लाइन चलाया गया, जिसके तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एनफोर्समेंट ब्यूरो ने अपना रोल अदा किया, और बताया जा रहा है कि तकरीबन एक दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे तकरीबन $4 million के इलीगल ड्रग्स कॉर्नवॉल और मॉन्ट्रियल के एरिया में से बरामद हुए हैं, जिसमें से 20 किलो फेंटेनिल है, 14 किलो कोकेन है, और 80,000 के करीब फेक प्रिस्क्रिप्शन टेबलेट्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20 किलो फेंटेनिल, जिसका मतलब है कि तकरीबन 200,000 लीथल डोजेस, ये अगर ना पकड़ा जाता हो तो इतनी ज्यादा इसका फैलाव हो सकता था। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेंटेनिल को लेकर बहुत ज्यादा वो वोकल हैं, बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव हैं कि इसकी रोकथाम रुकनी चाहिए। सो डेफिनेटली एट फ्रॉम दोज पर्सपेक्टिव हम इस बड़ी गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं
1: जी। एंड अंत में, ओंटारियो प्रोटेक्टिंग ट्रांजिट यूजर्स फ्रॉम इलीगल ड्रग यूज, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस?
2: देखिए, जब आप ड्रग्स मार्केट में होंगे, समाज में होंगे, तो फिर उसकी यूजेज हर एक इंसान करता है, और इलीगल उसकी ट्रैफिकिंग और यूजेज करने की कोशिश में लगा रहता है। सो इसीलिए ओंटारियो सरकार ने भी अब आने वाले दिनों में नई रेगुलेटरी चेंजेस ऐलान की हैं, जिसके तहत जो ट्रांजिट स्पेशल कांस्टेबल्स होते हैं, देखिए जब कोई इस तरह का चीज इस्तेमाल ट्रांजिट के दौरान करता है ना, आप सबवे में बैठे हो, आप टीटीसी के किसी बस में हो, गो ट्रांजिट में हो, या किसी और ट्रांजिट में हो, तो फिर वो आपका जो सा सफर है वो और ज्यादा सफरेबल हो जाता है, आपको और ज्यादा परेशानियां आती हैं। सो नई रेगुलेशन के चलते हुए इन स्पेशल कांस्टेबल्स को जो ट्रांजिट को मैनेज करते हैं, उनको इलीगल ड्रग यूजर्स को रोकने के भी पावर्स होंगी, उनको फाइनेंशियल जुर्माने की भी टिकट्स वो जारी अदा कर सकते हैं। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ट्रांजिट सेफ हो, सिक्योर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और परिवार ट्रांजिट की सेवाएं इस्तेमाल करें और सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक ग्रिडलॉक है उससे थोड़ी सी छुट्टी मिले।
1: बिल्कुल दोस्तों, बता दें सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाय डॉन वैली नॉर्थ हांडे, जो कि अब दे रहे हैं फीफा टिकट्स। इट्स अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन जून, ऑफर एंड होगा 31 मई को। एंड अगर आप बाय करते हैं हांडे फ्रॉम देम, दो नेम दो टिकटें विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज, वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। एंड सिमिलरली एनी एक्सटेंडेड वारंटी परचेज, अगेन वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। 7537 वुडबाइन एवन्यू मार्कम, स्टील्स वुडबाइन वाला मेजर इंटरसेक्शन। मनन जी, स्काईलेक इमिग्रेशन की क्या है लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट? मैं नंबर एक बार दे दूं, स्काईलेक इमिग्रेशन द नंबर वन कंपनी इन इंटायर ओंटारियो नहीं पूरे कनाडा में। 416-451-0040, 416-451-0040, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी का दूसरा नाम है स्काईलेक इमिग्रेशन। मनन जी प्लीज गो अहेड।
2: बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स सनी जी। और जहां तक इमिग्रेशन को रिलेटेड अपडेट्स हैं, वी आर हियर टू प्रोवाइड लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज टू एनीबडी हु इज सीकिंग टू विजिट कनाडा, टू कम हियर परमानेंटली, या आपका इन द पास्ट कोई रिफ्यूजल है, किसी तरह की डिनायल हुआ है, तो वी कैन डेफिनेटली डिग डीप इनटू ऑल द प्रायर रिफ्यूजल्स एंड फाइंड सम क्रिएटिव पॉजिटिव सॉल्यूशंस फॉर यू। लेटेस्ट अपडेट आज सुबह सुबह जो आई है इमिग्रेशन IRCC की तरफ से, और एक बड़ी पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, राइट? तो वही हाल IRCC का है। पिछले 1.5-2 महीनों से ऑनरेबल इमिग्रेशन, ऑनरेबल तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ड्यू टू द पोस्ट शी कैरीज, लेकिन काम उनके ऑनरेबल ज्यादा नहीं है। ऑनरेबल लेना डैब इमिग्रेशन मंत्री है, वो 2 महीने से कह रहे थे जी अप्रैल में PR to PR की हम अनाउंसमेंट करेंगे, नए रूल्स आ रहे हैं, 33,000 लोगों को कैसे परमानेंट रेजिडेंट बनना है उसका सपना साकार होगा, हम जारी करेंगे। आज जो अपडेट आई है वो बिल्कुल ही उसके उलट है, उसमें कोई भी PR to PR का रेफरेंस नहीं है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इन कनाडा जो से वर्कर्स हैं उनको हमने किस तरह से फास्ट प्रोसेसिंग उनकी करनी है, और फास्ट प्रोसेसिंग भी उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या जो से अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, केयर गिवर प्रोग्राम या एग्रीकल्चर फूड पायलट प्रोग्राम में अपनी अर्जियां दी हुई हैं। सो किसी भी तरह का PR to PR फॉर्मल प्रोग्राम ये नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों की एप्लीकेशन को फास्ट प्रोसेस किया जाएगा, those who are already in the pool। सिर्फ ये applications उन लोगों के लिए active होंगी जो 2 साल से ज्यादा समय जिनको हो गया है Canada के rural और remote communities में, छोटी communities में काम कर रहे हैं। So again IRCC को अपना communication जो सा style है, clarity है, वो जरूर दूर करनी चाहिए, क्योंकि जब से ये अफवाहें आई हैं तब से कई unethical ghost consultants and some of regulated consultants और immigration practitioners ने भी इस सारी announcement को misuse करने का कोशिश की है, जो कि डेफिनेटली इज कंडेमनेबल।
1: जी मनन जी, आपके जाने से पहले क्विकली एक हमारे लिसनर है अशोक जी, उनका सवाल आया कि मनन जी, इज देयर एनी गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट टू प्लान टू इंक्रीज ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट्स? कुछ ऐसी खबर है जो सामने है आपके पास?
2: देखिए, ऐसी खबर कोई ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जो भी ओल्ड एज के रिलेटेड एनहांसमेंट्स होती हैं वो बजट में या एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग या यू नो इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स को देखते हुए ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। एंड आई एम श्योर इफ अशोक जी हैपेंस टू फॉल अंडर दोज कैटेगरीज, उनको ईमेल या डाक के जरिए ऐसी नोटिफिकेशंस अवश्य आ जाएंगी या आने वाली।
1: बिल्कुल दोस्तों, मैं बता दूं स्काईलेक इमिग्रेशन का नंबर, कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, आप जिस तरह से लगातार स्काईलेक इमिग्रेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो सर्विसेज उनकी है उसको आप अवेल कर रहे हैं, आपने जो ट्रस्ट स्काईलेक इमिग्रेशन पर रखा है, दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने लव्ड वंस को, चाहे वो इंडिया बैठे हैं, पाकिस्तान है, कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में भी कनाडा आना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में आना चाहते हैं, कोई स्पाउजल वीजा है, कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, स्काईलेक इमिग्रेशन का नंबर नोट कर लें, 416-451-0040, 416-451-0040। मनन जी का डायरेक्ट नंबर है स्काईलेक इमिग्रेशन। मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच जी, सी यू समटाइम सून।
1: जी 416-451-0040। एंड ओके, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा की तरफ से अरिजीत सिंह की आवाज में धुन, ये सैयारा का गीत है, मिथुन का म्यूजिक है, एंड लास्ट ईयर की बड़ी हिट फिल्म थी अनीत पड्डा एंड आहान पांडे के साथ। एंड ऑल्सो ब्रॉट यू बाय विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब भी हमारे साथ होंगे, बहुत जल्द उनसे भी बातचीत होगी, एंड आते हैं बहुत ही जल्द वापस। इंजॉय द सॉन्ग।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 4 5 7 3 2 3 2 Clear Optical by Varun Kanda.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30 बजे। आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है, प्लीज डोंट वॉक इन। 905-206-1008 इस सेगमेंट को ध्यान से सुने। बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। मोहम्मद साहब आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सनी जी, हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी। जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है। देखें, हर बंदा चाहता है कि वो इजी वे से पैसा कमाए, हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो। देखिए, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है। अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे एआई काम कर रहे हैं। आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन कहाँ के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ। और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें। हम इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो और उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: सेकेंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते। ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है। और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है। और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना, वो है व्हाट आई वांट, व्हाट दे वांट। और याद रखिएगा, जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज व्हाट आई वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर। देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा। अब वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे, सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं ना तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही। प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते।
1: Exactly.
2: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं। आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं। देखें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, अब जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते। तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें. माइंड ब्लोइंग. अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बाहर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए. तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें. यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. हमारा फोन नंबर है 905-206-1008, 905-206-1008, या आप जाएं winlifetime.com पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी.
1: एक्सलेंट दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है. और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा. फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चंस है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम. 905-206-1008, 905-206-1008. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.
2: अप्रिशिएट, थैंक यू
1: सर, बहुत बहुत शुक्रिया. 905-206-1008.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940 647-863-1940। This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading। पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040।
2: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान हो चुका है 21 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द मोस्ट इट विल रीच टुडे। एंड मैं फिर से बता दूं, दो बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट फॉर रेंट है इन न्यू मार्केट। 9 फुट की सीलिंग्स मिलेंगी, सेपरेट एंट्रेंस है, सेपरेट लॉन्ड्री है, बहुत ही साफ सुथरा 2 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट है। ओनली 2 ईयर्स ओल्ड एंड इज अवेलेबल फ्रॉम 1 जून, अगले महीने 1 तारीख से अवेलेबल है। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अपर कैनेडा मॉल एंड बस टर्मिनल। कॉल करें 416-399-1607 416-399-1607। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 2 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट इन न्यू मार्केट, 416-399-1607 पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड छोले भटूरे .ca सर्विंग फ्रॉम 4 locations, 2 in Brampton, 1 in 1 इन मिसिसागा, हार्टलैंड वाली लोकेशन। डाइन एंड टेकआउट ऑप्शन अवेलेबल ऑन ऑल द लोकेशंस। एंड दिल्ली वाले छोले भटूरे मिलते हैं ओनली एट choleBhature.ca। विलियम पार्कवे लोकेशन हैज मूव टू क्राइसलर विद डाइन एंड टेकआउट ऑप्शन। कल मुझे मौका मिला choleBhature.ca पर जाने का, एंड व्हाट अमेजिंग फूड, और उतने ही लोग थे, इट वॉज एब्सोल्युटली पैक्ड एंड अमेजिंग अमेजिंग छोले भटूरे। एंड लीसास कॉस्मेटिक स्प्रिंग वेयरहाउस सेल, याद रखें कि ये आखिरी वीकेंड बचा है 8, 9, 10 तारीख, बट टुडे ऑल्सो यू कैन टेक एडवांटेज बिकॉज दे आर ओपन ऑन मंडेज 10 AM to 8 PM। और मंडे हो सकता है विल बी अ लिटिल स्लोअर, बट देन उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे होंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्टर्न मार्कम, परफेक्ट गिफ्ट फॉर मदर्स डे, फाइन चॉकलेट्स, डिजाइनर सनग्लासेस, अप टू 80% सेविंग्स। और मदर्स डे के अमेजिंग गिफ्ट्स के लिए प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक्स के लिए, नेल केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स के लिए पहुंच जाइए लीसास कॉस्मेटिक स्प्रिंग वेयरहाउस सेल पर। एंड लीसास की तरफ से एज वेल एज छोले भटूरे डॉट सी ए की तरफ से ये अग्निपथ का गीत, अजय अतुल का म्यूजिक, सोनू निगम की अमेजिंग आवाज में अमेजिंग सा गीत, इंजॉय करें।

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
3: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
5: अच्छी, याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो. choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे. choleBhature.ca, कॉल 9054582448.
0: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
6: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
0: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली. घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल.

0: Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty, 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, sirf naam hi kaafi hai. वेलकम बैक फ्रेंड्स. जी हाँ, रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं. राज जी से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया की क्या है लेटेस्ट खबर. राज जी, आपका स्वागत है.
1: तनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
0: जी आपको.
1: तनी जी, इस हफ्ते हम फोकस करेंगे डिटैच होम्स पर
0: जी.
1: कैलेंडर में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द 900. ये जस्ट अंडर 2000 स्क्वायर फुट के होम्स हैं ऑन डिटैच, मतलब डिटैच होम्स ऑन नाइस यू नो स्पेशियस लॉट. और कमाल की बात है कि इस वक्त बिल्डर प्री फिनिश्ड बेसमेंट ऑफर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में. अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमें कांटेक्ट कर लें. बहुत ही एस्टीम्ड बिल्डर है, एक्सलेंट फिनिशर्स के साथ, बहुत सारे इंसेंटिव भी हैं. डिटेल्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर लें. और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट हम ब्रांटफोर्ड में शेयर करते आए हैं लास्ट फ्यू वीक्स से, वहां पर आपके पास टाउन होम्स की अपॉर्चुनिटी है हाई 400 से. और इसमें टू बेडरूम थ्री बेडरूम दोनों ही डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं टाउन होम्स की. डिटेल्स के लिए अगेन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. टाउन होम्स है ये और प्री होल्ड है ब्रांटफोर्ड में. लोकेशन बहुत अच्छी है, जबरदस्त बिल्डर है. अगेन डिटेल्स, कोई भी आप क्वेश्चंस हो हमें कॉल कर लें, नो ऑब्लिगेशन, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू इन योर रियल एस्टेट जर्नी. तनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल वंडरफुल डे.
0: जी रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी, 647-866-1086 इज द नंबर फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स. एक बार संपर्क करें और फिर आपकी रियल एस्टेट की जर्नी हो जाएगी नंबर वन. एंड बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड समबडी दैट हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे आप बायर हैं सेलर हैं, ताकि निगोशिएशन टेबल पर आपके लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की बचत की जा सके. और खासकर दिस इज द टाइम वेन यू कैन एक्चुअली probably get properties that are not what they used to be even 12 months back. So call Raj Joshi, 647-866-1086. Bahut bahut shukriya aapka Raj ji.
1: Sari ji, humare liye hamesha client number one hai. Hum number one, two, three kuch nahi hai.
0: Ji.
1: Humare liye client hi always number one hai.
0: Bilkul.
1: Ye hamara motto hai. Thank you.
0: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. 647-866-1086 राज जी का नंबर है. कविता कृष्णमूर्ति विनोद राठौड़ की आवाज में हम दिल दे चुके सनम का ये गीत, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गीत है. 1999 की हिट फिल्म थी, सलमान खान, अजय देवगन एंड ऐश्वर्या राय. इस्माइल दरबार का म्यूजिक, महबूब के लिरिक्स हैं. एंड गीत आपके लिए हमने लाइनअप कर दिया है, ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री पर 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट at the corner of Bovade and Chinkusi and Brampton. Definitely un deals ka fayda le. Filhal geet enjoy karein.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जोशी।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट लीसाज कॉस्मेटिक्स.com।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info. Or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
4: सुंदेव, मेरे प्रादी अज फ्लाइट है इंडिया तो.
5: ओ याद है पर उन्हों कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरे दी फड़ लिया वे.
4: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो. choleBhature.ca ते चलो.
6: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca. कॉल 905-458-2448.
3: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. एंड हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकुसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ है. सुल्तान जी, 11 AM टू 7 PM देर ओपन 7 days अ वीक. BramptonAppliances.com पर जाकर अमेजिंग डील्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं. सुल्तान जी, आपका स्वागत है.
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
5: जी. सुल्तान जी, सबसे पहले तो जो जबरदस्त डिस्काउंटेड रेट्स पर अप्लायंस लॉन्ड्री सेक्शन में चीजें अवेलेबल है, आइटम्स अवेलेबल है, मैं चाहूंगा कि उन पे रोशनी डालें ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं बिल्कुल इसका फायदा ले सके.
7: जी डेफिनेटली जी, बिग स्क्रीन टीवी की बात करेंगे जी. उसकी रीजन ये है सनी भाई कि बिग स्क्रीन टीवी, आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं वो हमेशा बिग स्क्रीन टीवी पे इंजॉय करते हैं, चाहे वो आईपीएल देखना है, चाहे उन्होंने ये रैप्टर्स गेम्स देखनी है, चाहे इस वक्त ब्लू जेस गेम स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई भी स्पोर्ट्स के शौकीन बिग स्क्रीन टीवी पे बहुत इंजॉय करते हैं, और कोई भी मूवीज के शौकीन बिग स्क्रीन टीवी पे घर में मूवी बहुत इंजॉय करते हैं. और फिर जब बिग स्क्रीन टीवी स्पेशल प्राइस पे आया हो तो कभी भी ये चांस मिस नहीं करना चाहिए. उसकी रीजन ये है कि ये $2000 वाला 85 इंच QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED आपको सिर्फ 1299 में मिल रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. वन शॉट डील है जी, 3 या 4 पीस इन स्टॉक होंगे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कस्टमर इसमें एटलीस्ट $700 की सेविंग कर रहे हैं. 75 इंच QLED $1500 वाला 899 में मिलेगा जी, और जो कस्टमर 55 इंच 499 में और 65 इंच 699 में लेना चाहते हैं वो भी 6 मंथ में ही पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्री होम डिलीवरी है जी. इसके लिए आपको आना है बोवेड एंड चिंकुजी पे, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकुजी ऑन बोवेड है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. 905-450-2828. 905-450-2828 जी.
5: जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. हर सेक्शन में, पहले तो आपने टीवी बता दिया, अब दूसरे सेक्शंस जो है अप्लायंस लॉन्ड्री की तरफ जब हम रुख करते हैं तो चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए हम सामान खरीदते हैं या अपने घर के लिए खुद खरीदते हैं, हर कोई चाहता है कि बेस्ट डील्स मिल जाए. हमें पता है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर कुछ डिस्काउंटेड डील्स चल रही है, मैं चाहूंगा उन पे भी सुल्तान जी रोशनी डालें.
7: बिल्कुल जी, हमारी अप्लायंसेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम डिस्काउंट 15-25% का होता है, लेकिन हमारे पास हाई वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट आया है जी। जब हम 40% की बात करते हैं तो आप ये देखें कि 12-13 हजार डॉलर का बिल्ट इन किचन आपको सिर्फ $6,900 में मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा का डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है अगर आप बॉश कंपनी का लेंगे तो आपको मिलेगा जी ये $16,000 से सिर्फ $8,900 में। और अगर आप लेना चाहें 3-पीस किचन बंडल, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, तो वो आपको मिलेगा $5,000 वाला सिर्फ $29.99 में। $2,000 आप 3-पीस किचन बंडल पे भी सेव करेंगे। लॉन्ड्री सेक्शन में स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर, फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर पे ह्यूज सेविंग्स आप कर सकते हैं। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर जो स्टैकेबल है, वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा, ये 27 इंच वाइड एंड 76 इंच हाइट में आपका वॉशर ड्रायर स्टैक्ड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको मिलेगा जी $2,200 वाला सिर्फ $14.99 में। इसमें भी $700 आप सेव करेंगे। और अच्छी बात यह है कि चाहे आपने बिग स्क्रीन टीवी लेने हैं, किचन अप्लायंसेस लेने हैं या लॉन्ड्री में वॉशर एंड ड्रायर, तो आपको 6 मंथ में ही पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। $3,000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर $1,200 की शॉपिंग करते हैं तो $200 अ मंथ करके पे कर सकते हैं। जैसा कि टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर लार्ज कैपेसिटी टब स्टेनलेस स्टील में आपको $1,700 वाला $11.99 में मिल रहा है, तो $11.99 भी आप $200 अ मंथ करके पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है जी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, 7 डेज अ वीक स्टोर खुलता है। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट है जी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
5: बिल्कुल जी, 905-450-2828, 905-450-2828, Brampton TV and Appliances. Sultan Ji, amazing deals offer kar rahe hain. 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chinkusi in Brampton. Very quickly, Sultan Ji, jaane se pehle, koi aisi ek deal jo aap chahenge ki aap hamare South Asian Unlimited Radio listeners ko de, jo ki unhe bilkul miss nahi karni chahiye?
7: इसमें सिंगल सिंगल पीस की एडवाइस करूंगा जी। अगर किसी ने बंडल पैकेज नहीं भी लेना तो सिंगल पीस फ्रिज जो है 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज है, ये आपको $1,400 से $899 का मिल रहा है, सिर्फ $899 में।
5: वाओ।
7: सिंगल पीस स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव लेना है $1,200 वाला $799 में स्टेनलेस स्टील का मिल रहा है। अगर सिंगल पीस डिशवाशर चाहिए, टॉल टब की स्टेनलेस स्टील की डिशवाशर है $1,000 वाली, ये तो 50% डिस्काउंट यानी आधी प्राइस पे $499 में मिल रही है। कोई भी प्रोडक्ट पिकअप करना है पिकअप कर लें, तब भी 6 मंथ में ही पे करेंगे। डिलीवर करवाना है डिलीवर करवा लें, फ्री होम डिलीवरी है, तब भी 6 मंथ में ही पे करेंगे। बिग स्क्रीन टीवी 85 इंच या 75 इंच, ये भी लो प्राइसेस पे हैं, इनको मिस ना कीजिएगा। वेरी लो इन्वेंट्री इन स्टॉक है, लेकिन गारंटी आप $600-$800 बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
5: जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828।
8: ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ।
9: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी सब इथों ही लवांगे। इना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसे ब्याज दे, होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828।
10: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टैक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
5: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कर्ना, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन. एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week, 905-457-3232. फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा. द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
11: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
12: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905 457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.

0: पूजा
1: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
2: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
1: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
2: और विजिट
3: पूजाहट.com।
4: जय श्री राम। At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Jee tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
7: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
6: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
7: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
6: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
7: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
6: 647-403-9-8710। लाइसेंस नंबर M200-3450।
8: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
9: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean मीडिया.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. हमारा और आपका साथ जुड़ चुका है और 4 बजे तक रहेगा साथ. और आज मंडे का दिन है दोस्तों, और आज जो शुरुआत करते हैं शो की, एक नए तरीके से करते हैं कि हमें जो नया हफ्ता है, एक क्लीन स्लेट के तौर पर हमारे लिए काम करता है, कुछ नया सोचने का, कुछ बेहतर करने का और ख़ुद को थोड़ा और समझने का. तो दोस्तों, एक पल ज़रा रुक जाइए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से कहिए, आई टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. और आज का पॉजिटिव विचार कहता है कि धीरे धीरे किया गया सही काम तेज लेकिन बगैर सोच के किए काम से बेहतर होता है. यानी आराम आराम से आप काम कीजिए, सोच समझ कर आप एक स्टेप एट अ टाइम लीजिए. सारा कुछ एक साथ करने लगेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी. तो आज रश नहीं दोस्तों, बस राइट डायरेक्शन आपको चुनना है, प्रेशर नहीं, अपनी जिंदगी में पर्पस रखना है. तो आज के शो में भी म्यूजिक रहेगा, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, मेहमानों का साथ रहेगा, अच्छी अच्छी डील्स एंड ऑफर्स आपकी नजर करेंगे. लेकिन सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं देसी बीट्स, Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी, CMR FM 101.3. एंजॉय.

0: जी दोस्तों, और जिंदगी में जब देसी बीट्स बजती हैं तो पैर अपने आप उठने लगते हैं। और दोस्तों, हमारा जो मकसद है इस शो में पॉजिटिव बातें करने का, अच्छे अच्छे गाने बजाने का, वो ये है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जरूर हमारी वजह से आ जाए। तो भाई, मस्ती की रेलगाड़ी पर आप सवार हो चुके हैं और आज की तारीख है मई 4, मंडे का दिन है। और मौसम का हालचाल भी बता दें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनली वी आर बैक एट डबल डिजिट्स, विच इज प्लस डबल डिजिट्स। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, पार्टली क्लाउडी स्काई है, फील्स लाइक 20 डिग्रीज, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जा सकता है 22 डिग्रीज तक। बाय द टाइम वी एंड द शो टुडे 4 बजे तक हाईएस्ट टेम्परेचर पे छोड़ेंगे आपको +22 डिग्रीज, और आज रात का ओवरनाइट लो जा सकता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। सारा दिन आसमान में जो है सनशाइन रहेगी, एट द सेम टाइम क्लाउडी स्काई भी रहेगा। So, a mix of both, perfect mix of both, with no chances of rain at all. So, all over, it's a good weather. तो अच्छे दिन की शुरुआत हुई है दोस्तों, तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर हम हुए हैं हाजिर। कुछ देर में हम वापस लौटते हैं और बताते हैं कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है। What is so special today, which is making today's day स्पेशल। इसके अलावा बॉलीवुड के कुछ पन्ने खोलेंगे और आपको बताएंगे कुछ बैक स्टेज स्टोरीज बॉलीवुड से ली गई, और अच्छे अच्छे गाने, अच्छी अच्छी बातें। आपका हमारा साथ जुड़ा रहेगा 4 बजे तक। अगर कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई गाना किसी अपने को डेडिकेट करना चाहें, कोई मैसेज किसी अपने तक पहुंचाना चाहें, डू गिव अस अ कॉल ऑन 416-593-0055, या सीधे हमसे राबता कायम कर सकते हैं 416-569-7812। और दोस्तों, एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं बहुत सारी एंटरटेनमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
5: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
4: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
7: Welcome to Madras Restaurant. Swad, swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश। This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
2: दोस्तों, कहते हैं कि तन्हाई भी कभी साथी बन जाती है। जब यादें दिलों को छू जाती हैं, हर अकेलापन फिर एक कहानी बन जाती है। और हम बात कर रहे हैं फिल्म रंगीला की। ये आई थी 1995 में, और इसी फिल्म से लिया गया एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। आपकी नज़र करने जा रहे हैं, इस गाने की रिक्वेस्ट आई है। परेश जी, आपने रिक्वेस्ट की है मीता के लिए, आप ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, और आप दोनों की शादी उसी दौरान हुई थी, 96 में आपकी शादी हुई थी, तो आप बहुत रिलेट करते हैं इस मूवी के गानों के साथ। तो आइए, इसी फिल्म से लिया गया ये बहुत ही प्यारा सा गाना, विच इज पिक्चराइज्ड ऑन उर्मिला मातोंडकर। आमिर खान के साथ थी, साथ में जैकी श्रॉफ भी थे। वन ऑफ द डिफाइनिंग बॉलीवुड हिट्स ऑफ 1990s, जिसने सेलिब्रेट किया ये पूरे एरा को, बड़े स्टाइलिश डायरेक्शन को, और ब्रेक थ्रू इसका जो म्यूजिक था बाय AR रहमान, बहुत पसंद किया गया। और इस फिल्म को रीस्टोर किया गया 4K वर्जन में, और ये 2025 में री रिलीज किया गया इसको 4K वर्जन। सो लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तन्हा तन्हा यहां पे जीना ये कोई बात है। आपकी नजर शॉन एक्सप्रेस पर।

0: तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है। बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर किया हमने फ्रॉम द मूवी रंगीला। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। और यहाँ पर बता दें आपको देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं दोस्तों। टोरंटो से अमृतसर आप जा सकते हैं वन वे इस महीने $950 में दो बैग्स के साथ। इसके अलावा दिल्ली से टोरंटो दिवाली स्पेशल लगा हुआ है वन वे नवंबर में। दैट्स राइट, अगर आप नवंबर में जाना चाहते हैं वन वे ड्यूरिंग दिवाली तो $840 में स्पेशल फेयर है टोरंटो आने के लिए फ्रॉम दिल्ली। सो दिल्ली से टोरंटो अगर कोई आना चाहते हैं ड्यूरिंग दिवाली वन वे इन नवंबर $840। नाउ टोरंटो से दिल्ली मई के महीने में वन वे आप जा सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है $770। नाउ टोरंटो से अमृतसर राउंड ट्रिप लगा है मई से सितंबर तक $1300 में, और दो लोकेशन से सर्व करते हैं ब्रैम्पटन एंड इटोबिको। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता दूं यश विंडोज एंड डोर्स के बारे में। अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और बड़ी रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स से आप बात करें। सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो, खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है वो प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। एक्सेप्शनली गुड लुक्स, ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्वालिटी, सब कुछ होती है माइंड ब्लोइंग परफेक्ट। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बाद भी प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है। इसके अलावा मैं दोस्तों, अगर आप फ्रेंचाइज ऑप्शन देख रहे हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आप यश विंडोज एंड डोर से हाथ मिला सकते हैं। नंबर टू कॉल देम 416-732-3600। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं दोस्तों एक बहुत प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद रुख करते हैं आज की ताजा हेडलाइंस पर। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
0: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300 905-458-5300।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।
2: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई, चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
3: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर।
5: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय विन लाइफ टाइम। अर्न कंसिस्टेंट मनी बाय वर्किंग फॉर ओनली 90 मिनट्स अ डे। दुनिया भर में कहीं से भी काम कीजिए विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अटेंड कीजिए फ्री नो ऑब्लिगेशन सेमिनार दिस सैटरडे एट 1:30 and change your life. Call 905-206-1008, 905-206-1008, or visit winlifetime.com.

0: ஷான் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் புலட்டின் brought to you by ஷான் மீடியா. நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை அஞ்சும் குரேஷி. ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கார் ஆக்சிடென்ட் கிளைம்ஸ் கால் 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. पहले जान लेते हैं हेडलाइंस. ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर दो मिसाइलें दागी. अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाले वायरल संक्रमण का मामला सामने आया. नेपाल की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया. असम पुडुचेरी के साथ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को बंपर जीत. पीएम मोदी ने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है. विजय थलपति की धमाकेदार एंट्री तमिलनाडु में, बनेंगे तमिलनाडु के केजरीवाल. बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत राहुल गांधी के साथ शादी की अफवाहों पर भड़क गई.
0: और अब नजर डालते हैं आज की लेटेस्ट लोकल हेडलाइंस की तरफ. फेडरल गवर्नमेंट ने स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर इंडस्ट्रीज के लिए 1 बिलियन का लोन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है. इंडस्ट्री मिनिस्टर मेलेनी जॉली का कहना है कि यह कदम यूएस टैरिफ से प्रभावित बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा और जॉब्स को भी प्रोटेक्ट करेगा. दूसरी तरफ ओंटारियो में टीचर सर्टिफिकेशन के लिए होने वाले मैथ टेस्ट के रिजल्ट्स में बड़ी डिस्पैरिटीज सामने आई हैं. ओंटारियो टीचर्स फेडरेशन के अनुसार 68% कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, जो रीटेस्ट के बाद 82% हो गया, लेकिन लैंग्वेज, एज और रेस के आधार पर काफी गैप देखा गया. एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर सस्पेक्टेड रोड एंड बोर्न इलनेस से 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग बीमार हुए हैं. शिप ऑपरेटर ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ने कंफर्म किया है कि इस शिप पर 4 कैनेडियंस भी थे ऑन बोर्ड. ओंटारियो सरकार पब्लिक ट्रांजिट पर ड्रग यूज को रोकने

0: के लिए नया कदम उठा रही है। अब स्पेशल कांस्टेबल्स को भी पावर मिल सकती है कि वो ड्रग यूज करते हुए लोगों को अरेस्ट कर सके, जिससे सबवे और बस सेफ्टी इम्प्रूव की जा सकती है। ऑन्टारियो लॉटरी एंड गेमिंग कॉरपोरेशन ने प्राइवेसी रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब लॉटरी विनर्स के फुल लास्ट नेम्स न्यूज रिलीज में पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाएंगे, हालांकि फुल नेम्स वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल रहेंगे। अब नजर डालते हैं आज के लेटेस्ट वेदर अपडेट की तरफ। टोरंटो में आज समर लाइक टेम्परेचर रहेगा, हाई करीबन 22 डिग्री और साथ में रहेगी सनशाइन एंड क्लाउड भी, लेकिन हफ्ते भर मौसम कूल रहेगा। ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक टेम्परेचर्स 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और शावर्स भी हैं एक्सपेक्टेड। ये थी अब तक की लेटेस्ट हेडलाइंस। आप जुड़े रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ 4 बजे तक ऑन CMR FM 101.3. Good afternoon. News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। क्या आप अपने घर में लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं? तो भरोसा करें KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर। सेपरेट साइड एंट्रेंस, मॉडर्न वॉशरूम, प्रीमियम फ्लोरिंग, कस्टम किचन, फुल होम रेनोवेशन, पेंटिंग और विंडो अपग्रेड्स, हर काम प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग, कंक्रीट, इंटरलॉकिंग और बहुत कुछ एक ही ट्रस्टेड नाम। घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट, KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप आपकी पहली पसंद। कॉल मन्नत कंकवाल 647-966-5681। घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
1: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
0: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
1: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल। अपना बिजनेस बढ़ाओ, स्ट्रेस कम करो, साथ हैं आपके लक्ष्य गांधी, आपके ट्रस्टेड CPA। ब्रैम्पटन और मिसिसागा में पिछले 8 सालों से सर्व करते हुए लक्ष्य सिर्फ अकाउंटिंग और बुककीपिंग ही नहीं, बल्कि CRA ऑडिट्स, न्यू बिजनेस परचेज और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग में भी एक्सपर्ट हैं। अगर चाहिए बिजनेस के लिए फंडिंग या लोन्स, तो आपको मिल सकती है $50,000 की वर्किंग कैपिटल टू 500,000 के CSBFL लोन्स। सब कुछ पॉसिबल है। कॉल करें 905-450-8100, दैट्स 905-450-8100, या विजिट करें accountingops.ca।

0: पूजा।
1: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
2: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
1: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
2: और विजिट
3: पूजाहट.com। इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
1: जय श्री राम।
4: Jamming as much variety into your workday as possible.
5: Radio Resync complete.
6: Hit music.
7: Hit after hot hit.
8: This segment is sponsored by KCDL Construction Group. Legal basement construction se lekar full home renovation, separate side entrance, residential and commercial asphalt paving, resurfacing concrete, interlocking and more. Call 647-966-5681. 647-966-5681.

दोस्तों, कभी कभी ना दिल को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्र बढ़ जाती है पर जज्बात हमारे वहीं पर रह जाते हैं। मोहब्बत के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता दोस्तों, फिर भी हर बार दिल वही गलती कर बैठता है। और इसी एहसास को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है ये गाना, दिल तो बच्चा है जी, फ्रॉम द मूवी इश्किया। समझदार बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं हम, समझदार बनने की कोशिश तो बहुत करते हैं हम, पर सच ये है दोस्तों, दिल तो आखिर बच्चा है जी। तो चलिए थोड़ा दिल की सुनते हैं और थोड़ा सा इश्क महसूस करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक में से, दिल तो बच्चा है जी, फ्रॉम द मूवी इश्किया।

0: ना समझ पाए हम खुद को, ना समझ पाए जमाना, ना समझ पाए हम खुद को, ना समझ पाए जमाना, ये दिल हर दफा फिर से लिख देता है एक नया अफसाना। ऐसे ही नहीं कह दिया जाता दोस्तों कि दिल तो बच्चा है जी, क्योंकि दिल कभी किसी की नहीं सुनता। आप थोड़ा सा जोर आजमाइश उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अंत में दिल वो ही करता है जो दिल को पसंद आता है। इसीलिए कहते हैं दिल बिल्कुल बच्चे की तरह साफ होता है, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। एक बार बच्चा बात सुनेगा फिर वही गलती कर देगा। तो ऐसे ही दिल हमारा गलती करता रहता है और तब दिमाग को सामने आना पड़ता है चार्ज लेने के लिए। तो ये बहुत प्यारा सा गाना आपकी नज़र हमने किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों गाने को पसंद करने के लिए और हमारी कोशिशों को पसंद करने के लिए। और जितने भी बिजनेस ओनर्स हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं, आप अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल आफ्टर द शो 416-569-7812 416-569-7812 एंड अ बिग हेलो टू आर सोशल मीडिया फैंस एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए और आज की आफ्टरनून राइड को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों बता दें कि बहुत कुछ हो रहा है आज के दिन में। आज का दिन वेरी वेरी स्पेशल और ख़ास है। कौन सी चीज़ें बनाती हैं खास और स्पेशल उसके बारे में आपको बताएंगे। और उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ द वेदर इज वार्मिंग अप। आज तो बिल्कुल समर लाइक वेदर है, प्लस 20s में टेम्परेचर है, हाई ऑफ 22 degrees। और ऐसे में बाहर बैठने का मज़ा जो होता है वो ज़्यादा आता है अगर हमारे पास एक अच्छी सी कैनोपी होती है, अच्छा सा परगोला होता है। तो आप पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग अगर लगवाना चाहते हैं घर में या बिजनेस में, तो कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी पर भरोसा कर सकते हैं, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं ऑल ओवर कैनेडा। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। और इनका स्पेशल ऑफर सुन लीजिए, फ्री बारबेक्यू है किसी भी कैनोपी या ऑनिंग इंस्टॉलेशन के साथ। तो बारबेक्यू बिल्कुल फ्री है, आप बाहर अपने फ्रेंड्स को केटर कर सकते हैं। क्वालिटी मटेरियल्स, मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग, सब कुछ एक साथ है। तो स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं, फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। 24 Regan Road ब्रैम्पटन में लोकेटेड है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। 416-831-4790 416-831-4790। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हैं बहुत सारे पेस्ट से या फिर वाइल्ड लाइफ से परेशान हैं, तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, इको फ्रेंडली और सेफ ट्रीटमेंट्स करते हैं। वाइल्ड लाइफ रिमूवल, एक्सक्लूजन, किसी भी तरह के पेस्ट आपके घर में आ गए हैं, चूहे, खटमल, बेड बग्स वगैरह वगैरह, कॉकरोचेस, इनसे अगर आप परेशान हैं तो इनसे एक बार ज़रूर बात करें अयान काशिफ जी से। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटेड है, लाइसेंस्ड हैं, इंश्योर्ड हैं। आज ही कॉल करें अयान काशिफ जी को 6479664355 6479664355। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप घर में किसी भी तरह की कोई भी कराना चाहते हैं रेनोवेशन, तो चाहे छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो, चाहे आपको बेसमेंट बनवानी हो, चाहे आपको सेपरेट एंट्रेंस करवानी हो, फ्लोरिंग चेंज करनी हो, पेंटिंग करानी हो, किसी भी तरह की रेनोवेशन करनी है, तो KCDL कंस्ट्रक्शन इनके क्वालिफाइड इंजीनियर्स की टीम पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अब रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग, कॉन्क्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। मन्नत कंकवाल जी से बात करें फॉर ऑल योर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। 6479665681 6479665681। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे शो में और उसके बाद तुरंत वापस लौटते हैं, एक अलग दौर में चलेंगे और एक बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए हमने लाइन अप रखा है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैक स्टेज स्टोरी के साथ। स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं, या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023 मास्टर धनिक महाराज।
3: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक, चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स। लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300, 905-458-5300.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
3: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
4: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
3: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: Sean Express.
6: Simply good. Retro style, old classics.
7: वेलकम बैक टू शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3 आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो आपकी नज़र करने जा रही हूं और गाने से पहले आपको बता दूं कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट टुडे सबसे पहले है हेल्दी चीज़ की बात कर लें नेशनल ऑरेंज जूस डे आज जी भर के जी खोल के ऑरेंज जूस पी लीजिए क्योंकि फ्रेश हेल्दी एंड फुल ऑफ विटामिन सी होता है ऑरेंज जूस एक ग्लास ऑरेंज जूस के साथ अपनी दिन की शुरुआत जो करता है कहते हैं उसको बड़ी पॉजिटिव शुरुआत मानी जाती है परफेक्ट हेल्दी ड्रिंक उसको माना जाता है इसके अलावा रिलेशनशिप रिन्यूअल डे है दोस्तों कभी कभी आपकी रिलेशनशिप में सिर्फ दरार आने पर नहीं हमें रिन्यू करना चाहिए कभी कभी रिलेशनशिप्स थोड़ी सी बोरिंग थोड़ी सी स्टेल लगने लगती है तभी आपको उसको रिन्यू कर देना चाहिए इससे पहले कि कोई दरार आए इससे पहले कि कोई बीच में दूरी बन जाए चाहे वो रिलेशनशिप कैसी भी हो तो उसको रिफ्रेश करना बेहद ज़रूरी है और आज दिन है वो काम करने का एक छोटा सा मैसेज एक छोटा सा कॉल या कुछ लिख दीजिए आई अप्रिशिएट यू इतना ही काफ़ी है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तो आप मुझे बताइए कि आज कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आप मजबूत बनाना चाहेंगे आई नो दिस इज समथिंग दैट यू वुडंट लाइक टू से ऑन एयर लेकिन कुछ भी आप बता सकते हैं हम लोगों को कि क्या वो तरीका आप अपनाएंगे या क्या तरीका आप अपनाते हैं किसी भी रिलेशनशिप को रिफ्रेश करने के लिए इतना ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं शायद आज के शो में आप कुछ ना कुछ जीत लें और इसके अलावा नेशनल रिन्यू डे भी है आज ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो नेशनल रिन्यू डे है आज ओल्ड हैबिट्स को छोड़कर नई हैबिट्स पिक करने का दिन है तो कौन सी हैबिट्स आप छोड़ना चाहेंगे और कौन सी हैबिट्स आप पिक करना चाहेंगे दिस डिसीजन हैज़ टू बी योर्स पिटीट एंड प्राउड डे है कॉन्फिडेंस का साइज से कोई लेना देना नहीं है चाहे आप पिटीट हो या आप टॉल हो या आप मिड साइज हो जो भी आपका साइज हो जस्ट लव योरसेल्फ यू आर परफेक्ट भगवान ने आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाया है और आपके जैसा कोई और इंसान नहीं बनाया है काइंडनेस की बात करें तो आज है वर्ल्ड गिव डे जितना भी आप से हो सके आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी को ज़रूर दीजिए ताकि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए और उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें और दोस्तों ये जो दुआएं हैं ना कब किसकी दुआ लग जाए पता नहीं चलता इसीलिए ट्राई एंड बी नाइस टू एवरीवन ऑलराइट तो दैट्स अबाउट टुडेज डे और अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था बैक स्टेज स्टोरी और अगला जो गीत है ये आप तक हम पहुँचा रहे हैं फ्रॉम द मूवी वो कौन थी, ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। ये एक सिर्फ गाना नहीं है, ये एक एहसास है, अधूरी मोहब्बत की दास्तान है। इस टाइमलेस गीत को कंपोज किया था लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने, जिन्हें कहा जाता था गजलों का शहंशाह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो गाना है, इनिशियली फिल्म में रखने को लेकर मेकर्स तैयार नहीं थे, उन्हें लग रहा था दिस सॉन्ग वॉज नॉट सो स्पेशल, और डायरेक्टर को लगा कि गाना थोड़ा स्लो है और ऑडियंस शायद इस गाने के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना करें। लेकिन मदन मोहन ने इंसिस्ट किया कि इस गाने में है जादू, बस आपको क्रिएट करनी होगी ऐसी सिचुएशन। और जब लता मंगेशकर ने इस गाने को रिकॉर्ड किया तो स्टूडियो में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कहते हैं रिकॉर्डिंग के बाद कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सब लोग जो वहां बैठे थे उसी आवाज में खो गए थे, सब कुछ मानो स्टैंड स्टिल हो गया था। इस गाने के लिरिक्स लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने, और उन्होंने इस सॉन्ग को ऐसे लिखा जैसे कोई जानता हो कि ये मिलन आखिरी है। और इस फिल्म में साधना पर पिक्चराइज हुआ था ये गाना। फॉगी नाइट, मिस्ट्री वाइब और उनकी हॉन्टिंग ब्यूटी ने इस गाने को और भी ज्यादा इमॉर्टल बना दिया। आइए दोस्तों, यही गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपकी नजर शॉन एक्सप्रेस पर।

0: dear sponsors for fast, effective and result-oriented ride. Get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com. Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. Free seminar every Saturday at 1 p.m. in Mississauga. Limited seats but unlimited opportunities. Call 905-206-1008 or visit winlifetime.com. Willie Nanyakara and Associates, आपके trusted U.S. immigration experts, E2 treaty investor और EB-5 investment visas की expert guidance के लिए call करें 1-888-529-5990 or visit grwpc.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद, स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, ला इलाज बीमारियों का नेचुरल आयुर्वेदिक इलाज पॉसिबल है. कॉल आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी एट 437-438-3399, 437-438-3399.
1: सेहत है तो सब कुछ है. जैसे दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूँ वैसे नहीं हो तुम. वसीम बरेलवी साहब के इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर दो मिसाइलें दागी. हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा. ईरानी न्यूज एजेंसी फॉर्स ने इस बारे में जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब अमेरिकी जहाज ईरानी नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था. हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉप ने हॉर्मुज में अपने किसी भी नौसैनिक जहाज पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया है. अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप पर चूहों वाले वायरल संक्रमण का मामला सामने आया है. इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 3 लोग बीमार हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन और दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की. एमवी हॉन्डियस नाम की इस क्रूज शिप को फिलहाल अफ्रीकी देश कैप वर्डे की राजधानी प्राया में रोका गया है. अभी यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं मिली है. ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि संक्रमण फैलने के खतरे को नियंत्रित किया जा सके. नेपाल की नई सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अध्यादेश जारी कर पहले की सभी नियुक्तियों को समाप्त कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के साथ 1594 पदों पर बैठे अधिकारियों को हटा दिया गया है. सरकार ने इन्हें राजनीतिक नियुक्तियां बताते हुए खत्म किया. तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें. और भारत के लिए आज का दिन नतीजे का दिन रहा. राजनीतिक रूप से बड़ा रहा तापमान और शाम तक किसके हिस्से आई गर्मी में भी बौछारें और कहां तापमान बढ़ा बताएंगे. बने रहिए हमारे साथ.
0: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.

0: जी हाँ, विनलाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। winlifetime।
1: भाई आज का दिन तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप आपको लेना ही होगा, क्योंकि आज है नेशनल रिन्यू डे। आप अपनी रिलेशनशिप्स को रिन्यू कर रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स को भी रिन्यू कर रहे हैं। आज कोई ओल्ड हैबिट्स है आप छोड़ते जा रहे हैं और नई हैबिट्स को अपनी जिंदगी में आप शामिल करते जा रहे हैं, और उन्हीं नई हैबिट्स में से सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल ग्रोथ और आपके वक्त का सही इस्तेमाल। ऐसा वक्त जो आप स्मार्टली इस्तेमाल करें अपने पैसे कमाने के लिए और स्मार्टली इस्तेमाल करें अपनी फैमिली के लिए भी। तो ऐसा काम है सिर्फ एक, वो है ट्रेडिंग, और वो भी जब आप सीखते हैं विन लाइफ टाइम से। जॉइनिंग अस नाउ इज राफी जी, रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर फ्रॉम हियर। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आज मंडे का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है, तो मैं चाहूंगी विन लाइफ टाइम की तरफ से क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि तमाम कम्युनिटी को जो आपकी आवाज सुन रही है, कैसे बदली जाए अपनी जिंदगी ट्रेडिंग की मदद से।
2: जी, अगर आप कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स हैं और स्ट्रगलिंग फेज में हैं, सिंगल मदर हैं, कुछ ऐसा बिजनेस नहीं मिल रहा जिसमें से आपको एटलीस्ट रोज के 100 से 200 बन जाएं, हमारा सेमिनार अटेंड करें। अटेंड करके हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्किल सिखा देंगे कि कल आने वाले वक्त में आपको पैसों की स्ट्रेस नहीं होगी। सबसे बड़ी लाइफ में स्ट्रेस होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, जॉब करनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको ऐसी स्किल दे सकते हैं 23 hours a day कहीं पर बैठ के पूरी दुनिया में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: क्या बात है। तो 23 hours a day, इसका मतलब अपने मन पसंदीदा टाइम वो खुद चुन सकते हैं। अगर सुबह काम कर रहे हैं तो शाम को भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, am I right?
2: जी एब्सोल्युटली, 23 घंटे हैं, मार्केट हर वक्त चल रही होती है। आप किसी भी वक्त बैठ के मार्केट से 100-200 निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अपने स्केड्यूल से भी ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन मॉर्निंग में 9 o'clock से 1 or 2 तक हम वैसे ही साथ बैठे होते हैं। अगर आपने हमारा मॉर्निंग सेशन लेना है तो इन पर्सन एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ भी चल सकते हैं।
1: ओके, और राफी जी, तमाम अलग अलग कंपनीज इस वक्त ट्रेडिंग की दुनिया में है, लोग सिखा रही हैं, लोग अपने तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ इज विन लाइफ टाइम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स?
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इतनी ज्यादा कंपनीज, हर एक जगह कॉम्पिटिशन होता है, कि कोई ऐसी कंपनी उठा लें जिसके 2 offices हों, कोई ऐसी कंपनीज हों जो 7 दिन ऑपरेट करती हों एज ए हॉबी के तौर पर, नहीं प्रोफेशनल। कौन सी कंपनी है जिसके 30 से ज्यादा स्टाफ है, कौन सी कंपनी है जिसको इन पर्सन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, पूरी दुनिया से देख सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके 6 mentor आपके साथ लगा के हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है। तो खाली हमने जो ट्रेडिंग के स्कूल का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि वैंकूवर में भी ऑफिस अब खुल रहा है, कैलगरी में भी खुल रहा है, क्योंकि लोगों को अब हर जगह इसकी जरूरत है।
1: That's right. Wonderful. क्या बात है। तो राफी जी, पहला स्टेप क्या लिया जाए अगर किसी को ये काम करना है, वेयर शुड दे बिगिन?
2: पहला स्टेप ये है कि नंबर डायल करें 9052061008, 9052061008। उसके बाद सैटरडे का सेमिनार दोनों लोकेशंस पे होता है, आप आएं देखें। क्यों, 5 मिनट के इंटरव्यू में आपको जो 5 घंटे इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो दे नहीं सकते, इसलिए आएं, देखें, पूछें, उन ट्रेडर से मिलें जो रोज के $1,000 बना रहे हैं।
1: Wonderful. So, well, the number to call Win Lifetime is 905-206-1008, 905-206-1008. Ya visit karein winlifetime.com. Bilkul free seminar hai, no obligation seminar this Saturday. You can call now or book your free seats. Thank you so much, Rafi ji. We'll talk to you soon. Okay. Take care. All
2: no best. Problem. Thank you. Take care.
1: You're most welcome. Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
3: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। भारत में आज का दिन 4 मई की ये तारीख जो है वो नतीजों का दिन रहा। असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों में बीजेपी ने कमल के साथ कमाल किया, बम्पर जीत दर्ज की। 50 साल बाद करीब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। एक नारा बीजेपी की तरफ से बहुत तेजी से बुलंद हुआ, 4 मई दीदी गई। और उधर केरलम में सभी 140 सीटों पर जो नतीजे घोषित हुए, यहाँ कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की है। और यहाँ लगभग माना जा रहा है कि केरलम में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में हुआ, जहाँ केवल 2 साल पहले बनी विजय की पार्टी नंबर 1 हो गई। टीवीके ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की है, 32 सीटों पर वो लंबे समय से आगे चल रही है। तमिलनाडु के मौजूदा सीएम एमके स्टालिन कोलाथूर सीट हार गए हैं, उन्हें टीवीके के बीएस बाबू ने 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। अब टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों के साथ बहुमत हासिल करना होगा। एक्टर विजय जो हैं, उन्होंने वाकई करिश्मा कर दिया। अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय के पिता चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो टीवीके के साथ गठबंधन कर सकती है। उधर असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई, 126 विधानसभा सीटों वाले असम राज्य में बीजेपी अपने दम पर पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। उधर देखें तो महज 10 साल में हेमंत बिस्व शर्मा न केवल राज्य में बल्कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति से असम के कई सियासी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। वो अक्सर बांग्लादेशी मुसलमानों पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जैसा मैंने शुरुआत में बताया, 50 साल बाद बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां कभी कोलकाता की सीट से, जब बीजेपी की भारत में केवल 3 सीटें हुआ करती थी, तब कोलकाता की सीट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चुनाव जीता था। और उस वक्त से इंतजार था बीजेपी को कि ये सूखा खत्म होगा, और आखिरकार वो दिन आ गया। और अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इन जीतों के बाद बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और उन्होंने कहा, बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी, घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। 47 मिनट का भाषण उन्होंने बीजेपी मुख्यालय से दिया और पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बनने पर कहा कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। वर्षों की साधना जब सिद्धि में बदलती है तो जो खुशी होती है वो खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं। उधर जैसा मैंने बताया कि केरल विधानसभा चुनाव में पिनराई विजयन की अगुवाई वाली लेफ्ट अलायंस जो है एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने 140 में से 90 सीटें ज्यादा सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। और अब ये वो मौका है जब भारत जो है, भारत के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है। केरलम में इस हार के बाद 49 साल में पहली बार होने जा रहा है जब देश के किसी भी राज्य में वामपंथी सरकार नहीं है। वहीं तमिलनाडु को अपना नया थलपति मिलने जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, थलपति तमिल मूल का शब्द है, अर्थ होता है कमांडर, सेनापति या जन नेता, यानी जिसे जनता का प्यार हासिल होता है। और इस लिहाज से देखें तो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके को जिस तरह बहुमत मिला, जिस तरह से विजय थलपति की पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, उससे दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु को अपना नया थलपति मिल गया है। एग्जिट पोल में भी विजय की पार्टी को बढ़त मिलने के आसार नजर आ रहे थे। तभी सवाल उठा था कि क्या विजय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसी बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं या फिर उनका हर्ष बिहार में प्रशांत किशोर जैसा होगा। लेकिन रुझानों ने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। विजय थलपति दिल्ली में केजरीवाल की तरह तमिलनाडु में सत्ता की धुरी बनने जा रहे हैं। और अब सियासी मौसम के बाद रुक कर लेते हैं भारत के मौसम का, जो पल में तोला और पल में माशा हो रहा है, और इसकी वजह से, खराब मौसम की वजह से, दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसकी। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे। दोनों भोपाल में सुरक्षित उतरे। यूपी में आंधी बारिश जारी है। कानपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी समेत 64 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में जालौन सबसे गर्म शहर रहा। सुल्तानपुर में पेड़ की डाल गिरने से एक की मौत हो गई। राजस्थान में भी आंधी बारिश ओले का माहौल रहा और हरियाणा में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे। उधर फरीदकोट पंजाब से खबर आ रही है, बीए फर्स्ट ईयर के छात्र ने टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर नहर में कूदकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले इंस्टा पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा, टीचर को सजा दिलवाई जाए। पिता ने कहा कि टीचर ने बेटे को बहुत बेइज्जत किया और कहा कि अगर तुम में अपनी किताब जमा करने की हिम्मत नहीं है तो तुम ट्रेन के नीचे आकर या नहर में कूदकर मर जाओ, जिससे वो परेशान चल रहा था और उसने सरहिंद नहर में छलांग लगा दी। और अब खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत राहुल गांधी के साथ शादी की अफवाहों पर भड़क गई। दरअसल एक मीम पेज ने राहुल गांधी और कंगना रनौत के नाम से एक आपत्तिजनक और फर्जी पोस्ट शेयर की। इस पर कंगना ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रोलर्स को जवाब दिया। मीम पेज ने कंगना रनौत का एक कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें दावा किया गया कि कंगना ने कहा है कि अगर राहुल गांधी भाजपा में शामिल होते हैं तो मैं उनसे शादी करने तैयार हूं। कंगना ने इस फर्जी पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया और उन्होंने लिखा कि ये फर्जी खबर बेहद घटिया है। कंगना ने अफसोस जताते हुए कहा कि राजनीति में भी अब महिलाओं के लिए कोई गरिमा नहीं बची। उन्होंने इस तरह का झूठ फैलाने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। कंगना ने साफ कहा कि वो ऐसी किसी भी ओछी हरकत को नजरअंदाज नहीं करेंगी। राजनीति के साथ साथ कंगना अपने अभिनय करियर पर भी इन दिनों पूरा ध्यान दे रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही अपनी फिल्म क्वीन के सीक्वल में नजर आएंगी। फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
4: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shaunmedia.com.
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
4: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232।
7: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
8: Bhai, mainu kehna vi pehna hai, te tuhanu sunna vi pehna hai. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
9: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
10: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
4: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना।

0: जी ऐसा ही होता है, जब प्यार होता है तो हर तरफ वो ही पर्सन नजर आता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और तभी कहते हैं कि प्यार जो है सर चढ़कर बोल रहा है। किसी का चेहरा आप देखो तो अगर उसका चेहरा ज़्यादा ग्लो करता है तो लगता है कि, लोग कहते हैं ना, कमेंट्स करते हैं कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है, आर यू फॉलिंग इन लव विथ समवन, तुम्हारा चेहरा क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि उस पर्सन को सारे वक्त वो दूसरा इंसान नजर आता है, सोते जगते खाते पीते वो इंसान नजर आता है। सो वेल, मैंने आपसे पूछा था एक सवाल दोस्तों, अभी मुझे कोई जवाब नहीं मिला उसका। एक मैसेज हमारे पास सिर्फ आया है कि मैं अपनी आदत छोड़ना चाहता हूँ झूठ बोलने की, लेकिन मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं बता सकती ये किसने कहा है, बट आई रियली लाइक इट कि जब लोग ऑनेस्टली अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। कभी कभी बगैर किसी का बुरा किए हुए भी हम कभी कभी झूठ बोलने की कई बार आदत पड़ जाती है, लेकिन जब आज है नेशनल रिन्यू डे तो आज बहुत सारे लोग अपनी ओल्ड हैबिट्स को चेंज करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल था कि आप कौन सी पुरानी हैबिट को छोड़कर नई हैबिट अपनाना चाहते हैं, कौन सी छोड़ना चाहते हैं और कौन सी हैबिट अपनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। या आप ये भी बता सकते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को रिन्यू करने के लिए आपको क्या लगता है कौन सा स्टेप बेस्ट है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिन्यू एनी रिलेशनशिप, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू रिन्यू योर रिलेशनशिप्स। आप बात कर सकते हैं हमसे, आप शायद जीत सकते हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से $100 का गिफ्ट। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर, लाइन्स आर ओपन नाउ 416-593-0055। दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और वो भी रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही इनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। इसके अलावा अगर आप फ्रेंचाइज ऑप्शन देख रहे हैं तो यश विंडोज एंड डोर्स से बात जरूर करें और एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन जाएं। 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि अगला गाना जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम पूछते हैं अपने कॉलर से कि वो क्या कहना चाहेंगे नेशनल रिन्यू डे के बारे में या रिलेशनशिप रिन्यू डे के बारे में। आइए देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ा है। वेलकम टू शॉन एक्सप्रेस, गो अहेड प्लीज।
1: Hello, hi, how are you?
0: I'm good, how are you?
1: I'm good. I just want to, about the habit. You asked me what habit you want to quit. I am a smoker and I want to quit smoking. That's the habit I want to quit.
0: Kya baat hai? How nice. And do you think it is going to be easy or have you already started taking any steps to do that?
1: I have tried that in the past. I have failed so far. I have done that about 20 years ago here in Canada, just like that, cold turkey. For 2 years, I did that. After 2 years, I got back to this thing. But now I don't know. I think I need some medication, some doctor help, because cold turkey is not happening with me at this time. So pray for me and wish me good luck that I could be able to get rid of this thing, bad thing.
0: How nice. All the very best to you. And I'm sure, you know, if it doesn't happen one time, you do it second time, you do it third time. You know, the most successful person is that who keeps doing it, who keeps getting up after falling down. So that is the leader in real sense. If you fall down, that's not a problem. If you fall down two times, that's not a problem. If you're not able to achieve something in few steps, that's not a problem. But the most important thing is to keep trying. And I can assure you, if you keep

0: Name is Rehan. I'm Rehan.
1: Rehan? Okay, Rehan. Yes, so we will put your name in the contest. Thank you so much for joining us today. All the very best to you.
0: Thank you very much. Thank you.
1: जी, how nice. और कितना honest जवाब दिया है रेहान ने और openly ये बात accept की है कि मैंने ये चीज की कोशिश करी. कई बार होता है हम openly कहते नहीं है लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं और हम नाकामयाब होते रहते हैं और हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे. नहीं, जब हम ऐसी चीजें share करते हैं तो सबके experiences से हम learn करते हैं. How nice, and all the very best to Rehan, you for quitting smoking. That would be a great step. That would be a beautiful change in your life and your family's life as well. So, well, आगे बढ़ते हैं शो में और अगला गाना आप तक पहुंचाया है देओल ट्रैवल ने और दो लोकेशन से सर्व करते हैं ब्रैम्पटन एंड इटोबिको. देओल ट्रैवल और अमेजिंग अमेजिंग डील्स आप तक पहुंचाते हैं. दुनिया भर में आप कहीं भी जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देओल ट्रैवल. नाउ स्पेशल फेयर्स नोट करें, टोरंटो से अमृतसर वन वे जा सकते हैं मई के महीने में दो बैग्स के साथ $950 में. अब दिल्ली से टोरंटो दिवाली स्पेशल लगा है वन वे $840 नवंबर में. जी, दिल्ली से टोरंटो दिवाली पर जा सकते हैं वन वे इन द मंथ ऑफ नवंबर $840. नाउ टोरंटो से दिल्ली मई के महीने में वन वे डायरेक्ट फ्लाइट लगे है $770 में. टोरंटो से अमृतसर राउंड ट्रिप $1300 में मई से सितंबर तक. दो लोकेशंस टू सर्व यू, ब्रैम्पटन एंड इटोबिको. देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. और अगला गाना जो है बड़ा खूबसूरत गाना है जो देओल ट्रैवल आप तक पहुंचा रहे हैं, राज कपूर साहब की फिल्म से है. और खास बात यह है कि इसे स्टूडियो में नहीं लेकिन असली पहाड़ों, नदियों और वाटरफॉल्स के बीच शूट किया गया था. उस वक्त बॉलीवुड में नेचुरल आउटडोर शूट इतने कॉमन नहीं थे लेकिन राज साहब हमेशा रियल इमोशंस कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नेचर को ही इस गाने का सबसे बड़ा हीरो बना दिया. और जब बात आती है मंदाकिनी की तो उनका जो सिंपल नेचुरल लुक है बगैर हैवी मेकअप के, बिना ग्लैमर ओवरलोड, उसी इनसेंस को दिखाता है जो इस गाने की सोल है. लेकिन उस वक्त उनका लुक काफ़ी बोल्ड भी माना जाता था और हर तरफ उनकी ही चर्चा थी. चलते हैं दोस्तों राम तेरी गंगा मैली के इस ब्यूटीफुल ट्रैक की तरफ शॉन एक्सप्रेस पर.

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
2: 416-570-0157। दोस्तों, जिंदगी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपना आपा खो बैठते हैं, तो बड़ी से बड़ी सिचुएशन जो है वो आपको और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। इनफैक्ट छोटी सी सिचुएशन भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लीव असाइड द बिगर सिचुएशन। लेकिन अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, आपने आपा नहीं खोया है अपना, और पूरी तरह से इन कंट्रोल हैं आप, तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आपकी टल सकती है। तो जब भी हम जब गाड़ी चलाते हैं, हमारा जब भी कार एक्सीडेंट होता है दोस्तों, उस वक्त मेंटली हमें बड़ा स्टेबल रहना चाहिए। अगर हम बाकी चीजें नहीं सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकते, तो एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पहला स्टेप क्या है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट स्टेप गलत हुआ दोस्तों, तो आगे तक बहुत सारे स्टेप आपको और ज्यादा परेशानी दे सकते हैं। इन एडिशन टू योर मेंटल स्ट्रेस, इन एडिशन टू योर फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, आपकी फैमिली का स्ट्रेस। तो वो पहला स्टेप होता है इस नंबर को डायल करना। ये नंबर अपने पास संभाल कर रख लें दोस्तों, क्योंकि इस नंबर पे कॉल करके आपको पहुंचाया जाता है एक्सपर्ट लॉयर्स तक, जो आपका केस फाइट करते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी दिलवाते हैं। अंजुम कुरैशी बड़ा रिनाउंड नेम है इस फील्ड का, हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। 416-570-0157 है नंबर। अंजुम जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने वालों को भी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जब हम आते हैं तो अवेयरनेस देना हमारा काम होता है कि कार एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। लोग पैनिक हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताना जरूरी है कि जब एक कानूनी मामला होता है तो आपको कानून के हिसाब से चलना होता है। आपको ये समझना होता है कि आपने इंश्योरेंस ली हुई है, अब आपको जो है कोई लॉयर करना है। रिकमेंडेड होता है कि लॉयर, अगर आप नॉट एट फॉल्ट है तो ज्यादा बेहतर है, कर लें। और आपका लॉयर जो ना हर चीज को वो लेके चलता है, तो फिर आपको लड़ने झगड़ने की या किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप 911 कॉल करते हैं, सीन पे पुलिस आ जाती है। अगर पुलिस सीन पे नहीं आती, आप कलिजन सेंटर तुरंत जाइए, देर मत कीजिए, इसलिए कि अगर आप देर करेंगे तो दूसरा शख्स जाके अगर अपनी कोई चीज लिखवा चुका होगा तो आपको ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपका वर्जन डिफरेंट हो, उसका वर्जन डिफरेंट हो। हमारा काम आप तक तमाम तर बातों को पहुंचाना, आपका काम इन बातों को याद रखना। मेरा नंबर 416-570-0157, 416-570-0157। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, किसी भी कार एक्सीडेंट होने की सूरत में आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच अंजुम जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और दोस्तों, ये जो भरोसा होता है ये बहुत बड़ी चीज है, तो आपको अंजुम जी पर भरोसा है कितने सालों से, और जो लॉयर्स हैं वो बहुत ही स्मूथली आपका केस जो है हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड के माहिर हैं। सो नंबर वंस अगेन 416-570-0157, 416-570-0157, अंजुम कुरैशी। आप है शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। इट्स 3:37 राइट नाउ। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, और आपसे मैंने पूछा था कौन सी वो एक हैबिट है अपनी जिंदगी में जो आप बदलना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप ये शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो ये बताइए कि आपका क्या तरीका होगा किसी भी अपनी रिलेशनशिप को रिन्यू करने का, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का। आप कह सकते हैं कि वी हैव टू टॉक मोर टू मेक द रिलेशनशिप्स बेटर, वी हैव टू मेक द अदर पर्सन फील मोर इम्पॉर्टेंट बाय गिविंग गिफ्ट्स, बाय गोइंग आउट फॉर डिनर। और दैट रिलेशनशिप कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी अ लाइफ पार्टनर, योर किड, योर मॉम एंड डैड, कोई भी हो सकते हैं। उस पर्सन को मैं स्पेशल फील कराना चाहता हूँ टू मेक आवर रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग। So these are the some of the things that we should do in our lives to stay happy and make others feel happy as well. So aap logon se mujhe sunna hai ki aap kya karna chahenge apni relationships ko improve karne ke liye ya कौन सी एक हैबिट है जो आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहेंगे. कॉल कर सकते हैं, जीत सकते हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोबी की तरफ से $100 का गिफ्ट. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. आवर लाइंस आर ओपन नाउ, यू कैन कॉल 416-593-0055. एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के साथ. स्टे ट्यून्ड.
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, ए टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.
5: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ.
6: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ.
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ .com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263. ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
9: एक लाइफ है जिसे लव है,
10: ये कहते मुझसे सब है,
11: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है.

0: One stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: जी दोस्तों, मॉर्गेज डिलीजेंस से रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर मुकेश चौहान हमारे साथ है, जुड़ने जा रहे हैं एनी मोमेंट और उनसे करेंगे एक प्यारी सी बातचीत। और उससे पहले हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि कौन सी एक हैबिट वो बदलना चाहेंगे या अपनी रिलेशनशिप को कैसे रिन्यू करना चाहेंगे। यू हैव टू क्वेश्चन, पिक एनी वन ऑफ दोज एन आंसर। एंड द नेक्स्ट कॉलर इज गोइंग ऑन एयर नाउ। गुड आफ्टरनून, हु इज दिस?
3: हेलो,
2: हाँ जी, व्हाट्स योर नेम?
3: या बीनल।
2: बीनल जी,
3: या
2: तो बीनल जी बताइए क्या कहना चाहेंगे।
3: ओके, मेरी एक आदत है कि मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो कभी भी कोई भी फ्रेंड्स वगैरह कोई भी कुछ भी कोई पूछे, मैं सच बोलती हूँ। तो ये जो वर्ल्ड है अभी का, तो थोड़ा झूठ बोलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। इतने झगड़े होते हैं घर में।
2: अच्छा,
3: तो अब मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ बोलती नहीं, तो मैं चुप रहूं।
2: तो अच्छा,
3: ऐसे बोलने से झगड़े होते हैं, उससे तो अच्छा है कि झूठ ना बोलूं पर चुप रहूं। तो ये बदलना। अच्छा,
2: क्या बात है। तो आपको लगता है कि जब आपने सच बोलना बंद कर दिया, आपको लगता है उससे ठीक हो जाएगी सिचुएशन?
3: हो जाएगी, लगता है।
2: अच्छा, ओके, चलिए, क्या बात है, आई लव इट। आपने बहुत ओपनली और बड़े आराम से अपनी बात कह दी जो आप कहना चाहती थी, और शायद जिसको सुननी होगी उसने भी सुन लिया होगा कि आप गलत नहीं हैं। इट इज जस्ट दैट यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम आई राइट?
4: क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड है तो
2: जी,
4: तो भी अगर वो बोलेगी कोई भी फ्रेंड है जैसे गर्लफ्रेंड मेरी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा है, अब मैं सच ही बोलूंगी कि अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है, पर उसको बुरा लगेगा, राइट? तो
2: जी,
4: ऐसे ही सेम सिचुएशन कभी भी कोई भी हो सकती है। मीन्स सच बोलना थोड़ा गलत है अभी के वर्ल्ड में।
2: अच्छा,
4: तो पता नहीं क्या है।
2: ओके,
4: तो अब मैं थोड़ा बोलूंगी।
2: इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच बीनल जी फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत जल्दी हम बताएंगे आज के कॉन्टेस्ट के विनर। और इसके साथ कुछ लोग मुझे सेल पर भी कॉल कर रहे हैं। इस वक्त मैं फोन पर अपने पर्सनल फोन नहीं उठा सकती क्योंकि वी आर लाइव राइट नाउ। आप लोग स्टूडियो पर ही कॉल कीजिएगा 416-593-0055। मुकेश जी बस एनी मोमेंट हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। नेक्स्ट कॉलर से करेंगे बातचीत और फिर मुकेश जी से करेंगे एक मुलाकात। जी, नेक्स्ट वन ऑन एयर, गुड आफ्टरनून। जी, नेक्स्ट कॉलर, गुड आफ्टरनून, गो अहेड प्लीज। जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं इन स्टूडियो 416-593-0055। और आसिफ जी, आपका कॉल आ रहा है, आप इन स्टूडियो जरूर कॉल कीजिएगा और आपसे फिर हम बात कर लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी मुकेश चौहान जी के बारे में। रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर हैं फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजेंट। 20 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फॉर्मर बैंकर भी रह चुके हैं, और आपको ऐसे सोल्यूशन देते हैं जिन पर आप डिपेंड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, सेकेंड मॉर्गेज से परेशान है, इमीडिएट फंड चाहिए, मुकेश आपकी मदद कर सकते हैं विदाउट अप्रेजल। यू हर्ड मी राइट? और कुछ केसेस में अप टू 85% लोन टू वैल्यू आपको मिल सकती है। रीफाइनेंस कर सकते हैं, डेट कंसोलिडेशन में मदद कर सकते हैं। 55 एंड अबव हैं आप तो आप रिवर्स मॉर्गेज का फायदा उठा सकते हैं। फिर होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट हो गई, वो आपको चाहिए। लो इनकम लोग क्रेडिट से परेशान है, मुकेश आपकी वहां पर भी मदद कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं, वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए अप टू 1 मिलियन का, ही कैन हेल्प यू विद ऑल दिस। नंबर है 647-512-7000, 647-512-7000। आइए सुनते हैं मुकेश जी का क्या कहना है आज के मार्केट को देखते हुए और अपनी सर्विसेज को देखते हुए। मुकेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
5: शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। और यह वेदर बहुत बढ़िया है और आई होप आप जो है एंजॉय कर रही होंगी स्टूडियो में रह के। द वेदर इज अमेजिंग आउटसाइड एंड इज ग्रेट टू कम आउट फॉर फ्यू मिनट्स एंड हैव अ गुड वॉक।
2: क्या बात है, प्लस 22 डिग्री सेंटीग्रेड, अमेजिंग वेदर है। लेकिन कल से थोड़ी सी सर्दी है, बट जब तक अच्छा मौसम है तब तक सिर्फ उस पर फोकस करना है हमें
5: जी।
2: और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आज हमारे जहन में है दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस विद यू मुकेश जी. तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि कई बार होम ओनर्स जो हैं वो रेनोवेट तो करना चाहते हैं अपना घर लेकिन कैश नहीं है. सो व्हाट आर द बेस्ट वेज टू फाइनेंस होम इम्प्रूवमेंट्स, क्या तरीका है?
5: डेफिनेटली बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है. परफेक्ट वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा, हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ चुन चुन के क्वेश्चन आप पूछती हैं और डेफिनेटली इट्स वर्थ आंसरिंग. और सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब टू ऑल द लिसनर्स. देखें, यस, द इम्प्रूवमेंट की बात करें, होम अपग्रेड्स की बात करें, बेसमेंट रेनोवेट करवाना है आपको, एक घर बनाना है, रीमॉडलिंग करनी है, ठीक है सिचुएशन. तीन ऑप्शन है शालिनी जी इसमें, राइट. पहला ऑप्शन है कोई भी होम ओनर है या तो मॉर्गेज रीफाइनेंस कर सकता है, कर सकती है, राइट. रीफाइनेंस करके आप एक्विटी निकाल सकते हैं 80% तक, जो भी आपकी अमाउंट आती है 50,000, 100,000, 200,000, उसका यही फायदा है कि आपको जो भी एक्विटी मिल रही है वो बैंक के रेट पे मिल रही है. नहीं, इट्स नॉट अ क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल रहे, आप अपने ही मॉर्गेज रेट पे निकाल रहे हो, राइट. पहला ऑप्शन तो ये आ गया.
2: बिल्कुल.
5: सेकेंड अच्छा ऑप्शन है, या तो आप होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट अप्लाई करें, ठीक है, ही लॉक जिसको बोलते हैं, या आप सेकेंड मॉर्गेज भी अप्लाई कर सकते हैं. ही लॉक के लिए आप बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, अपने बैंक को बोल सकते हैं आपकी इनकम क्रेडिट एवरीथिंग इज ग्रेट, डेफिनेटली गो फॉर अप्लाइंग थ्रू द बैंक. और अगर आपको लग रहा है कहीं इश्यूज हैं तो सेकंड मॉर्गेज ले सकते हैं. सेकंड मॉर्गेज आपको 2 से 4 दिन में मिल सकती है. और थर्ड ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी का इनकम इशूज है या क्रेडिट लो क्रेडिट इशूज है या और क्रेडिट इम्पैक्ट हो चुका है और फिर भी एक्विटी चाहिए, राइट, और घर नहीं बेच पा रहे हैं मगर उनको पैसे चाहिए, घर बन अपग्रेड करके बेचना चाहते हैं, राइट. ये भी एक सिचुएशन है. तो उसमें आप डेफिनेटली आप सेकंड मॉर्गेज ले सकते हैं, उसमें लो इनकम या लो क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. घर में एक्विटी होनी चाहिए आपके घर पे, बस एक्विटी है. आई कैन हेल्प यू टू गेट दिस फंड इजिली एंड क्विकली. होम एक्विटी 2 से 3 हफ्ते लेती है टाइम और सेकंड मॉर्गेज 2 से 4 दिन में हो जाता है. तो रीफाइनेंसिंग का भी 3 से 4 हफ्ते का टाइम है. तो आप यू कैन गिव मी अ कॉल, दिस इज मुकेश चौहान मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन, नंबर 6475127000. बैक टू यू शालिनी
2: जी. और मुकेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात कही है. अब अच्छा, मैं अगर टाइमिंग की बात करूं कि कितनी जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं फंड्स को फॉर अर्जेंट होम रिपेयर्स या अपग्रेड्स के लिए, क्योंकि अब समर तो बिल्कुल आ गया, अब जल्दी से हमें पैसे चाहिए ताकि वी कैन एंटरटेन आवर गेस्ट्स.
5: यस, देखें, ट्रेडिशनल बैंक से अगर करवाते हैं, होम एक्विटी लाइन ऑफ कराते हैं या नॉर्मल आप बैंक रीफाइनेंस कराते हैं, रीफाइनेंसिंग में एज आई मेंशन 3 to 4 weeks टाइम लगता है. आपको होम एक्विटी लाइफ करनी है, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए 2 से 3 हफ्ते का समय है. मगर सेकेंड मॉर्गेज चाहिए तो आपको विद इन 2 to 5 business days. और डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी इनकम है, डॉक्यूमेंट, हाउ फास्ट यू आर प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट. बट यस, माई जॉब इज टू हेल्प यू इजिली एंड क्विकली. तो समर इज राइट देयर इन द कॉर्नर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं.
2: क्या बात है. तो मुकेश जी, ये जो पैसे हैं ये हम किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे बेसमेंट फिनिश करानी है, रेंटल यूनिट अपनी बनानी है, या इनफैक्ट डेट कंसोलिडेशन भी कराना है, या फिर रेनोवेशन का कोई भी और काम कराना है घर में, वी कैन यूज इट फॉर एनीथिंग.
5: डेफिनेटली शालिनी जी, बिल्कुल. ये फंड देखें, पैसे आपको बैंक रीफाइनेंस के एग्जांपल दें, आप सेकंड मॉर्गेज के एग्जांपल आप दे दें, 2 लाख की आपने अमाउंट ले ली, अब 2 लाख आपके पास पड़े हैं, ये 200,000 में से आपको बेसमेंट के लिए मे बी यू रिक्वायर $70,000-$80,000,
2: राइट.
5: और किचन अपग्रेड करने के लिए $20,000-$25,000 चाहिए, बाकी आपके 50,000-60,000 आपके क्रेडिट और डेट्स हैं. तो आप सब किसी भी पर्पज के लिए फंड यूज कर सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये होगा शालिनी जी, आपकी मंथली कॉस्ट आपकी कम होना देखे शुरू होगी. जब आप ये फंड लेंगे तो आपका बेसमेंट बनाया, आपके पैसे पे इनकम चालू हो गई, या आपने जो है डेट्स थे आपके जिसके ऊपर $3,000-$4,000 महीने के दे रहे हो, वही आप अभी 2,000 दे रहे हो या 1,000 दे रहे हो, राइट. तो वो आपकी आपकी इनकम में पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा. तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रीफाइनेंसिंग डेफिनेटली $2,000-$3,000 की सेविंग है. काफी लोगों की रिन्यूअल्स जो है इस साल ड्यू है. यस, आप अगर शॉप अराउंड करना चाहते हैं, बेस्ट रेट आपकी तलाश में कि अच्छे रेट क्या वेरिएबल मिलेंगे या फिक्स रेट क्या अच्छे मिलेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट. मैं मिसेस आगा में हूँ, आई एम हियर टू हेल्प यू. अप्रेजल वैल्यू शालिनी जी किसी को चेक करनी है तो फ्री वैल्यूएशन करके मैं और अपनी टीम जो है मेरी टीम करके देगी फ्री वैल्यूएशन, और जब आपको अप्रेजल पे होगा तो जो भी अमाउंट होगी वो क्लोजिंग के टाइम पे 100% रिफंड की जाएगी, रिइंबर्स की जाएगी. तो डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल 6475127000.
2: जी क्या बात है मुकेश जी, और कस्टमाइज आप करते हैं प्लान्स फॉर ऑल आर लिसनर्स. तो जल्द से जल्द आपसे बात करेंगे हमारे लिसनर्स, और अच्छा सा जो भी घर में काम कराना है, जो भी रीफाइनेंसिंग करानी है या मॉर्गेज के हवाले से कुछ भी उन्हें करना है तो उस हवाले से आपसे बात जरूर कर सकते हैं. प्रोफेशनल एडवाइस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं आप पिछले कितने सालों से. सो 6475127000. जी
5: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आप, लिसनर्स है, मैं भी आंसर देना चाहूंगा इसका.
2: मैं सोच रही थी आपको ना पकड़ूं, आज छोड़ देती हूं, लेकिन चलिए आप खुद ही कूदने के लिए तैयार हैं तो चलिए पूछती हूं.
5: देखें आपने पूछा एक क्या, डेफिनेटली आई लव टू आंसर. आपने बोला क्या ऐसी चीज है दोनों कपल को, हस्बैंड वाइफ को एक आना यूनाइट करके रखती है, राइट?
2: तो
5: मेरे लिए मैं आंसर बुलाऊंगा फाइनेंस. Your personal finances, yes.
2: Wow.
5: 90%, 95% cases में finance is the reason why exactly it go to the different situation. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फाइलें देखी है मैंने, बहुत सारी फाइलें की है. कॉमन प्रॉब्लम, अगर आपने फाइनेंस सुधार लिया अपने, 50-60% आपके इश्यूज वहीं रिजॉल्व हो जाएंगे. कभी आपको ना ही आपको एंगर इश्यू आएगा, ना ही किसी फ्रस्ट्रेशन आएगी आपको. यू वन फील सो गुड आपके फाइनेंस है. ये मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक जनरिक, इस आल्सो अप्लाइज टू माई सेल्फ. तो ये कोई भी इंडिविजुअल अपने फाइनेंस जिस दिन आपने ठीक कर दिए, आपकी 50% बीमारी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी. वंस अगेन शालिनी जी, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे.
2: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई लव इट. यू वर राइट ऑन पॉइंट मुकेश जी. और कैसे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है. अगर फाइनेंसेस आपके सॉलिड हैं, यू आर एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, यू आर गोइंग आउट फॉर वेकेशंस, यू गोइंग आउट फॉर डिनर्स और टेकिंग किड्स आउट, व्हाटएवर इट इज, सो सी द काइंड ऑफ लाइफ यू हैव. And if you have a good life, you're all enjoying, then there's no problem in relationships. So
5: absolutely.
2: That's amazing. Great. Amazing. Full marks to you.
5: Thank you so much.
2: Thank you so much. Thank you, Mukesh ji. All the best. Good luck.
5: Bye.
2: जी, और अभी मुकेश जी अरेंज करेंगे आपके जो है फाइनेंसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन. और फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन घर में कराना चाहते हैं तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का नाम आप जरूर याद रखें. किचन या वॉशरूम को आपको अपग्रेड करना है, टाइल्स चेंज करानी है, हार्डवुड लैमिनेट फ्लोरिंग करानी है, प्लम्बिंग, पेंटिंग या कोई भी छोटी बड़ी हैंडीमैन की जॉब है, दे डू इट परफेक्टली. आप राजेश कुमार जी से राइट अवे बात करें, रिस्पॉन्स टाइम इनका बड़ा क्विक है. 6472102075. अगर आपकी जैसे टब में आपके क्रैक आ गया है, टाइल्स में आपके क्रैक आ गया है, कुछ छोटे प्लम्बिंग इश्यूज हैं, घर में पेंट कराना है या पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कराना है, दिस इज अ वेरी गुड टीम. नंबर है 6472102075. और एक बहुत प्यारा सा गीत है उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं, छोटा सा वेरी टाइनी ब्रेक. विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड.
6: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस.
7: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600. That's 905-789-6600.
8: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
9: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
8: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
9: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232,
2: 890-3232। चलिए दोस्तों, आज का सफर यहीं पर एंड करने जाते हैं स्वादे के साथ, कि कल फिर मिलेंगे 2 से 4 इसी स्टेशन पर मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। और हमारे जितने बिजनेस ओनर्स हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं और आप जैसे हजारों लाखों लोग इस शो को सुनते हैं, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं, सो वी वुड लव टू प्रमोट यू ऑन आवर शो। कॉल कर सकते हैं शो के बाद 416-569-7812, 416-569-7812। कल तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.fm.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। धूप हो या छाव, बस नगमे लुटाता चल। धूप हो या छाव, बस नगमे लुटाता चल। राहों की मुश्किलों को मुस्कुराकर मिटाता चल। ये जिंदगी एक सुहाना सफर है मेरे दोस्त, ये जिंदगी एक सुहाना सफर है मेरे दोस्त। तू अपनी धुन में बस मीठे गीत गाता चल, गीत गाता चल, ओ साथी गीत गाता चल। ये डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
6: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
7: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
1: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare mumbaigrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
2: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi? Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics laaye hain Spring Warehouse Sale khas aapke liye. Perfume, skincare, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates, aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Durandar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. Aapko aana hai 135 Commerce Valley Drive, East Markham, Highway 404 aur 407 ke behad kareeb and close to 401. Sale chalegi April 18th se May 10th tak, perfect for Mother's Day gifting. To zyada swag at kam price, sirf Lisa's Warehouse Sale par. Visit lisascosmetics.com.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
6: जी भाइयों, ये डो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। भारत में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ गए। ममता बनर्जी भवानीपुर में 15,000 वोटों से सुवेंदु अधिकारी के सामने अपनी सीट गवा बैठी। ये रही सबसे बड़ी खबर। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन अपने ही बागी से हार गए। विजय के ड्राइवर का बेटा जीता, पार्टी 107 सीटों पर आगे। केरलम में सभी 140 सीटों के नतीजे घोषित हो गए। सबकी नजर भवानीपुर पश्चिम बंगाल की सीट पर थी, जहां से ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। भवानीपुर से ममता बनर्जी 15,105 वोटों से हार गई। ये सबसे बड़ी बात रही। सुवेंदु जी ने दूसरी बार ममता जी को हरा दिया। बीजेपी ने सिर्फ 7% वोट से 121 सीटें कैसे बढ़ाई, सब चौकन्ने रह गए। जबरदस्त जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। पश्चिम बंगाल में जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल गया। विजय का लेडी लक जिसके बर्थडे पर चुनाव जीते। तमिलनाडु का रिजल्ट आते ही विजय के घर पहुंची त्रुषा। एक्टर का आप जानते ही है कि तलाक हो चुका है और त्रुषा के साथ उनका नाम जुड़ा है। तमिलनाडु में थलपति का विजय घोष रोते चिल्लाते फैंस के भरोसे स्टार से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। जीत की जो 5 वजह रही, उस पर हर कोई अब नजर करता है। लेकिन आइए पहले बताते हैं पश्चिम बंगाल में जीत के क्या कारण रहे। बीजेपी ने वादे किए हैं, उसके मुताबिक पहली कैबिनेट में सीएए लागू कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का तुरंत विस्तार किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। जीरो इन्फिल्ट्रेशन और सीमा सुरक्षा, साथ में राजनीतिक हिंसा की जांच और एसआईटी का गठन। ये वादे खास तौर पर बीजेपी ने किए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये वादे जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। और बेंद्र भाइयों, विजय थलपति विजय ने भी वादे किए थे। उनके वादों के मुताबिक घर की महिला मुखिया को हर महीने 25,000 की सीधी मदद मिलेगी, 2,500 रुपीस की। साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, गरीब बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी। स्वयं सहायता समूहों को 5,00,000 रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। युवाओं के लिए देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने का वादा किया गया है। बेरोजगार स्नातकों को 4,000 रुपये और डिप्लोमा वालों को 2,500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी के 25,00,000 रुपये तक का एजुकेशन लोन, किसानों के लिए कर्ज माफ करने और कुछ फसलों पर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल का MSP देने का वादा किया गया है। आम जनता के लिए हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 25,00,000 रुपए तक का बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। जनता अब यही चाहती है कि जल्द से जल्द वादे पूरे किए जाए और पार्टियां भी कहती है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। आज बिंदर भाइयों, ये है रीड वॉइस। हम हैं आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
2: हाँ जी विनर भाइयों, ये है रेडियो वॉइस जतिन के संग। आइए सीधे चलते हैं आयशा मुनव्वर जी के पास। बहनर भाइयों, उनका नंबर जरूर डायल करें, 416-428-2165। कर्जा बढ़ता है, गार्निशिंग का नोटिस आ गया है, मैक्सिमम कर्जा माफ करवा देंगे आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी। 416-428-2165। आइए सीधे चलते हैं आयशा जी के पास। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस।
3: थैंक यू वेरी मच जतिन जी, क्या हाल है? ठीक ठाक।
2: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: वंडरफुल। प्लीज आपकी वंडरफुल सर्विसेज के बारे में पहले बताएं।
3: जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कर्जे में आना यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ना सुना हो। सो लॉट्स ऑफ टाइम लोग कर्जे के प्रॉब्लम के नीचे आ जाते हैं, तो हमारी मेन सर्विसेज में आ जाते हैं कर्जे को माफ करवाना, कंज्यूमर प्रपोजल्स, बैंक्रप्सी की सर्विसेज में भी हम हेल्प आउट करते हैं, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग्स और क्रेडिट को दोबारा एस्टैब्लिश करके आपको दोबारा फाइनेंशियल ट्रैक पे हैप्पी हैप्पी लाइफ जो है गुजारने में मदद देते हैं।
2: वंडरफुल। बहन और भाइयों, कॉल करना है 416-428-2165। आयशा जी, ये बताएं कि अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है?
3: बहुत जरूरी है जतिन जी। ऐसा है कि देखिये, ये फाइनेंशियल हेल्थ है। आपने कभी किसी डॉक्टर को फोन करके कहा कि बस मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो? वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यू नेवर नो दर्द किस वजह से है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इलाज है। तो सेम ये आपके फाइनेंसेस हैं। जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू ना कर लें, कर्जा लिया कैसे गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, कौन से बैंक्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्या वापस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एसेट्स कौन से हैं जिनको बचाना है और आगे फ्यूचर में कैसे आपने चलना है, प्रोसेस क्या होगा, तो ये सब चीज़ें 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती और ना डिस्कस की जा सकती हैं। हमारा काम है कि प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
2: वंडरफुल। ये भी बताया कि कौन से डेट्स सेटल कर सकते हैं।
3: जी, ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, स्टूडेंट लोन्स हो गए। स्टूडेंट लोन हैज टू बी 7 years आफ्टर डेट ऑफ फिनिशिंग ऑफ स्टडीज। रेवेन्यू कैनेडा के डेट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह के ऊपर जो है गारंटीज दी हुई हैं और बिजनेस अब नहीं चल रहा, तो वो गारंटीज वगैरह भी जो है वो सेटल हो सकती हैं। तो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड।
2: और आपने गारंटीज की बात की, तो कई बार हम सुनते हैं कि गारंटीड कर्जा माफ किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: इस गारंटी से मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मैं मुखालिफ हूँ इस गारंटी के।
2: अच्छा।
3: उसका रीजन ये है कि अक्सर मैं देखती हूँ कई रेडियो स्टेशन पे लोग बैठे हैं गारंटीज कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो यह अनएथिकल है, आप किसी तीसरी पार्टी के बिहाफ पे गारंटी नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लेट सपोज जैसे आप किसी को प्रपोज करते हैं, तो जब तक अगला पर्सन हाँ या ना कर ले, आप कैसे मानेंगे कि जी काम हो गया? तो इसलिए वी हैव टू प्रपोज एन ऑफर कि जी ये अमाउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स को हम प्रपोज करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट टू क्रेडिटर अप्रूवल, बैंक्स ने हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है कि जी हाँ हमने मान लिया या कोई और हम जो है वो ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए गारंटी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाएगा, वो हर पर्सन के लिए फर्क भी हो सकता है।
2: बहुत खूब, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दे प्लीज।
3: जी कॉन्टेक्ट नंबर है
2: 416-428-2165। आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी से आज ही करें बात और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाइए अपना एक और कदम। आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: थैंक यू वेरी मच जतिन।
4: घर कहीं भी लेना

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
4: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ?
3: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
4: Dr. Neil Gajjar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
5: Tasty dosa khane ka man hai? Hamara favorite Guru Lakshmi hai na? Unit 44 to 50, 7070 St. Barbara Boulevard, Mississauga. Monday or Tuesday ko dinner, sham 5 to 10. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, lunch 12 to 3, dinner 5 to 10. Wednesday ko band, magar long weekend pe khule rehte hain. Call karein 905-795-2299 ya visit karein gurulakshmi.com. Guru Lakshmi, South India ke swad ka asli tadka.
6: Ritz Furniture da ye message zara dhyan.

0: डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
3: Tasty dosa khane ka man hai? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
4: घर कहीं भी लेना हो

0: மீட் ரோஹித் த யெஸ் மேன் அட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட், 5200 டிக்சி ரோட், மிசிசாகா. டெலிபோன் 905-232 ரிட்ஸ், தட் இஸ் 232-7489. விசிட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட்.ca. சஸ்தா சமான் சஸ்தா நை, ஹை அண்ட் த சமான் மில சஸ்தா.
1: अजीब दास्ता है ये फिल्मी गानों की. हाँ जी मंदिर भाइयों, एक गाना, गाने दो तीन फिल्मों से रिजेक्ट हुए और ये गाने यानी कि ये गाना मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था. सेंसर बोर्ड ने इसके बोल को ठीक नहीं ऐसा करार देते हुए बैन कर दिया. इस तरह दो फिल्मों से ये गाना रिजेक्ट हुआ. फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री लेने वाले नए नवेले डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म छलिया में इस गाने का इस्तेमाल किया और गाने ने इतिहास रच दिया. है ना अजीब दास्ता, दो बार रिजेक्ट किया गया गाना, जब रिलीज हुआ तो सुपरहिट हो गया. ये गाना कौन सा था? दिलचस्प किस्सा है बहनों और भाइयों. 1958 रतन पिक्चर्स के बैनर तले बाबू भाई मिस्त्री के निर्देशन में एक फिल्म बनी मदारी. मदारी में रंजन, चित्रा, जयश्री, गडकर, मनहर देसाई जैसे सितारे काम करते थे. म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का था. उन्होंने एक गाना बेहतरीन तरीके से फिल्माया. मदारी फिल्म में कुल 7 गाने थे. ये गाने इंदिवर फारूक कैसर जैसे धुरंधर ने लिखे थे. 2 गाने मुकेश लता ने गाए थे. फिल्म का एक गाना दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है, नजरे तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है, आज भी पॉपुलर है. इसी फिल्म में एक और गाना मुकेश जी की आवाज में था. इस गाने को रिकॉर्ड और शूट किया गया लेकिन बाद में फिल्म से हटा दिया गया. शंकर जयकिशन को गाना बहुत पसंद था लेकिन वो मनवा नहीं सके. बनर भाइयों 59 में एक और फिल्म घर घर

की बात में कल्याण जी आनंद जी को म्यूजिक देने का अवसर मिला। इन फिल्म में वो अपना गाना इस्तेमाल नहीं कर सके, फिल्म में गाने के लिए सिचुएशन ही नहीं थी। इस फिल्म में भी उस गाने को एंट्री नहीं मिली। 1960 कल्याण जी आनंद जी को एक और फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे, धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म मानी जाती है। दोनों ने इस फिल्म में गाने को रखने का विचार किया लेकिन डायरेक्टर ने इनकार कर दिया। इस गाने की अपनी डेस्टिनी होती है, ऐसा ही कुछ ये गाने के साथ हुआ। बिंद्र भाइयों, छलिया में संगीत देने का मौका जब मिला तब मनमोहन देसाई, राज कपूर, नूतन सभी सहमत हो गए कि ये गाना तो छलिया में होना ही चाहिए। और गाना फिल्माया गया, गाना फिल्म में लिया गया और सुपरहिट साबित हो गया। गाने के बोल, डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा। हाँ जी बेंद्र भाइयों, मुकेश जी को फिर से स्टूडियो में बुलाया गया और गाने के अंतरे फिर से रिकॉर्ड करवाए गए। आज भी ये गाना जब भी बजता है लोग खुश हो जाते हैं। डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा, है ना बॉलीवुड के गाने की अजीब दास्तान। हम है आपके दोस्त जतीन।

0: वो मेरा सलाम।
1: आदमी जब संत बनता है तो जात पात ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम देश विदेश रंग नस्ल के तमाम भेदभाव भूल जाता है। मैं इसलिए संत हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ ईसाई हूँ कौन। अब बोलो हूँ ना पक्का संत मैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
1: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
2: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009
2: Dr. Neel Gajjar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं बॉलीवुड पर एक नजर। 2009 में आई राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म थ्री इडियट्स लोगों को काफी पसंद आई थी। आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी की तिकड़ी का लोगों पर खूब जादू चला था। अब इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा शुरू हो गई है। बिंदर भाइयों, कुछ दिनों पहले आमिर खान ने कंफर्म किया था कि राजकुमार हिरानी इस समय थ्री इडियट्स पर काम कर रहे हैं। आमिर ने यह भी कहा था कि उन्होंने कहानी सुनी है, कहानी काफी अच्छी है और अब नई जानकारी के मुताबिक आमिर के साथ विकी कौशल भी सीक्वल में नजर आ सकते हैं। हाँ जी, विकी कौशल चौथे इडियट होंगे या शर्मन जोशी या फिर आर माधवन को रिप्लेस करेंगे, अब क्लैरिटी आनी बाकी है। लेकिन विकी कौशल थ्री इडियट्स का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ जी मित्र भाइयों, बॉलीवुड के गलियारों से एक और खबर आ रही है कि एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म वाराणसी की शूटिंग में दिक्कतें आ सकती है। इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद फिल्म सिटी में चल रही है। फिल्म के कुछ सीन के लिए मेकर्स को एक तालाब बनाना था जिसके लिए उन्हें हजारों लीटर पानी जरूरी था, लेकिन अब जल आपूर्ति बोर्ड ने इसे देने से इनकार कर दिया। फिल्म वाराणसी की प्रोडक्शन कंपनी अब पानी कहां से लाए इस पर विचार कर रही है। बंदर भाइयों, उन्होंने 150 वाटर टैंकर मांगे थे लेकिन पानी की हालिया स्थिति को देखकर पानी देने से इनकार कर दिया गया। हाँ जी मित्र भाइयों, बॉलीवुड एक से बढ़कर एक खबरें आ रही है। एक जमाना था जब 100 करोड़ से ज्यादा कमाई के साथ मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती थी, लेकिन अब जमाना ये आया है कि 100 करोड़ कमाने वाली मूवी ने ठीक ठाक बिजनेस किया है ऐसा माना जाता है, क्योंकि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ने नए पैमाने खड़े कर दिए हैं और इसी वजह से अब 100 करोड़ नहीं लेकिन 500-600 करोड़ अगर फिल्म बनाए तो ही उसे सफल फिल्म मानी जाती है। क्या थ्री इडियट्स की सीक्वल 500-600 करोड़ बना सकेगी? करते हैं इंतजार। ये थी बॉलीवुड की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन, एंटरटेनमेंट की हर खबर weeklyvoice.com पर।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं रॉजर्स एम्प्लॉई वकार खान जी के पास। रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के लिए एक बार वकार जी से बात और मुलाकात जरूर करें। नंबर टू डायल इज 647-864-8000, 647-864-8000। आइए सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज हमारे श्रोताओं को आज किस प्रमोशंस के बारे में बताना चाहेंगे, प्लीज बताएं।
1: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स है, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ है। इसमें पैकेज है जिसमें टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9:30 मिनट्स हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट लेटेस्ट मॉडम अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत चीप रेट पे मिल जाएंगे। रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है। और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स है, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल कीजिए। नंबर है मेरा 647-864-8000, 647-864-8000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लाई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 647-864-8000, 647-864-8000।
0: वकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, जरूर कॉल करें, वकार जी से बात और मुलाकात करें रॉजर्स की बेस्ट डील्स के लिए। 647-864-8000, 864-8000। वकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच जतिन भाई।

0: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
1: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
2: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
3: हाँ जी मित्र भाइयों, जी द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। ओंटारियो सरकार ने सार्वजनिक परिवहन जैसे कि सबवे और बसों में नशीली दवाओं के खुलेआम इस्तेमाल को रोकने के लिए नए और सख्त नियमों का ऐलान किया है। अब तक केवल पुलिस अधिकारियों के पास ही गिरफ्तारी की शक्ति थी, लेकिन नए नियमों के तहत अब स्पेशल कॉन्स्टेबल्स को भी उन लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया है जो सार्वजनिक परिवहन पर ड्रग्स लेते पकड़े जाएंगे। सबसे पहले अधिकारी व्यक्ति को नशा रोकने की चेतावनी देंगे। सहयोग न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर परिसर छोड़ने को कहा जाएगा। यदि व्यक्ति फिर भी आदेश नहीं मानता तो स्पेशल कांस्टेबल उसे गिरफ्तार कर सकेंगे और तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर $10,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है या फिर दोनों। सरकार केवल इस्तेमाल ही नहीं बल्कि नशीली दवाओं के उत्पादन पर भी लगाम कस रही है। अब पिल प्रेस जैसी मशीनों और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को रखना या बेचना गैरकानूनी होगा। नए कानून के तहत उन मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी जो जानते हुए भी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल अवैध ड्रग उत्पादन के लिए देते होंगे। प्रीमियर डग फॉर्ड और सॉलिसिटर जनरल माइकल केजर ने ये कहा कि लोग सबवे में जाने से डरते हैं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन कड़े नियमों की जरूरत है ताकि हर यात्री सुरक्षित महसूस करे। हाँ जी मित्र भाइयों, चलिए किसी भी तरह ड्रग की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो और किसी और को नुकसान ना हो, यही हम कामना करेंगे। ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

मुझे अभी मीट अगेन ऑन द डे जहाँ यहाँ के आज के 20-21 डिग्री तापमान में हीट ऐड हुई, पूछो किसकी, भारत में चल रही राजनीति की, इलेक्शंस रे, चाय पे चर्चा तो 12 महीने की है पर आज जो रिजल्ट्स आए उनका हल्ला बोल जारी है यहाँ भी वहाँ भी जो भी लोग फॉलो करते हैं। भारत के 4 मेजर स्टेट्स के चुनावी परिणाम सामने हैं जिन्हें देखकर एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि बंगाल से केरल तक खेला हो चुका है। वेस्ट बंगाल में दीदी की ममता नकार गई जनता, बीजेपी ने रचा इतिहास, सीट्स आई 148 के पार। शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को उन्हीं के गढ़ भावनीपुर में दी एक सॉलिड मात और इसी के साथ अब बीजेपी बनाएगी वहां पर पहली बार सरकार। उधर तमिलनाडु में एंट्री हुई तलपति की, बोले तो सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवी के डेब्यू कर लिया और डेब्यू में ही छक्कम मार लिया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर पॉलिटिकल करियर की सही मायने में उनकी अब शुरुआत हुई और सीएम स्टालिन वेल जनता ने उन्हें भी नकार दिया। पर एक बात और है, विजय अभी भी मेजोरिटी से थोड़ा दूर है। एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना तो पूरा अपनी मेजोरिटी बना पाए और बाकी सबका गेम भी उन्होंने कुछ बिगाड़ दिया है। देखते हैं, हाथ तो किसी का थामना पड़ेगा, किसका पकड़ते हैं वो देखना है। उधर केरला में लेफ्ट फ्रंट का डी एंड हुआ, कांग्रेस लेड यूडीएफ ने 10 साल बाद कमबैक किया विद 100+ सीट्स। और असम की बात करेंगे तो वहां कोई सरप्राइज नहीं मिला, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्हें हैट्रिक मारी है उन्होंने एंड एनडीए इज बैक विद अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, बोले तो बीजेपी का डंका वहां भी बजा। सो ऑन दिस जंगल में मोर नाचा और सबने बेताबी से देखा वाली नोट, दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सिंग। तो भी बंगाल में कमल खिला, अब दीदी से फोकस हटा, तमिलनाडु में विजय का जादू चला, डीएमके के लिए ट्रेजिक इलेक्शन रहा, केरला में यूडीएफ की आई बहार, लेफ्ट की हुई बुरी हार और आसाम में फिर आई वही सरकार। जनता ने कहा एनडीपी से ही है भाई हमें तो प्यार। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जनता की लाठी में चाहे होती ना हो आवाज, पर जब जब ये पड़ती है ना तो कुर्सियां हिल जाती हैं और पलट जाती है सरकार।

0: बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्को के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: माई प्रॉपर्टी माई चॉइस, माई रियल्को द रियल स्टेट कंपनी, और विजिट myrealco.com। नॉट इंटेंडेड टू सॉलिसिट बायर्स एंड सेलर्स ऑलरेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियल्को के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यू भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation है, call करें 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125। 10 मिनट की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेन्स फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेन्स एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेन्स एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Ben 6474535353.
5: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: Get on your feet with Peppy Nukkar Beats.

बदला नजारा नया नया अच्छा लगता है ना. इट्स अ डे ऑफ रिन्यूअल एज वेल विच इज ऑल अबाउट सेल्फ रिन्यूअल. खुद को एक जंजीर से तोड़कर आजाद सेल्फ में बदलने वाला दिन. अ डे दैट रिमाइंड्स कि कुछ रिन्यू करना है लाइफ में तो कर डालो. डोंट वेट फॉर दैट टुमारो. दोस्ती रिश्ते काम सिचुएशन यू नो सबके सब लाइफ आपकी है भाई तो कोशिशें भी तो आप ही को करनी है. क्यों किसी और के करने का इंतजार करते हो. डिस्कार्ड दैट ओल्ड स्टेट शेल ऑफ योर्स इफ यू डोंट रिलेट टू दैट एनी मोर. क्योंकि बदलाव तो आता है हम ग्रो करते हैं हम बदलते भी हैं. और यू डोंट लाइक इट एनी मोर एंड जस्ट रिन्यूअल पे ध्यान दो अपने. यू नो व्हाट हम कहते हैं कि हम बिजली पानी पेड़ पर्यावरण इन सब की बात करते हैं सबके रिन्यूअल की बात करते हैं रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं और ये सब करते हुए हम भूल ही जाते हैं खुद को. सो टू मेक खुद को इम्पोर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज वही दिन है कि अपने आप को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो एंड डू वट एवर इट टेक्स फॉर योर बेटर वर्जन इन योर ओन आईज. कि सब कहीं जैसी देखे ना फॉर गुड कि कुछ तो हुआ है कुछ तो किया है कुछ तो नया है.

0: through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: क्विक रिमाइंडर, आज भी है हमारा हर मंडे की तरह अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट विद थेरेपिस्ट, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट प्रशांत शौरी जी. आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सवाल लोगों के लिए ही ये सेगमेंट बना है. इट्स अ कम्युनिटी सेगमेंट. स्टूडियो का नंबर रहेगा ड्यूरिंग द सेगमेंट 416-593-0055. आप अपना सवाल मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं @647-830-5042. और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी डीएम कर सकते हैं अपना सवाल. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों पे मेरा हैंडल रहता है RJ Swati Toronto. बहुत आसानी से मिल जाऊंगी. पर्सनल मैसेज में अपना सवाल भेज सकते हैं. अपना नाम बताने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप नहीं चाहे तो यू कैन कीप योर नेम एज अनॉनिमस और सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं. नोबडी नीड्स यू नो कि आप कौन हैं पूछने वाले. बस आप सवाल पूछें और जवाब आपको मिल जाएगा. स्टूडियो में जब आप कॉल करते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट, तो हमारा टाइम इस सेगमेंट का रहेगा हर मंडे की तरह आज भी अराउंड 5:45 to 5:50. जिन जिन को ये सेगमेंट आपको लगता है सुनना चाहिए, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा. तो मिलते हैं अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट में टुडे एट 5:45, 5:50. स्टूडियो का नंबर अगेन 6441659300055 एंड माई नंबर इज 6478305042.

0: do advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए. परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ. धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर. आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401. सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक. परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग. तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर. विजिट lisascosmetics.com.
4: फरवरी का महीना होता है बहुत स्पेशल. फैमिली डे भी होता है, वैलेंटाइन डे भी. तो मॉर्गेज रेट्स विद अमित खुराना इस महीने के लिए है बहुत स्पेशल. 3 इयर्स फिक्स 3.59%, 5 इयर्स फिक्स 3.74%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.44%. साथ में $4,100 तक का कैश बैक भी, प्लस $1,500 तक का ज्वेलरी गिफ्ट कार्ड भी. सो कॉल अमित खुराना फॉर फ्रेश एंड फेयर February month mortgage rates at 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkurana.ca.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Winters में हमारे vehicles थोड़ी extra care और maintenance मांगते हैं और उसके लिए go to My Mechanic Auto and Tire. सभी तरह की mechanical repairs और tire services के लिए आप वहाँ किसी भी oil change और services के साथ get a complimentary winter maintenance inspection. Get a $20 off on all synthetic oil change services. Michelin tires के authorized dealer हैं ये and you can get up to $150 rebate जब आप 4 नए tires खरीदते हैं. Insurance से ये direct deal करते हैं. Visit their Markham store at Midland and Steels और Scarborough store Midland and Elsmere पर. For details, visit mymechanicauto.ca. Exclusively picked. Look.

हवाओं की दास्तां। वेल, मुझे लगता है वही सुन समझ सकता है जो या तो दिल से शायर वायर होता है, या प्यार व्यार में होता है, और या एक्चुअली अच्छा वेदर ऑब्जर्वर होता है, और जो अपनी से स्किल यू नो से कितनी ही लाइफ्स को और या प्रॉपर्टीज को इवन प्रोटेक्ट करने में हेल्प भी कर सकता है विद इफ द पर्सन इज अ गुड वेदर ऑब्जर्वर। अब देखो ना, ये जो हम वेदर चेक करके निकलते हैं रोज इंटरनेट पर, इन्हीं लोगों के भरोसे ही तो होते हैं, वरना हम सभी को आसमां की ओर देखकर अगर पता चल जाता एग्जैक्टली कि आज सूरज दादा ओवर टाइम चमकेंगे या छुट्टी पर जाकर बादलों के पीछे छुपकर अपना हुक्का गुड़गुड़ाएंगे तो क्या ही बात होती है ना, पर ना वी नीड देम। सो अ डे लाइक टू से थैंक्स टू ऑल वेदर ऑब्जर्वर्स फॉर देयर स्किल्स एंड रिपोर्टिंग वेल मौसम की सरगन को सुनाने समझाने के लिए।

0: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।
1: अनवाइंड योर माइंड विद द थेरेपिस्ट। लाइफ सही है, ओनली ऑन फिल्म नकल।

0: वी आर बैक विद अ सेगमेंट. हर मंडे की तरह आज भी हम हाजिर हैं और साथ में हैं हमारे प्रशांत शोरी जी, हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट. बहुत अरसे से, मोर देन अ डेकेड, काफ़ी लोगों की मदद करते आए हैं व्हेन इट कम्स टू साइकोथेरेपी. आप अगर इसी तरह की कोई कन्फ्यूजन्स लाइफ में हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई तो मदद कर दे, कोई तो राह दिखा दे, कोई तो हमें हमारे से पहचान हमारी करा दे जिससे हम डिसीजंस ठीक से ले पाएँ लाइफ के, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. उनका नंबर रहता है क्लिनिक का 905-405-8224, 905-405-8224, and you can also visit his website which is iwantpeace.org, जहाँ पे peace हम शांति की बात कर रहे हैं, ठीक है, PEACE, हम सभी को चाहिए शांति, है ना. पर इस शांति चाहिए की जो जद्दोहद रहती है उसमें कई बार हम ये सोचने जरूर लग जाते हैं कि किस दिशा जाएं जहाँ पे ये मिले, किस कोने में है वो, है ना. पर हम ये भूल जाते हैं हमारे अंदर ही है. कैसे है, वही जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वही हमें वो दिशा दिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर झांकें और खुद में कुछ ऐसे चेंजेस ला पाएं जिससे कि हमारे आसपास वो शांति बरकरार हो पाए हमारी ज़िंदगी में. क्या इसका तरीके होते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं जिनसे जुड़े बहुत सारी टिप्स प्रशांत जी हमें देते हैं. वैसे तो अगर आपकी डिटेल में, हम हमेशा बताते हैं कि अगर सबकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, आपकी पर्सनल सिचुएशन के लिए आप डायरेक्ट उनसे मिलें, बात करें या किसी और साइकोथेरेपिस्ट से, लेकिन यहाँ पर हम जेनेरिक क्वेश्चंस जब लेते हैं तो एक जेनेरिक आंसर ज़रूर वो दे पाते हैं. और बहुत लोग हमें बताते हैं कि उन जेनेरिक आंसर से काफ़ी मदद मिल जाती है. तो अगर आपके कोई सवाल हैं आप हमें एनोनिमस कॉल कर सकते हैं. नंबर टू कॉल इन द स्टूडियो इज 416-593-0055. मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, प्रशांत जी की वेबसाइट पर भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं विच इज़ iwantpeace.org. चलते हैं आज के सवालों की ओर, बट फील फ्री टू कॉल अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. प्रशांत जी वेलकम. मुझे लगता है प्रशांत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
1: जी जी जी
0: जी. चलें प्रशांत जी आज क्योंकि हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं लेकिन स्टूडियो से नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारी थोड़ा सा टेक्निकल एरर. आई कैन हियर यू नाउ.
1: ओके, परफेक्ट.
0: तो प्रशांत जी मैं ये पूछना चाह रही थी, सवाल तो मेरे पास आज भी हैं, मैंने लोगों से बोला भी है और कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं. आई कैन सी, आई विल टेक दोज कॉलर्स. अगर मैं जो भी लोग कॉल कर रहे हैं उनसे बोलूँगी हैव पेशेंस विद अस, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन एयर सून. पर पहले सवाल की तरफ चलती हूँ प्रशांत जी.
1: जी.
0: ये लिखते हैं कि आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस सेगमेंट फॉर अ वाइल नाउ एंड आई हैव ऑल्सो बीन डूइंग सम रीडिंग अराउंड कम्युनिकेशन. मेरे ख्याल से आप क्योंकि अक्सर कम्युनिकेशन पर जोर देते हैं कि आप घर में कम्युनिकेट करें, आप बात करें, यू नो, ये निष्कर्ष जरूर निकलता है कि बात करके बातें सुलझाई जा सकती हैं. फिर वो आगे लिखते हैं कि दीज थिंग्स हैव हेल्प मी नोटिस माई बिहेवियर पैटर्न्स विच इज़ वेरी गुड साइन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल. तो चले आपकी बहुत सारी बातें लोगों पर इतना असर तो डाल रही हैं कि वो थोड़ा सा खुद पे चेक कर रहे हैं और अपने स्टाइल को भी देख रहे हैं. आगे वो लिखते हैं आई थिंक माई बिगेस्ट इशू इज हाउ टू कम्युनिकेट दैट आई डिसएग्री व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. इस पे टिप्स वो पूछना चाह रहे हैं कि मैंने अक्सर देखा है प्रशांत जी कि ये देखा गया है कि जब हम लोग बात करते हैं किसी से हम डिसएग्री करने लगते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारी पहले ही हम उस चीज़ को नकारने लगते हैं, हमारी टोन ऐसी हो जाती है कि नहीं ये तो वो बात, गर्दन हिलने लगती है, नहीं नहीं नहीं नहीं, साथ में हम नहीं नहीं करने लगते हैं. तो मेरे ख्याल से ये वही बात कर रहे हैं कि जब हम डिसएग्री कर रहे होते हैं तो उससे कैसे कम्युनिकेट किया जाए.
1: तो बेसिकली एक बहुत पुरानी कहावत है कि पीपल आर पीपल प्लीजर्स. ये हमारी बेसिक फितरत है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना. हम ये चाहते हैं कि सब प्यार मोहब्बत से ही निकल जाए, कोई ऐसा मौका ना आए जिसमें हमें अपना डिसएग्रीमेंट दूसरे को दिखाना पड़े, ठीक है. तो उस चक्कर में कई बार तो हम चुप ही रह जाते हैं, ठीक है. लेकिन उस चुप रहने से क्या होता है कि हमारी अपनी जो एंग्जाइटी है या हमारे अंदर जो अपना एंगर है वो बढ़ता जाता है. और ये बेसिकली इसका कारण यही है जो आप अपना डिसएग्रीमेंट नहीं दिखा पा रहे. एक तो आप पीपल प्लीजर हैं, ठीक है, आप दूसरे को खुश रखना चाहते हैं खुद दुखी होके भी. दूसरा ये है कि इट कुड बी अ साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस,
0: ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पीस मेकर भी हो, हम सोचते शांति बरकरार रहे बस, झगड़े हाँ, वाली चीज से सब बचना चाहते हैं, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी भी एक सीमा है
0: हाँ
1: ना, तो हम गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा। और
0: हाँ
1: तीसरा ये है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स के और डिसएग्रीमेंट्स के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होते, तो हम एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी अपने प्रेजेंट बिहेवियर को करते हैं। तो ये बेसिकली कारण है इसके। तो लोग अपसेट ना हो जाएं, मैं रूड ना लगूं,
0: हाँ
1: इट्स बेटर कि मैं चुप ही रहूं, और कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन यहाँ बन जाएगा तो इसका मतलब है कि ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अंडरलाइन फियर्स होते हैं रिजेक्शन के, कहीं मुझे ये ना पसंद करना ना शुरू कर दें, या कहीं मुझे लोगों के सामने क्रिटिसाइज ना करने लग जाएं, या कहीं हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए,
0: हाँ
1: या और कहीं मुझे ऐसा इंसान ना समझें कि इससे तो बात ही करना मुश्किल है।
0: हाँ या इसकी सोच कैसी है, मेरी सोच ना गलत मानने लगे। और कई बार ऐसा होता
1: बिल्कुल
0: है कि काम पर, मैं एक जगह कोट पढ़ रही थी, तो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड इफ द कोट इज इफ द बॉस इज रॉन्ग, सी रूल नंबर वन, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो कई बार वो भी एक चीज होती है कि अगर जो आप डिसएग्रीमेंट किसी हायर अथॉरिटी से हैं, काम पर है जैसे या घर पे भी, तो आपको ये लगता है कि यार मुझे तो इन लाइन रहना है वरना नौकरी जा सकती है,
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको अपने मन में ये समझाना है अपने आप को कि इट इज ओके, बेसिकली वैलिडेशन करनी है हमें कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल, कॉन्फ्लिक्ट इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू वैलिडेट इट इन योर माइंड। अपने माइंड को ये समझाना है कि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी कभी किसी की नहीं निकली बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के।
0: अच्छा ठीक है,
1: बेसिकली हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स आर ओके, आर
0: गुड।
1: नॉर्मल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, चाहे वो रिलेशनशिप कॉलीग के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप घर में किसी के साथ हो।
0: राइट
1: तो इसमें हम CBT यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के साथ जब इस तरह के इश्यू होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैंने पहले भी कहा है,
0: जी
1: खैर आपने अभी कहा था इंट्रोडक्शन में कि ईच एंड एवरी क्लाइंट एंड सिचुएशन इज यूनिक, उस हिसाब से तो काम करते हैं। पर जनरल जो हमारे थॉट्स हैं, जो कि गलत थॉट्स हैं, जो कि थिंकिंग एरर्स हैं, जिनको हमें चैलेंज करना है और ठीक करना है, कुछ एग्जांपल्स देके मैं इस बात को खत्म करूंगा, उससे हेल्प हो जाएगी। कि जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि डिसएग्रिंग इज रूड, तो दैट इज द मेंटेलिटी विच इज वर्किंग बिहाइंड अवर रिस्पॉन्स, तभी हम रिस्पॉन्ड नहीं करते।
0: राइट
1: सो मतलब डिसएग्रीमेंट और डिसएंगेजिंग इज रूड, इसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि डिसएग्रीइंग रिस्पेक्टफुली इज हेल्दी।
0: ओके
1: इसी लाइन को इस
0: आप
1: तरह
0: बिल्कुल
1: से,
0: मुस्कुरा के कहते हैं ना, मैं सॉरी टू से बट यू नो आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट, मुस्कुरा के अपनी बात कह सकते
1: आई
0: हैं,
1: रिस्पेक्टफुली डिसएग्री।
0: आई
1: हाँ
0: रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, स्माइल हैज नो ऑप्शन, स्माइल तो आप
1: हाँ
0: हमेशा कर सकते हैं, चीजें
1: बिल्कुल,
0: बुरी भी बेहतर बन जाती
1: उसका
0: हैं।
1: कोई बदल नहीं है। सो
0: जी
1: जैसे हम मन में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट विल रुइन थिंग्स, ठीक है, पर हम उसको, उसकी जगह अपने मन को ये कह सकते हैं कि मोस्ट हेल्दी रिलेशनशिप्स कैन हैंडल डिफरेंसेस इफ द
0: डिफरेंट,
1: रिलेशनशिप इज हेल्दी।
0: ब्यूटिफुल। आई थिंक ये कैसा मंत्र है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स कैन हैंडल डिफरेंसेस, जो लोग मानना भी नहीं चाहते कई बार, बट ये एक सच है, और इसको जितना आप एक्सेप्टेंस, प्यार से इसको, ओपन माइंड से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उतना जिंदगी सुलझी हुई
1: बिल्कुल
0: रहेगी।
1: बिल्कुल। और एक लास्ट चीज इसमें,
0: जी
1: जैसे हम कहते हैं आई हैव टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट, बेसिकली हम इसीलिए करते हैं ना, हम अपने
0: हाँ,
1: मन में अपने आप को कह रहे हैं
0: कंफर्ट
1: कि
0: जोन से बाहर नहीं
1: लाइक
0: आना चाहते। हाँ कौन पछड़े में पड़े।
1: कौन पचड़े में पड़ेगा। लेकिन
0: जी
1: इसकी जगह ये अपने आप को कहें कि टेम्पररी डिस्कम्फर्ट कैन प्रोटेक्ट ऑथेंटिसिटी,
0: हाँ, मैंने एक सेंटेंस और
1: कैन
0: बहुत सुना है कि मैंने तो इसलिए नहीं कहा, मैं ही क्यों बुरा बनूं।
1: मैं, हाँ बिल्कुल
0: कई बार
1: बिल्कुल,
0: हम कोई चीज़ हमें पता है कि गलत है, हम कह सकते हैं मैं क्यों बुरा बनूं, मैं क्यों पछड़े में पड़ूं,
1: हाँ। और जो
0: यू
1: तो आप कहनी थी ना अभी, वो उस लाइन पे एक चीज कहना चाहूंगा
0: नो।
1: कि सबसे पहले आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज करें, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन इन सबको करते करते हुए अपनी इस चीज का ध्यान रखें कि आप ये सब कुछ रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं।
0: राइट
1: तो इसको हम तीन पार्ट्स में बोलते हैं, एक्नॉलेज, स्टेट योर पॉइंट एंड रिस्पेक्टफुल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड योर परस्पेक्टिव बट आई सी इट डिफरेंटली, You can, I hear what you are saying.
0: Yeah.
1: Though I don't fully agree. I hear what you are saying, but I don't fully agree.
0: इसे कहते हम diplomatically थोड़ा handle किया जा सकता है. It's so not a wrong word. Diplomacy is not a wrong word. दुनिया diplomacy से चलती है.
1: बिल्कुल. So I respect your opinion, but I would prefer this way. या जो भी उसका.
0: हाँ.
1: So आप अगला कुछ कहता आप कह सकते हैं yeah, that's true, that is one way of look at it.
0: जी जी yeah.
1: But my perspective is फिर
0: yeah.
1: उसके बाद.
0: How about if you think this way?
1: आप रिस्पेक्टफुल रहे बस. अगर आपको चिंता हो रही है इस चीज की तो आप यही ध्यान रखें कि आप अगर आप रिस्पेक्टफुल रहते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं.
0: आप अपना आपा ना खोएं, आप अपनी टोन ना खराब करें. आप रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखें, चाहे सामने वाला गुस्से में भी रख रहा है तो चीजें बिगड़ेंगी नहीं, कम से कम आपकी तरफ से नहीं बिगड़ेंगी.
1: हाँ, दो की पॉइंट्स हैं, पहला रिस्पेक्टफुल, दूसरा असर्टिव.
0: चले एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं. इट्स अ म्यूजिकल ब्रेक. विल बी बैक विद मोर. आई हैव मोर क्वेश्चंस. आपके सवाल हैं, मुझे पता है देर आर कॉलर्स. प्लीज कंटिन्यू टू कॉल. आपका धीरे धीरे करके मैं कॉल्स लूंगी. और ऑन एयर नहीं लेना चाहते आप अपने सवाल तो आप मुझे अलग से ऑफ एयर बता सकते हैं. स्टूडियो के नंबर 416-593-0055.

0: चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive, चाहे हो डेली commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास, Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
5: Unwind your mind with the therapist. Life sahi hai only on Filmin Akkad.

0: जी हाँ, लाइफ सही है और टेंशन अगर है भी तो वो भी काफ़ूर हो सकती है अगर आपने सही कदम ले लिए हैं उस टेंशन को हटाने के लिए, अपने में चेंजेस लाने के लिए आप तैयार हैं और उस मदद तक पहुंचने के लिए आप तैयार हैं जो आपके लिए अवेलेबल तो है, बस आप ही उसको कंसिडर कई बार नहीं करते, सोचते हैं कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है या हम खुद ही काफ़ी हैं। सारी चीज़ें सही होती हैं पर कई बार यू नीड एन एक्सटर्नल हेल्प, और उसी हेल्प के बारे में हम कई बार बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको उस हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लीज़ उस मदद को अंडर एस्टिमेट ना करें अपनी लाइफ में, उस तक हाथ बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा सा कलरफुल एंड हैप्पी हैप्पी बनाएं। तो फिलहाल मैं प्रशांत जी का नंबर क्लिनिक का फिर से बता देती हूँ, 9054058224, 9054058224 उनकी क्लिनिक का नंबर है, आप कॉल करेंगे एंड यू कैन जस्ट आस्क आई वांट टू टॉक टू प्रशांत जी, दे विल कनेक्ट विद प्रशांत जी या फिर वो आपका एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, फर्स्ट 15 मिनट्स का जो इनिशियल कॉल होता है, पहला कॉल होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। 15 मिनट की उसमें बातचीत आपकी उनसे होती है, वेयर यू नो एक कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन होती है, वेयर यू कैन डिसाइड फ्रॉम देयर वेदर यू वांट टू गो विद यू नो सम सेशंस और नॉट। वो भी आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली बताते हैं वेदर यू नीड एनी सेशन और 2 सेशंस और 6 सेशंस और यू मे नॉट नीड एनी सेशन। तो वो 15 मिनट उस जानकारी के लिए होते हैं दोनों तरफ से। फिलहाल हम बात कर रहे थे सवालों की, आप सबके सवालों के लिए धन्यवाद। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑफ एयर ही सवाल पूछना चाहते हैं, अनोनिमस रहना चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस बात की, तो बेझिझक ऐसे ही पूछते रहा करिए, आपका नाम या नंबर कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता व्हेन इट कम्स टू दिस सेगमेंट। प्रशांत जी, एक और सवाल है जो मेरे पास टेक्स्ट में आया है एंड ये पूछते हैं कि ओके, दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन सिचुएशन मैंने देखी है। ये कहते हैं आई बिकम रियली फ्रस्ट्रेटेड एट माय वर्क प्लेस समटाइम्स, लोग जो होते हैं वहाँ पे मुझे बहुत रूड लगते हैं, बहुत एरोगेंट लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा मुझे नीचे गिरा रहे हैं, मेरी बात को हल्का कर रहे हैं, शिकायत करना मुझे अच्छा नहीं लगता बट मैं इसलिए नॉर्मली रिएक्ट भी नहीं करता, उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश भी करता हूँ काम पे, बट आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट और देम और दैट टोन या क्या हुआ, और इसकी वजह से घर पहुँच के भी रिलैक्स नहीं कर पाता और अपनी हॉबीज़ या फैमिली टाइम इन्जॉय नहीं कर पाता, क्योंकि वो बातें, वो जो भी वाकया हुए हैं दिन भर में, वो जो कई बार आपको बेइज्जती महसूस होती है काम पर या कुछ भी, वो आपको पूरे टाइम नॉक नॉक करती रहती है।
1: तो इसमें कई चीज़ें हैं, पहले हमें इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा।
0: जी,
1: इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हो रही हैं इनके साथ।
0: हाँ,
1: पहली तो ये है कि जो वर्क प्लेस इमोशनल डिस्ट्रेस है इनको, जो इनको वर्क प्लेस दे रही है। दूसरा सेल्फ इम्पोज्ड डिस्ट्रेस है।
0: अच्छा,
1: तो उसको हम बोलते हैं रूमिनेशन।
0: जी,
1: ठीक है। तो जो अनप्लेजेंट इवेंट आपके साथ होकर चुका हो, आप उसके बारे में बार बार जब सोचते हैं तो आप उसको रीलिव करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इनके साथ सिचुएशन है, इट कैन नॉट ओनली बी ड्यू टू द रूड बिहेवियर ऑफ कोवर्कर्स, इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन,
0: ओके,
1: कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। सो पहला ये कि ये डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं। दूसरा, इस दूसरे को हम बोलते हैं इंटरनलाइजिंग एक्सपीरियंसेस। कई बार क्या होता है कि इंटरनलाइजिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंकिंग एरर है जो हम सभी में है। जैसे कोई किसी को कुछ बुरा कहे, किसी के बारे में बुरा कहे, तो वो जो नेगेटिव उसके बारे में कहा गया है उसको सोचने लगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, वो ऐसा मानने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को कहे तुम सुंदर नहीं हो
0: और वो सोचने लगे हाँ मैं तो हूँ नहीं, मुझ में ये कमियां हैं,
1: खूबसूरत समझने लगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनलाइजिंग। तो जो आपको एक्सटर्नली कहा गया है आप उसको इंटरनलाइज कर लेते
0: तो
1: हो,
0: दूसरे आप... की जो मेरे बारे में ओपिनियंस हैं उसको मैं सच मान लो, उसी चश्मे से खुद को देखता हूँ जब।
1: ओके, तो ये भी एक कारण है। इतना इनका कारण ये भी है कि हो सकता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी बात करी, कि दे कुड बी समवन हु अवॉइड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें तो कई बार चीजें वहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, नहीं तो मिसकम्युनिकेशन के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। और चौथा जो हमने रूमिनेशन कहा वो है रेपिटेटिव ओवरथिंकिंग। टू रीलिव दोज एक्सपीरियंसेस अगेन एंड अगेन.
0: कितना हम सोचते ना मम्मियों के उम्र के लोग देखो ना, वो कितना कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो तो अक्सर ही इस उम्र में भी जी रहे होते हैं पुराना.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मम्मी तो कई मम्मियाँ तो या कई बुजुर्ग औरतें अपनी सास की बात करती
0: हैं. वो कितना अभी तक देखने को आता है कि ना
1: सास को शायद मरे हुए भी 20 साल हो चुके.
0: हाँ, वो अभी तक उस चीज को भूल नहीं पाए होते कि मेरे साथ तब ये हुआ, रीलिव कर रहे होते हैं. हाँ,
1: मेरे साथ ये बुरा किया. और ये माइंड बड़ा ही एक नॉटी चाइल्ड है. अगर इसको
0: नॉटी में तो हम बड़े प्यार से बोल रहे हैं, पर ये इतनी इतनी खुराफात करता तो बड़ा गड़बड़ है.
1: हाँ, तो खुराफात ही है. हाँ, तो ये जब अनअटेंडेड होता है तो ये ऑलवेज इट ऑलवेज कलेक्ट गार्बेज. हाँ, तो चाहे वो गार्बेज पास्ट से हो चाहे फ्यूचर से. तो बेसिकली इस तरह के इश्यूज अगर कॉन्स्टेंटली चलते रहे तो इससे क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, इससे आपका बर्नआउट हो सकता है, आप थक सकते हैं, ठीक है ना, और आपको एंग्जाइटी हो सकती है बहुत सारी. तो इसमें चार चीजें हैं समझने की. पहला है ट्रिगर.
0: अच्छा,
1: इस सिचुएशन ने आपको ऐसा सोचने में लगाया, ठीक है, क्या हुआ, कोई एरोगेंट वर्कर था, आपका कॉलीग था, किसी ने आपको रूड बोला, किसने आपको गलत कमेंट दिया. उस ट्रिगर के बेसिस पे एक होता है ऑटोमेटिक थॉट जो यूजुअली गलत होता है.
0: अच्छा,
1: वो क्या होता है कि पीपल आर डिसरिस्पेक्टिंग मी, पीपल आर पुटिंग मी डाउन, आई कैंट से एनीथिंग, नो वन लिसंस टू मी, आई एम जस्ट सपोज टू टॉलरेट इट. तो उसके बेसिस पे जो ऑटोमेटिक थॉट है, थॉट के बेसिस पे क्या आती है फीलिंग.
0: हाँ.
1: उसमें फीलिंग आएगी फ्रस्ट्रेशन की, एंगर की, हेल्पलेसनेस की, होपलेसनेस की,
0: वैल्यू नहीं है मेरी वाली ना, क्योंकि आपने लिए आप अपनी निगाह में आपकी वैल्यू नहीं होती ग्रेजुअली. हाँ,
1: वो फीलिंग्स है. अब जैसा थॉट आया वैसी फीलिंग आई, और जैसा फीलिंग आया वैसा ही बिहेवियर. तो बिहेवियर भी यही आएगा कि आप सप्रेस्ड हो जाएंगे, आप बार बार ओवर थिंक करेंगे उसी चीज को अगेन अगेन एंड अगेन, और आप रीप्ले करते हैं उन सिचुएशंस को बार बार अपने मन में. सिचुएशन एक ही बार होती है, आप हो सकता है उसको 100 बार जी लेते हैं.
0: ऐसा भी तो होता है कई बार कि आपके साथ हुआ, उस समय तो आप कुछ नहीं बोल पाए और कभी बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में घर में अकेले में बुदबुदा रहे होते हैं कि ये बोल देना था, शीशे के सामने बोल रहे होते हैं मैं ये, आई वुड हैव सेड दिस, और पूरे डायलॉग्स पर तैयार होते हैं पर वो कभी नहीं बोलते. हम
1: अच्छे अच्छे लॉजिक्स घर में
0: आई कुड हैव सेड दैट, आई कुड हैव सेड दैट.
1: तो उसी के लिए एक टेक्निक यहाँ पे मैंने बतानी ही थी अभी
0: जी.
1: तो अब जब बात चली रही है, उसको हम जर्नलिंग बोलते हैं.
0: अच्छा,
1: आप 15 मिनट लिख लें तो उससे आपका बहुत फायदा होता है. उससे आपका जो इमोशनल अनलोड हो जाता है, जो आपके दिमाग पे बहुत आप 4 किलो 10 किलो बोझ लेके घूम रहे हैं, वो आपने उस पन्ने पे उतार दिया.
0: अच्छा,
1: ठीक है, आप जर्नलिंग जरूर करें. और इन चीज़ों के कारण फिर नेचुरली, क्योंकि हम रोबोट या कोई नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, मशीन तो है नहीं है, तो वही सारा फिर आप एनवायरनमेंट घर पे लेके आते हैं. ठीक है ना, जब घर पे लेके आते हैं तो फिर घर पे भी इम्पैक्ट होता है, बल्कि घर पे भी कई बार लड़ाइयाँ होती हैं.
0: हाँ.
1: और घर वालों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या ऐसी गलती कर दी, ये हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं.
0: हाँ,
1: ठीक है, वो उधर से गुस्सा लेके आए हैं, ट्रांसफर.
0: हाँ, कि हम किस चीज से जूझ रहे हैं उन्हें ये नहीं पता होता, लेकिन वो ये सोचता हमने क्या किया, हम पे क्यों चिल्ला रहा है सामने वाला.
1: तो बेसिकली इसमें आपको अपने ऑटोमेटिक थॉट्स पे ज्यादा काम करना होता है. तो उस पे हम जब काउंसलिंग करते हैं 1-on-1 तो हम पूरे 2-3 सेशंस कई बार थिंकिंग एरर्स और ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे ठीक करना है, उनको कैसे बैलेंस्ड करना है, कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, उस पर काम करते हैं क्लाइंट्स के साथ. और दूसरा इसमें यह भी है कि आपको अपना जो रूमिनेशन है उसको भी रिड्यूस करना है. ठीक है, जो आप उसको रीलिव करते हैं उसका यही एक स्ट्रेटजी है कि उसको लिखें. और दूसरी स्ट्रेटजी है कि एक टाइम अलार्म लगा के डेडिकेट कर लें उसके बारे में, क्या आपने सोचना है या क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए. ठीक है, आपका फोन बजेगा कि आप 15 मिनट है, आप इस बारे में सोचें. जब 15 मिनट पूरे हो जाए तो उसको वहीं छोड़ दें, उसको क्लोज कर दें. और तीसरा ये है कि आप ये भी बार बार सोचें कि ये जो आप उसको बार बार दोबारा सोच के, अभी हमारे एक लिसनर ने जो हमसे ऑफ एयर क्वेश्चन पूछा था,
0: जी, जी.
1: तो उसके जवाब में ये आंसर भी काम आएगा कि मैं जो रीप्ले कर रहा हूँ इस चीज को, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है.
0: हाँ.
1: आप उस फायदे को सोचें और आपको पक्का पता लगेगा कि फायदा कोई नहीं होगा. फिर आप ये सोचें कि इससे मुझे नुकसान क्या हो रहा है.
0: हाँ, और आपको पता चलेगा बहुत सारा नुकसान हो रहा है.
1: बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं. फिर उन नुकसानों को YouTube कर लें या गूगल कर लें कि कितने नुकसान होते हैं. और फिर अपने आप के अपने ब्रेन को अपने माइंड को ट्रेन करें,
0: ब्रेन ट्रेन योर ब्रेन जिसे हम कहते हैं जी।
1: और ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं।
0: मैं इसे एक चीज़ छोटी सी यहाँ मेंशन करना चाहूँगी प्रशांत जी, क्योंकि आप जब कह रहे थे मुझे अपना कुछ याद आ रहा था कि मैं वैसे ही शौकिया या आदतन कह लें बचपन से है, मैं जर्नलिंग काफ़ी करती हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जब गुस्से वाली जर्नलिंग होती है, जब कभी आप किसी चीज़ पर आपका मन खराब है और उसकी आप उसको उतार रहे हैं पन्ने पर, और वो दो दिन है और आपने दो दिन उतारा उसको अलग अलग लहजे में अलग अलग शब्दों में, आपने खुद देखा कि तीन दिन बाद ना आपका लिखने का मन नहीं करता, बेकार की चीज है यार मैं क्या लिख रही हूँ उसे।
1: हाँ,
0: मतलब आप अपने में को ही ये कहने लगते हो कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन दिस बेसिकली, नॉट कि लिखने में आलस आ रहा है, आपको समझ में आने लग रहा होता है खुद ही कि ये बेकार की चीज है,
1: जो चीज 3 दिन पहले तक आपके दिमाग से
0: मैं इतना ज्यादा थी।
1: हाँ, उसके लिए आज आप 15 मिनट भी लिखने को तैयार नहीं हो,
0: नहीं, और ऐसा लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम बाई इवन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स नॉट वर्थ इट।
1: बिल्कुल ठीक।
0: हाँ, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जर्नलिंग का बोला है, अगर इसको तो ये एनी वे हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकता है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है लाइफ में तो भी इसे यूज करेंगे तो ये भी पता चलेगा आप कितने हैप्पी हैं और क्यों क्यों हैं उसका भी हिस्सा ये बन सकता है।
1: बेसिकली जर्नलिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन।
0: यस,
1: कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से बोल के ही नहीं होती, पेन से भी तो हो सकती
0: है। पेन से भी तो हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच। टाइम कम रहता है हमारे पास, मुझे पता है सवाल हमारे पास और भी हैं, कॉलर्स भी होते हैं, बट मैं सबसे यही इनकरेज करूंगी कि सारे सवाल हम नहीं ले सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, अनोनिमस अपना छोड़ सकते हैं, कोई भी सवाल प्रशांत जी की वेबसाइट पे छोड़ सकते हैं iwantpeace.org, वहाँ पे आपको नाम या नंबर लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, या प्रशांत जी की क्लिनिक पे उन्हें कॉल कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल जो होती है इनिशियल 15 मिनट्स की कंसल्टेशन वाली, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो उसका तो फ़ायदा ले ही सकते हैं। नंबर टू कॉल 9054058224। थैंक यू प्रशांत जी, अगले मंडे फिर बात करते हैं।
1: थैंक यू स्वाति जी।

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
2: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353।
7: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
8: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
8: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
10: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
11: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
10: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
11: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: Swan Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान, है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछो कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स FIFA के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिये ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको FIFA टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: फरवरी का महीना होता है बहुत स्पेशल, फैमिली डे भी होता है, वैलेंटाइन डे भी। तो मॉर्गेज रेट्स विद अमित खुराना इस महीने के लिए है बहुत स्पेशल। 3 इयर्स फिक्स 3.59%, 5 इयर्स फिक्स 3.74%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.44%, साथ में $4,100 तक का कैशबैक भी, प्लस $1,500 तक का ज्वेलरी गिफ्ट कार्ड भी। सो कॉल अमित खुराना फॉर फ्रेश एंड फेयर February month mortgage rates at 647-341-2785, 647-341-2785, or visit amitkurana.ca.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
4: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ. क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रांग. तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप, ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125. 10 मिनट की कंसल्टेशन एकदम फ्री है. कॉल टुडे at 437-673-3125.
5: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: अच्छा, अगर आप भी ब्रांड नेम कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फाइन चॉकलेट्स, डिजाइनर सनग्लासेस, फ्रेग्रेंसेस खरीदना चाहते हैं अपने लिए या अपनों के लिए, पर प्राइस टैग देखकर खुद को बस समझा लेते हैं, तो भाई लीसाज कॉस्मेटिक्स वेयरहाउस सेल जरूर जाएं। सभी ब्रांड्स मिलेंगी एंड 80% तक की सेविंग्स भी होगी, यानी भारी बचत और ब्रांड्स दोनों बातें हमारी पसंद की। मदर्स डे के लिए तो गिफ्ट्स की परफेक्ट वैरायटी मिलेगी। बट यस, इट्स ओनली ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। जाएं एट 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 7 एंड 404 का इंटरसेक्शन, और विजिट lisascosmetics.com।

0: 93FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमले के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक हो गई है. ईरान ने आबनाए हुरमुज में एक अमरीकी जहाज पर हमला किया है जिसके बाद यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज पसपाई पर मजबूर हो गया. सेंटकॉम का कहना है कि उसने 7 छोटी ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया. मुतहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए जबकि फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई है. उधर आबनाए हुरमुज में जनूबी कोरिया के एक जहाज में धमाके के बाद आग लग गई. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी जहाज या फ्रीडम प्रोजेक्ट में रुकावट डाली गई तो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे. उधर सेंटकॉम ने 2 अमरीकी जहाज आबनाए हुरमुज से निकालने का दावा किया है जबकि पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता चंद घंटों में कोई तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर आबनाए हुरमुज से नहीं गुजरा. अमरीकी जहाज को निशाना बनाने के ईरानी दावे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी. अमरीका ने अपने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और उसके अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तमाम पार्टी ओहदेदारों और रहनुमाओं को मंगल के रोज अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत की है. जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौज की पोस्ट पर एक नाकाम खुदकुश हमले के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए. खबरों के मुताबिक PIA 25 मई तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दी जाएगी. पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल में पेशावर जिल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से हराकर दूसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास कंपनी जुबैर दिन साहब आपके लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003. गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203.50 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के तमाम बैंकिंग जितने भी बैंक हैं उनमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं. अकाउंट नहीं कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पर आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 203.50. कॉल कर लीजिए 905-306-0000. मंडे अंजुम कुरैश साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. एक्सलेंट क्लेम के वाले से गुफ्तगू करते हैं. मॉर्गेज की मालूमात शीराज हुसैन साहब तक पहुंचाते हैं. अहमद मलिक साहब डेट कंसल्टेशन के वाले से गुफ्तगू करेंगे और ईद फेस्टिवल के वाले से शैला जाफर साहब से भी आपको मुलाकात कराएंगे. कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे. तफसीली खबरें 8 बजे. लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें होंगी लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक. मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे छर प्यारे सामिन, कभी कभी हालात हाजरा के मुशाहदे के बगैर भी मुस्तकबिल अपने आने की कबल इस वक्त इत्तला दे देता है. इकबाल ने अगर कहा कि महव हैरतों की दुनिया क्या से क्या हो जाएगी तो इस खबर का ताल्लुक हाल से कतई नहीं है. यह अलग इत्तला है या इसका ताल्लुक नजर से है. मकाम खबर और मकाम नजर का फर्क तो सिर्फ अहल बातिन ही मालूम कर सकते हैं. अहल बातिन की नज़र में अपने ज़माने के अलावा भी ज़माने होते हैं. वो जानते हैं कि वजूहात और नताइज के रिश्ते इंसानी रिश्तों की तरह हमेशा कायम नहीं रहते. बाज़ुकात वजह कुछ और होती है, नतीजा कुछ और. बेसबब नताइज की खबर ही नज़र कहलाती है. साहिब नज़र नकीब फितरत होता है. फितरत उसे जो कुछ दिखाती है वो उसे बयान करता है, वो साफ साफ बयान करता है लेकिन सुनने वाले समझ नहीं सकते. सामईन हैरान होते हैं कि उसने कौन सा अखबार पढ़ लिया है. ये शख्स बहक तो नहीं गया, लेकिन नहीं, वो बहकता नहीं है. फितरत बहकने वालों के ज़रिए कोई पैगाम नहीं भेजती. यूँ भी जानने वालों और ना जानने वालों में फ़र्क रहता है, उसी तरह जिस तरह जागने वालों और सोने वालों में फ़र्क है. हर दौर में जानने वालों ने ना जानने वालों को अपने इल्म से मुतारिफ कराए हैं. सुनने वालों को यकीन आए ना आए ये अलग बात है. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट और दोस्त अरशद बैठी हूँ.

ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: चल इनके मोहम्मद सलमान
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888 इट्स 437-237-8888 लाइसेंस नंबर 12458
3: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं
5: हाँ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है टीवी फ्रिज वॉशर ड्रायर किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे
4: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ
5: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं
4: दैट्स वंडरफुल
5: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है
5: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस
6: अलकरम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9058280009 It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

0: 647-295-7861.
1: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local updates. A man who caused a car crash that killed three siblings last year has been sentenced to 8 years in prison, minus the time he has already served. Toronto Fire Chief Jim Jessop said crews are working on putting out the alarm fire at 11 Thorncliffe Park Drive, which was the site of weeks-long fire that displaced hundreds of residents in 2025. 4 Canadians are confirmed to be on board a cruise ship on Atlantic Ocean where the suspect outbreak of the rare hantavirus has killed 3 passengers and left 3 other people seriously ill. A Toronto woman who says she is desperate to die has filed an emergency motion with the Ontario Superior Court of Justice to receive a medical-assisted death for a sole underlying condition of a mental illness. Police in Durham region are investigating after 3 homes were damaged in what authorities described as an arson that took place in Pickering early Sunday morning. The federal government said Monday it will put $1.5 billion towards tariff relief in response to the United States expanding the range and the depth of its metal tariffs. Alberta's Paris movement have reached new milestone as organizers delivered what they say are more than 301,000 signatures calling for provincial voting on leaving Canada. 36% of Canadian restaurants operating at a loss or breaking even. The Ford government is introducing legislation cracking down on drug use on public transit while also targeting illegal drug production. Toronto is escalating its fight against negligent landlords as Toronto Mayor Olivia Chow says long overdue repair, pest control and safety work are finally underway at 500 Dawes Road, one of the city's most notorious neglected rental buildings. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
2: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस आपके लिए वानी पेश कर रही थी. आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM. पीएसएल का फाइनल, पेशावर जलमी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हरा कर जीत लिया. दूसरी मरतबा जलमी जो है वो चैंपियन बनी है. 9 साल के बाद ये टाइटल जीता है. 130 रन का हदफ दिया था. 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर 5 विकेट पर पेशावर जलमी ने ये जो है विकेट स्कोर पूरा कर लिया. और पहली विकेट 6 रन पर गिर गई थी. मोहम्मद हारिस 6 रन बनाकर आउट हुए. टीम की दूसरी विकेट 7 पर गिरी. बाबर आजम 0 पर आउट हुए और मेरे ख्याल शायद पहली दफ़ा इस सीरीज में वो 0 पर आउट हुए हैं. और तीसरी विकेट 33, चौथी 40 पर गिरी. कौशल मेंडिस 9 और माइकल 4 रन बनाकर जो है वो आउट हुए. माइकल ब्रेसवेल अच्छा 5 विकेट पर. एरन हार्डी और अब्दुल समद ने जिम्मेदारा बैटिंग की. 85 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर तकरीबन वो आखिर में बाउंड्री पे आउट हुए. अगर ना शायद वो छक्का होता तो उस वक्त ही मैच खत्म हो जाता. एरन हार्डी ने प्रेशर में 36 बॉल्स पे अपनी 50 मुकम्मल की. 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे. अब्दुल समद ने 48 रन बनाए. फरहान यूसुफ ने विनिंग शॉट लगाया और 9 साल बाद अपनी टीम को पीएसएल जितवाया. मोहम्मद अली ने 3, आकिफ जावेद और हनैन शाह ने 1-1 विकेट हासिल की. और पेशावर जलमी ने टॉस जीतकर हैदराबाद किंग्स को पहले बैटिंग की दावत दी थी. शुरू बहुत अच्छा था उनका. पहले 6 ओवर में शायद 70 से ज़्यादा स्कोर उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर 2 रन आउट हो गए उनके और फिर शायद 5-7 रन के अंदर ही 4 जब इनकी विकेटें गिरी हैं उसके बाद वो कुछ संभल ही नहीं पाए. और मैक्सवेल 0 पर पहली बॉल पर आउट हो गए. सायम अयूब 54 रन उन्होंने बनाए. मां सदाकत 11, मार्नस लेबिशन कप्तान 20 रन बनाकर आउट हुए. उस्मान खान ने 8 रन बनाए और 72 पर चौथे खिलाड़ी इरफान नियाजी थे, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए. मैक्सवेल भी कोई रन नहीं बना सके, वो भी 72 पर आउट हो गए. कुशाल परेरा जो है वो भी 1 रन बनाकर जो है रन आउट हो गए. इस तरह 73 पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद वो संभल ही नहीं पाए. हार्डी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया. उन्होंने 50 बनाई और 4 विकेट भी लिए. उन्होंने सुफियान मुकीम को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया. बेस्ट बैटर बाबर आजम, बेस्ट बॉलर सुफियान मुकीम, बेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान को दिया गया. बड़े करोड़ों की रकम जो है इनको दी गई. बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेसिव जो है वो इनकी क्लोजिंग सेरेमनी थी. बहुत सी फायरवर्क्स भी था और बहुत डिफरेंट किस्म का एक बॉल के नीचे वो खातून जो हैं वो लेकर आईं ट्रॉफी. बड़ा ज़बरदस्त जो है वो, और शायद 32,000 से ज़ायद लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे. और बहुत ज़बरदस्त सी पीएसएल बड़ा कामयाबी से, गो के आखिरी 2-3 मैचों में ही शायद शायकीन आए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है आखिरी मैचेस जो है ज़बरदस्त रहे. और पेशावर जलमी एक बार फिर चैंपियन बनी है. लेट्स सी अब आगे. अच्छा, उसके फ़ौरन बाद ही 2 प्लेयर्स ऐसे थे, बाकी पूरी टीम बांग्लादेश जा चुकी थी. टेस्ट सीरीज़ है वहाँ, 2 टेस्ट खेलने बांग्लादेश के साथ. और फिर 2 प्लेयर्स हमारे जो हैं वो खुर्रम शहजाद और बाबर आजम जो है वो भी बांग्लादेश चले गए हैं.

0: और अब 8 तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट होगा। बहुत लोगों ने तनकीद भी की बाबर आजम पर, शायद अभी भी कुछ तनकीद कर रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि शायद बाबर आजम ने अपनी फॉर्म जो है वापस जो है वो आ गई है। और क्लास कहते हैं परमानेंट होती है, फॉर्म जो है वो टेम्प्रेरी होती है, क्लास बाबर आजम की ऐसी है कि शायद वो बहुत परमानेंट है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।
1: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4168143600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001। लाइसेंस नंबर 12374।
2: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया, तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेड लाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922।
4: जी हाँ, 9057831922 अहमद मलिक साहब के रबते के नंबर है। अहमद मलिक कर्जा माफ 20 साल से ज्यादा अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग जो हैं उनको उनका कर्ज माफ करवा चुके हैं, उनकी जिंदगी आसान करा चुके हैं। आप भी किसी वजह से, अपनी गलती से, किसी गलती से अगर कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, आप एक बार रबता जरूर करें 9057831922। हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद के मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम को बोलो।
4: बहुत शुक्रिया आपका। जो सिचुएशन है, आपने पिछली दफ़ा जो मॉर्गेज डेलिक्वेंसी के हवाले से भी बात की थी, आज रेस्टोरेंट्स 36% जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि ब्रेक इवन या नुकसान में जा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन मीशत की जिस तरह से है, सीबा लोन लोगों ने कईयों ने पे नहीं किया और बहुत से मसाइल हैं, ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों की?
5: आशिर भाई, गुज़िश्ता जब से जिस दिन से कोविड आया है, उस दिन से जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल जियोग्राफी है, वो चेंज हो गई है तकरीबन हर इंसान की। पिछले 6-7 साल में वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके लाखों डॉलर कमाए, और फिर वही लोग हैं जो दोबारा उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके स्टक हो गए, मजीद आगे प्रॉपर्टीज लेके स्टक हो गए।
4: बिल्कुल।
5: तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा टाइट चल रही है। काफी सिचुएशन जो है कैश फ्लो का जो है वो हर बंदे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा मुतासर हो गया है। आपने पैसे देने तो हैं, लेकिन जहां से आपने पैसे देने हैं वहां से आपको पैसे मिल नहीं रहे, तो सिचुएशन ऐसी चल रही है इस टाइम। बहरहाल हमारे तमाम वो लिसनर जो कर्जे के बोझ में आए हुए हैं, तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर कंज्यूमर सिस्टम चलता है और ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए अगर आप किसी वजह से भी कर्ज के बोझ में आ गए हैं, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर दिए हैं, आपने कोई लोन लिया था जिसकी अब आपसे पेमेंट नहीं की पा जा रही, या आपको रेवेन्यू कैनेडा ने किसी तरह की आपसे पैसे की डिमांड कर ली है जो आप नहीं पे कर सकते, तो फिर इसका लोन को इस्तेमाल करने में कोई मजायका नहीं है। जो कानून हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कानून को हम प्रैक्टिस करने की आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिसके तहत आप कर्जे से निजात हासिल कर सकते हैं, फिर इस कानून को अर्शद भाई यूज करने में कोई मजायका नहीं है। तो हमारा ऐसा कोई लिसनर है जो अगर कर्जों के बोझ में आया हुआ है, तो हम आपके कर्जों को 75% तक माफ कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी के रहते कर्जे पर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट लगवा के आपको एक नई जिंदगी शुरू करने में आपकी मदद की जा सकती है। तो हमारा कोई लिस्टनर है, अगर आप कर्जे के बोझ में आए हुए हैं तो 9057831922 पर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं।
4: थैंक यू वेरी मच अमित साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच,
5: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
4: नंबर नोट कीजिए आप अहमद मलिक साहब का, और अभी कॉल कर लें, खुदा खास साहब कर्ज के बोझ तले आ गए हों। 9057831922 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से हमारे 101.3 FM हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को कैपिटल बैंकुट हॉल में होने जा रहा है। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, बेशुमार इनामात हैं, और एवरी डे सोने के गिफ्ट दिए जाएंगे। एवरी डे इनाम घर इनका होता है, उसमें मुख्तलिफ इनामात दिए जाएंगे। फैशन शो होगा, मदर्स डे के हवाले से प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पटिशन हैं, कपल्स प्रोग्राम, बेशुमार इंटरटेनमेंट हैं, बच्चों बड़ों सभी के लिए बेशुमार तहफ भी होंगे। स्टॉल बुकिंग, अभी स्टॉल्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इन्होंने स्पेशल स्पेशल जो है वो डील स्टॉल्स पर लगाई हुई है, 4167106777 4167106777 पे शम्स रहमान साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाने खाने हैं तो चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन पे चले जाइए। रिजवे में चाइनीज़ खानों के वाले से ये एक ज़बरदस्त किस्म की एडिशन है। इनका यूनिट 30 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। पाकिस्तान पीसी की जो शेफ़ हैं, जिनका 14 साल से ज़्यादा से तजर्बा है, स्पेशली वो यहाँ पर आए हैं। 100% हलाल फूड, फ्रेश अथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रिजन मीट, नो पैकेट मसाले। एक बार आप जाइएगा और चाइनीज़ पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ को